वे सांवला न मार नैना दे तीर। हुणे तुसी अख्तर अली मतोई दी आवाज च गुलाम फरीद दा एक कलाम सुनिया, ते आओ हुण सुनदे आं सरबजीत दी आवाज विच शाह हुसैन दा कलाम। दिल लालिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन लालिया बेपरवाह दे नाल।

आवो ने सहयो रल देवो ने वधाई, मैं वर पाया रांझा माही। पूजा गिल दे गाए बाबा बुल्ले शाह दे इस कलाम दे नाली। हुन सूफियाना कलाम दा ए प्रोग्राम इत्थे खत्म हुंदा है।

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए 9870 किलोहर्ट्ज से तेखा सवाए तवा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते बुधी सकंदा आयो असाजे प्रोग्राम जो आगाज थी चुको है तफसील कुछ इन तरह थोड़ी देर में अवां हमेश जहां भगत कौराम जन जो सदाबर आवाज बुधंदा तंहिंखां पोइ हिकु तकरीर पेश कंदी तकरीरकार जनाब एम के जेटले उनवान आहे सिंध जो सूफी संत दरवेश निमाणो फकीर तंहिंखां पोइ कुझु हब वतनी गीत पेश कया वेंदा इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे हींअर अचो त भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज़ ॿुधूं

0: अवां भगत कौराम जन जो सदाबहार आवाज बुधरी हा ही आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है। हिंसर पेश है एक तकरीर उनवान है सिंध जो सूफी संत दरवेश निमानू फकीर तकरीरकार जनाब एम के जेटले
1: मौजूद है। सदी के सिंध के संतन ए दरवेशन में निमाने फकीर जो एक निरालो दर्जो है। हकीकत में हुआ एक औरत हुई जैनो तखलुसो निमानू फकीर। वी सदी में सिंध के वडघरान हिंदू कुटुंबन में जन्म वरतल मुखे ही एक ही औरत सुझे थी जेका संसारी माया मोह के तर्क करे रिश्तन नातन जा बंधन तोड़े सूफी दरवेशन के संग में वही रही ए राजस्थान के माई मीरा वांगुर परमात्मा के भजन कीर्तन में समूरी जीवत गुजारई। निमाने फकीर के जिंदगी जो शुरुआती दौर की कदर गैर रवाजी है। संदस असुल नालो हो हासी। शिकारपुर के एक आकाहते शान मान वाले कुटुंब में उनको जन्म सन 1888 में थो हो। पिता जो नालो हो डीडाराम। परमात्मा खेस गोरो रंग ए सुहणा रोशत डिना पर उनसा गड जाए जम का संदस एक पेर में विड भी डेई छदई। नींगर अज नंढी सुबह वडी थी संदस पेर में वंग डिसी मानस प्रणस हमेशा गणतियों में प्या गणंदा हुआ पर हासी के भाणे सब सुख हो। हुआ जै वयात्री थी तीए प्रभु के प्रेम में लीन रहन लगी। भक्ति भावना तरफ संदस मन छिकजी वो उन पैंजी बाँ दे कृष्ण भगवान की छबी छपाए छी ए डी रात भक्तियाणी मीरा वांगुर गिरधर गोपाल के गुणन गायण में मगन रहन लगी। संदस आवाज बुधनी के मैर से अड़ो तो मिठो हो जो बुधंदर उन भजन बुधी वाह वाह पा कन्दा। हासी जडी शादी लायक थी तो माइटन खेस एक वडी उम्र वाले सेठ पोकरदास से परणायो। हु सेठ रनर हो ताजो संदस जाल गुजारे वही हुई जैमा औलाद भी होस पर हासी के माओ पी पैंजे धीर के पेर में फेर डिसी लाचार यो घोटो खाधो। हासी की जिंदगी सावरे घर में सुख चैन से गुजरन लगी। चंगाई साल गुजरी व्या तो खेस संतान कान थी। इन ही करे जाल मुड़स बई चिंता में पैजी व्या। उनन संतन दरवेशन जा दर भेटन शुरू कया तो मन कैंजे दुआ सा संदन मुराद पूरी थे। एक डी हूँ बई सचल सरमस्त ये दरगाह जे सज्जाद नशीन सखी कबूल मेहमदी सारा बुधी संदस दुआ पिनन लाय दराजन में व्या। उते खेन सखी डातार चयो तो खैर सा आयो असा पे अवाजो इंतजार कयो। दरवेश दर ता मोकलायण वक्त सखी डातार खेन चयो तो हाने असा वट वरी कद इंदो। इन सवाल जो जवाब उन वक्त हासी तोड़े संदस मुड़स सखी साई के कोन दिनों पर गैब जी कल खेन भी कान हुई तो अगते हली थियण आए। इन गाल के कुछ अरसो थो एक दफे अचानक सेठ पोकरदास की सेहत डही पई। घरवार संदस घने इलाज कराया पर फकियों फर्क न कयो। आखिर सेठ वही सासें सुखालो थो। पति के गुजारे वन सदमो हासी के एतरो रसो जो दुनियावी गालियों में संदस मन न पो लगे। खेस अड़ो तो वैराग लगो जो गुरु ग्रंथ साहब ए बियन धर्मी ग्रंथन जो अभ्यास करण तीर्थ यात्राओं करण ए भजन कीर्तन में मगन रहनी संदस जिंदगी जो मकसद बणजी पो। एक दफे हरिद्वार में सुपने में सखी कबूल महमद हासी के दराजन में अचण की नींद डिनी। इनते दरवेश सखी डातार के चरणन में सजदो करण लाय हासी जो मन व्याकुल थी पो। हुआ तुर्त हरिद्वार में वापस पैंजे गोठ आई ए उतां पो दराजन में दरवेश के दर ते वही हाजुर थी। खेस डिसी सखी कबूल महमद फरमायो अबा अची व्या भली आया जी आया निच आया असा अवा के इंतजार में हुआसी रब रहीम अवा के खैर से इत पहुंचायो है। इन बैद हासी के जिंदगी में एक नव वर्क वरी वो उन सखी साई के पैंजो मुर्शिद करे मनो। हासी के घर बार दुनियावी रिश्तन नातन की का भी समक न रही। डेरन माटेले पुट ए बियन रिश्तेदार खेस घणो जोर भरो तो घर मोटियल पर हु पैंजे मुर्शिद के पाक हजूरी में रही मार्फत या मोती चुगण में मगन थी वही। सखी कबूल महमद संदस सच्ची अकीदत डिसी खेस पैंजी दीन की न्याणी जो दर्जो दिनों संदस नेठाई ए हलीमाई डिसी खेस निमाणो फकीर कर सजो।

ऐं फ़क़ीर दराज़नि जे दरगाह ते सांदे 15 साल रहियो। इन अर्से में मुर्शिद जे महर सां संदसि अंदर जी अखि खुली पई। हू रुहानी राह ते घणो अॻिते वधी चुको हो। हुन पंहिंजे मुर्शिद जो फ़रमान अखियुनि ते रखी सचल साईंअ जो रुहानी पैगाम फैलाइण जो कमु हथ में खयों। हू जिते किथे पंहिंजे मधुर सुर सां सचल जो कलाम गाए ख़ल्क़ खे नई राह ॾेखारण लॻो। दराज़न बैदि हुन हैदराबाद सिंध में रसाला रोड ते सत्संग शुरू कयो। मुल्क जे आज़ादीअ बैदि निमाणो फ़क़ीर 1948 में पंहिंजनि किन सत्संगियुनि सां लॾे भारत में आयो ऐं अची बड़ौदे में थाणो ठिकाणो कयईं। 1960 में हुन बड़ौदे में सखी कुटिया नाले सां आश्रम बर्पा कयो, जिते रोज़ानो नितनेम सूफ़ियाने कलाम जूं चौकियूं थियण लॻियूं। निमाणे फ़क़ीर जी हिकु सिदक वारीअ शिष्य भेण टिलीअ उर्फ़ पुष्पा वरी बम्बई में सूफ़ियाने कलाम जे चौकियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो। अहिड़ियुनि चौकियुनि में गुरू नानक जी बाणी, सचल साईंअ जो कलाम ऐं निमाणे फ़क़ीर जी बाणी सत्संगी घणे प्रेम ऐं श्रद्धा सां ॻाईंदा आहिनि। निमाणे फ़क़ीर ही संसारी चोलो बि सत्संगियुनि जे विच में नाम सुमरण कंदे त्यागियो। हू बम्बई में 23 मार्च 1963 ते राति जे वक़्तु 10:55 ते ज्योति जोत समायो। हुन जो अग्नि संस्कार ॿिए ॾींहुं शाम जो कयो वियो, जंहिं वक़्तु संदसि हज़ारे शिष्य हाज़ुर हुआ। इन करे हर महीने जी 24 तारीख़ ते हिन दरवेश जे यादि में संदसि शिष्य सूफ़ियाने कलाम जी चौकी नेम सां कंदा आहिनि। निमाणे फ़क़ीर जी समाधि बड़ौदे में सखी कुटिया में ठाही वई आहे। हुन जी आख़िरी ख़्वाहिश मूजिबि संदसि हाठियुनि ऐं रख खे दराज़न जे दरगाह शरीफ़ में बि रखियो वियो आहे। निमाणे फ़क़ीर जी मज़ार 8 गादीअ वारनि साहिबनि जे भरिसां ऐं सखी दाता जे पेरांदीअ खां दराज़न जे दरगाह में ठाही वई आहे। हुन दरवेश जी नियठाई ऐं निमाणाई इन मां ज़ाहिर आहे त हू पाण खे ख़ाके पाए सगे दरे शाहे दराज़, यानी पेरनि जी ख़ाक ऐं दराज़न जे शाह जे दर जो कुतो करे सॾींदो हो। अदब जे खेत्र में निमाणे फ़क़ीर जूं मुख्य रचनाऊं हिन रीति आहिनि। पहिरियों सचल जो कलाम उर्फ़ आशगी लाम, 500 सुफ़नि जे वॾे साइज़ वारे किताब में निमाणे फ़क़ीर सचल जो कलाम चूंड करे ॾिनो आहे ऐं किताब जे आख़िर में औखनि लफ़्ज़नि जी माना बि ॾिनल आहे। ॿियो हक़ मौजूद, हिन किताब में निमाणे फ़क़ीर गुरू नानक जी बाणी ऐं सचल जे चूंड कलाम सां गॾु ॿिए भाङे में पंहिंजो बि चूंड कलाम ॾिनो आहे। इहो किताब 1961 में बम्बई मां शाया थियल आहे। टियों निमाणल माण, हिन किताब जो ॿियो छापो 1988 में बड़ौदे मां छपाए पधरो कयो वियो आहे। उन में निमाणे फ़क़ीर जो चूंड कलाम अलिफ बेवार ॾिनल आहे। शुरूअ में हिन दरवेश जी मुख़्तसिर जीवनी बि ॾिनल आहे। सत्संगी सूफ़ियानी चौकीअ में इन्हनि किताबनि मां ई कलाम चूंडे ॻाईंदा आहिनि। निमाणे फ़क़ीर जो कलाम पढ़ण सां मालूम थिए थो त उहो हिकु सचे सालिक जे अंदर जो आवाज़ आहे। सिधी सादीअ ॿोलीअ में उहो रुहानी राह ते अॻिते वधंदड़ जिज्ञासूअ जे उमंगनि जो इज़िहारु आहे। उन में मुर्शिद जी महिमा में ॻातल गीत आहिनि त उन जे विछोड़े में कयल विर्लाप बि आहिनि। उन में हक़ जे असुल सूरत सुञाणण तरफ़ इशारा आहिनि त उन जे इश्क जे उसाट में ॻातल बिरह जा गीत बि आहिनि। निमाणे फ़क़ीर जे कलाम जी मुख्य ख़ूबी आहे मेठाज ऐं संगीत जी लय। हिते संदसि कलाम जा कुझु मिसाल ॾिजनि था। निमाणे फ़क़ीर जो पंहिंजे मुर्शिद सखी क़बूल महमद में अणमयो सिद्क आहे। हू खेसि परमात्मा जो अवतार करे थो लेखे। कल युग में सखी अवतार धारे अंधन अबोजन खे राह ॾेखारे, जाम इश्क जो प्यारण आयो आहे, वाह वाह फैज़ फारूकीअ जो जारी आहे। हिकु ॿिए गीत में हू चवे थो, मूंखे न हुई कल काई, सतगुर ॻाल्हि गुझी समझाई, ॾिसे ॿुधे ॿोले केरु थो इहा राह बताई, मै जो प्यालो पुर प्यारे इश्क जी चाश चखाई, हिन जिस्म जो कराए विसारो मुर्शिद कई रहनुमाई, अखियुनि मंझि इसरार ॾेखारे भलारे कई भलाई, मां ऐं तुंहिंजो परदो हटाए कई चिटी रोशनाई, निमाणा ॿाहिरियों नाव विञाए ज़ात में ज़ात समाई। साधना जे मार्ग में इश्क हक़ीक़े जी महिमा ॻाईंदे निमाणो फ़क़ीर चवे थो, अधियूं इश्क न अथव आसान, पुरजी पायो पेर इन ई मैदान, जेका सिक जो सबक पढ़ंदी दुनिया खां सा मुंहुं मोड़ींदी, ॾाज ॾुखनि जो पलउ पाईंदी ताना तुनका सिर ते सहंदी, जेका इश्क सां नातो रखंदी होश अकुल सां सभु विञाईंदी, इश्क जी आग में जीव जलाईंदी ॿिया सभु लाहे गुमान, सांगो लाहे जा
सिरो

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि कुझु देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में कुडेबेलूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global centre of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुने डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी के गाए भजन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे राशिद नियाजी, सितार पर साथ दे रहे थे खालिद मुस्तफा, बांसुरी पर थे विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे करीम नियाजी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे

0: बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51 साल जोसेफ विजय के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की मरकजी शख्सियत होंगे। आज रियासत की राजधानी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ नए वजीर आला का खैर मकदम कर रहा है। 34% से ज्यादा मैंडेट हासिल करने वाले नीज कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। उनके वालिद एस ए चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें सियासी मुकालमे भी शामिल थे। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली टीवीके ने कांग्रेस वीसी के बाएं बाजू की पार्टियों और आईयूएमएल की हिमायत से अक्सरियत हासिल की है। हुकूमत की तश्कील के लिए उन्हें 5 दिन तक मुसलसल बातचीत और मीटिंगें करनी पड़ी। अपनी मकबूलियत और करिश्माती शख्सियत के बायस विजय ने पहली ही कोशिश में तारीख रकम करते हुए वजीर आला का ओहदा हासिल कर लिया। उंगा विजय नान वारेन उनका इंतखाबी नारा था, जिसके जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इस नई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा आवाम लेंगे, जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है। तमिलनाडु से जो आय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी के वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया है। इस तकर्री के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। 13 मई को जनाब रंगास्वामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुज़श्ता 9 अप्रैल को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में हुए इंतखाब में AINRC की क़यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगास्वामी 5वीं मुद्दत कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम बीजेपी कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान आसाम में एनडीए सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग बीजेपी के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद एनडीए कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद एनडीए कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेजी से तैयारियां जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा बीजेपी के इकतदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वजराए आला और मरकजी वजरा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: कांग्रेस पार्टी की आला क्यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादले ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश चैनीथाला और वीडी सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। مرکزی حکومت نے تمام مرکزی وزارتوں، محکموں، خود مختار اداروں اور مرکزی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سی پی ایس ایز میں کام کرنے والے آؤٹ سورسڈ اور کانٹریکٹ ملازمین کے تحفظ کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ لیبر کوڈز کی تعمیل کو سرکاری

0: खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया गया है ताकि उजरतों की अदायगी में ताखीर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का इरादा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफुज हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में कोड ऑन वेजेज 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नया फ्रेमवर्क 4 लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तसव्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बरवक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों महकमों आईनी और खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रर वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोजाना की उजरत शिफ्ट के अख्तितम तक हफ्तावार उजरत हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोजा उजरत 15 दिन खत्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मजीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानिए का एक जामी टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1200 सेकेंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरो स्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज में सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि यह कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माई हाइड्रोकार्बन ईंधन जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है जिसका मकसद कार्बन के सिफर अखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावा की जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद न सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबेगो में वाके नेल्सन आइलैंड का दौरा किया जहां उनके हमराह वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबेगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा پروگرام کے تحت ملازم کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی کم از کم اجرت میں پہلے سے طے شدہ حد سے

0: 30% इजाफा करने की तजवीज पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की सिलसिले में शहसुर्खी है, सुवेंदु अधिकारी ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया, मगरबी बंगाल में पहली बार बीजेपी की हुकूमत। इसी अखबार की एक सुर्खी है, तमिलनाडु में काफी उथल पुथल के बाद विजय की हुकूमत साजी का रास्ता साफ। वजीर आजम का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए के मंसूबों का आगाज करेंगे। इस खबर को अखबार प्रताप ने नुमायां तौर पर शाया किया है। सभी अखबारात ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर होने की खबर को सफे अव्वल पर जगह दी है। मुतअद्दिद दिफाई आदाब को निशाना बनाने वाले जदीद अग्नि मिजाइल के कामयाब तजुर्बे से मुतल्लिक खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत दीगर अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, लबनान में इजरायली फौज के हमले जारी, मजीद 31 अफराद हलाक, मुख्तलिफ गांवों को खाली करने का हुक्म।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जूसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। हिंदी साहित्य आज जिन नए पायदानों और क्षितिज को छू रहा है, उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए नए शब्द, नए भाव, नया शिल्प और जो विधान दिया है, उसमें हिंदी साहित्य और साहित्यकार आगे बढ़े हैं और परिष्कृत हुए हैं। छायावाद, प्रगतिवाद और आधुनिक काल के सभी साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के तय मानकों पर चलकर बड़े लेखक बने। साहित्य की के इस अंक में लीजिए सुनिए परिचर्चा, हिंदी साहित्य के परिष्कार में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ लेखक और समालोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखिका और संपादक डॉ. श्यामा शर्मा, वरिष्ठ कवि और लेखक श्री विनय विक्रम सिंह और डॉ. उमा शंकर चौधरी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर उमा शंकर।
2: इस बात को हम लोग जानते हैं कि द्विवेदी युग की शुरुआत जब हुई तो उसका नाम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण ही पड़ा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक जो उनका खुद का लेखन है, जो स्वरचित है उनका, जो आलोचनाएं लिखी और भी बहुत सारा लेखन है उनका, दूसरा जो अनुवाद है, और तीसरा जो उन्होंने एक संपादक की भूमिका निभाई। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो उन्होंने 1903 में उनकी शुरुआत हुई और उसकी भूमिका उन्होंने निभाई। तो सबसे पहले मैं क्षमा जी से बात करना चाहता हूँ।
3: जो आप अभी परिचय दे रहे थे तो मैं सोच रही थी कि उनका जो हिंदी भाषा के प्रति लगाव था उसकी चर्चा ज्यादा होती है उनके लेखन के मुकाबले। जैसे कि उन्होंने मानकीकृत किया, अनुभूति प्रदान की, भाषा को संस्कार दिया, विराम चिन्हों का उपयोग अवश्य किया, पहले नहीं होता होगा तो एक वाक्य के बाद विराम, और इसके अलावा ब्रज भाषा का उन दिनों बड़ा बोलबाला था तो खड़ी बोली उसके मुकाबले उन्होंने की। तो मैं सोचती हूँ कि उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि कहीं भी एक मानकीकृत भाषा ही चलती है, साहित्य में भी या तमाम सरकारी कामकाज की भाषा है या, लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि दो तरह की धाराएं भी रही।

0: भाषा को लेकर, एक तो ये है कि शुद्धतावादी दृष्टिकोण, क्योंकि द्विवेदी युग के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने फारसी और उर्दू के शब्दों को अलग किया
1: जी,
0: और दूसरी धारा कहती है कि भाषा एक बहती नदी है और जिस तरह नदी पहाड़ से निकलती है फिर वो मैदान में पहुंचती है फिर वो समुद्र में मिलती है, तो इस पूरी लंबी यात्रा में वो तमाम कछार और वो सब बहते हुए तटों की जितनी भी वहां की वनस्पतियां, वहां की मिट्टी, वहां की गंध, वहां की संस्कृति, क्योंकि हर संस्कृति और सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ पानी की तरह, तो दूसरी धारा ये कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भाषा अगर अपने में दूसरों से समाहित नहीं करेगी तो उसका विकास संभव नहीं है। और उस तरह से मैं ये भी देखती हूँ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मान लीजिए रायता चटनी या शब्दों को वो सम्मिलित करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द ले लें तो बहुत से लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। तो द्विवेदी युग का अवदान बहुत है, उन्होंने उस समय जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे और हमारे ऊपर इतना लंबा विदेशी शासन भी रहा है, उस समय उनके अवदान को नहीं बुलाया जा सकता कि हाँ अंग्रेजी के बरक्स
1: जी, बिल्कुल
0: हमारी भी एक भाषा है
1: जी, जी,
0: हमारे पास भी वो शब्द हैं कि हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारे पास भी वो अभिव्यक्ति है कि हमारी बात दूसरे समझ सकते हैं। उन्होंने सरस्वती में नई प्रतिभाओं को बहुत समाहित किया, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम लिया जाता है और भी बहुत से लोग हैं, तो हम आज भी तो ये कहते हैं कि नई प्रतिभाओं को नहीं मौका मिलता है, उन्हें अवसर मिलना चाहिए, तो उनके योगदान को बहुत आदरपूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए।
1: रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो बहुत मनखेज भी है, युग निर्माता का, तो मैं जितेंद्र जी से ये संवाद करना चाहता हूँ कि युग निर्माता शब्द
2: जी। उमाशंकर जी, तीन चार बातें अभी क्षमा जी अपनी बात कह रही थी
1: जी।
2: देखिए, युग निर्माता कहने का तो बड़ा सीधा आशय ये है कि जिस गद्य का आरंभ भारतेंदु के समय में हुआ, आज हम जिस हिंदी गद्य को जानते हैं उसका वह स्वरूप या उस स्वरूप के आसपास की चीज वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तैयार करवाई, पहली बात। दूसरी बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले ऐसे लेखक और संपादक थे जिनकी दृष्टि इस बात की ओर गई कि सिर्फ कविता, कहानी और निबंध से काम नहीं चलेगा, ज्ञान विज्ञान के जो दूसरे अनुशासन हैं उनकी चीजें हिंदी में आनी चाहिए। खुद संपत्ति शास्त्र जैसी किताब तैयार की उन्होंने और वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और माधव प्रसाद सप्रे और तमाम लोगों को उत्साहित किया कि आप लोग इस ढंग का काम करें, ये बहुत बड़ा रोल है। युग निर्माता यही करता है, मतलब एक तरह से हिंदी भाषा में कैसे वो सारी चीजें आ जाएं कि हम स्वाभिमान के साथ खड़े हों कि यह एक बनती हुई भाषा नहीं है बल्कि एक समृद्ध भाषा है, तैयार भाषा है। प्रेमचंद की जो बहुत अच्छी कहानियां हैं वो सरस्वती में उसी दौर में प्रकाशित हुई, रामचंद्र शुक्ल के निबंध उसी दौर में प्रकाशित हुए, और अब लोगों को आश्चर्य होगा कि इन लोगों की भाषा भी ठीक की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बाकायदा चिट्ठी लिख करके। अगर उस समय के सरस्वती के ड्राफ्ट आप देखेंगे तो एक संपादक का रोल बहुत बड़ा होता है, कई बार जिक्र नहीं होता, कई बार वो श्रेय नहीं मिलता, चीजें निकल जाती हैं इतिहास में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक लेखक के तौर पर भी जो उन्होंने निबंध लिखे, जो सारी चीजें लिखी, वह भी उतना चर्चा में नहीं आया अलग से लेखक के तौर पर जैसा निबंधकार के रूप में शुक्ल जी या और लोग हुए, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है उनका लिखा हुआ। एक संपादक के तौर पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारतीय राजनीति में बहुत सक्रिय ढंग से प्रवेश के पहले हीरा डोम की भोजपुरी की कविता छापी 1915 में उन्होंने,
1: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।
2: ये दृष्टि हिंदी की पत्रिका में भोजपुरी भाषा की कविता को सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक भारतीय सामाजिक संरचना को हम सुदृढ़ नहीं बनाएंगे तब तक हम अंग्रेजों से भी पूरी लड़ाई नहीं लड़ सकते,
1: बिल्कुल।
2: यानी कि जिस स्वाधीनता आंदोलन के भीतर जिस राष्ट्रवाद की हम पहचान करते हैं वह भी विकसित कर रहे थे वो सरस्वती के माध्यम से, एक बड़ी लड़ाई। महात्मा गांधी का जो पूरा कह सकते हैं योगदान है, उससे जुड़ी बहुत सारी रचनाएं आपको सरस्वती में मिलेंगी, जबकि 1921 के आसपास का जो पूरा कालखंड है अगर देखेंगे तो उसका बहुत सारा साहित्यिक दस्तावेज आपको सरस्वती में मिलेगा, कहानी के रूप में, निबंध के रूप में, सारी चीज। तो युग निर्माता तो यही करता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग विनय विक्रम जी की तरफ चलते हैं, और विनय जी, एक संपादक के रूप में आप कैसे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को?
3: जी, जिस प्रकार से आज आकाशवाणी का यह 90वां साल है और हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस गोष्ठी में चर्चा के लिए। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक संपादक के रूप में ही अगर देखेंगे तो वो उनका सर्वांगीण एक तरह से बोलेंगे व्यक्तित्व

0: उसको आकलन उनका नहीं कर सकते। उनका आकलन खाली संपादक होने से नहीं
1: था। दूसरा सवाल था दरअसल
0: उनका जो नियम था, उनका जो अपने दैनंदिन कृतित्व के साथ जो उनका जुड़ाव था, उसके उन्होंने बहुत ही कठोर नियम बना रखे थे। वो उन नियमों को अक्षरशः पालन करते थे। हालत ये होती थी कि उन्होंने दफ्तर में लोगों से मिलने के लिए भी पट्टिका लगा रखी थी कि इस समय आप नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। उनका समर्पण इतना था कि आप ये मान के चलिए उन्होंने सरस्वती के 6 महीने के अंक पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे कि अगर कोई आपद स्थिति आती है तो सरस्वती निर्बाध रूप से छपती रहनी चाहिए। इस तरह का जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनका संपादक का एक दायित्व था, वो उन्होंने जितनी ईमानदारी और जितनी निष्ठा से निभाया है, उसको हम आज की तारीख में धर्मवीर भारती या इस तरह के जो हमारे उच्चस्थ संपादक रहे हैं उनके समकक्ष हम रख सकते हैं। उन्होंने कभी भी समझौते नहीं किए। एक उनका किस्सा था कि एक कोई आया कि वो उनको शक्कर की कुछ थैलियां दे गया कि ये लीजिए और मेरे बारे में लेख लिख दीजिएगा। थोड़े समय बाद वो फिर से गया उनके पास तो उन्होंने कहा जी देखिए ये थैलियां आपके रखी ले जाइए, लेख वही छपेगा जो सरस्वती के मानक पर स्थापित हो।
1: बिल्कुल।
0: तो केवल संपादक होना पर्याप्त तो नहीं हम कह सकते उनके लिए। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने साहित्य में हिंदी को प्रतिष्ठापित किया। लोग उनको कहते हैं कि वो खाली भाषा सृष्टा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तमाम अनुवाद है उन्होंने अंग्रेजी से लेकर, संस्कृत से लेकर, हिंदी से लेकर। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा कि उन्होंने बाहर का जो विदेशी साहित्य था उसको भी भारतीय साहित्य की धारा में उन्होंने उसको स्थान दिया। वो एक वैचारिकी थी जो उससे हमारे साहित्य की संपदा विस्तृत हुई। और साहित्य तभी विस्तृत हो सकता है जब वो वैचारिक बोध से ओतप्रोत हो, उसके अंदर तमाम नदियां प्रस्फुटित हो रही हो, तब कहीं वो एक सागर का रूप धारण करता है। तो उनको हम खाली एक हैं कि वो संपादक थे तो ऐसा नहीं है।
1: जी जी जी।
0: उनके लिए मैं एक दोहा आज के लिए जरूर अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन के साथ कि भाषा के उत्थान में किया अनवरत कार्य, महावीर जी को नमन, वंदन हो स्वीकार्य।
1: तमा जी आप संपादिका भी रही हैं और लेखिका भी हैं दोनों, तो ये चीज महावीर प्रसाद द्विवेदी से एकदम जुड़ रहा आपका। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल सीधा पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा होता है कि संपादक होते हुए आपका लेखकीय व्यक्तित्व थोड़ा इग्नोर हो जाता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है? क्योंकि द्विवेदी जी में ये देखने को मिल रहा है ना कि उनका जो संपादकीय व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा हो गया है कि उनका जो लेखकीय व्यक्तित्व वो थोड़ा दबता हुआ सा दिख रहा है, जबकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है लेखन में। आप देखें संपत्ति शास्त्र जैसी पुस्तक और बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको?
2: जैसे अभी कहा विक्रम जी ने कि धर्मवीर भारती जी के समकक्ष नहीं, धर्मवीर भारती जी से बहुत बड़े
1: थे। बिल्कुल।
2: उसका कारण यह है कि भारती जी एक बड़ी कॉरपोरेट के एडिटर थे, उनके पास हर तरह की सुविधाएं थी। उन्हें कागज की कोई चिंता नहीं करनी है, उन्हें प्रिंटिंग की कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, एक हद तक सर्कुलेशन की चिंता करनी है, लेकिन उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट है। उनको किसी चीज की चिंता नहीं करनी सिवाय रचनाओं का आकलन करने का, कौन सी कविता कहानी छपे। और जो मानकीकृत करने की बात की जा रही है तो हर जगह की अपनी पॉलिसीज और मानकीकरण होते हैं। आज भी कोई उस तरह से रचना यदि कंपनी की पॉलिसी के विरुद्ध है तो कहीं नहीं छप सकती, वो चाहे आपकी सबसे बेहतरीन रचना हो। और जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं कि संपादक के आगे आपका लेखक कुछ पीछे छूट जाता है, तो आपको अगर याद हो तो भारती जी के बारे में भी कहा जाता था कि उन्होंने अपनी सबसे अच्छी रचनाएं तब लिखी जब वो संपादक नहीं थे। द्विवेदी जी के बारे में पढ़ते हुए अभी नए सिरे से जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे यही लगता है कि वो किस वर्ग से आते थे और उन्होंने किस वर्ग के लिए भी काम करने की कोशिश की। जो विमर्शों का हाल है उसमें ये देखना बहुत जरूरी लगता है। आपने कहा कि वो एक सामाजिक एकीकरण हो तभी हम लड़ सकते हैं, विदेशी ताकतों को हरा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कितना काम किया। मेरे ख्याल में जातिवाद के बेहद विरुद्ध थे उस समय, ये समस्या थी और तमाम तरह की बाद में फिल्में बनी तो उस समस्या को उन्होंने समझा। इसके अलावा आज तक तो ये कहा जाता है ना कि हिंदी में फाइनेंस की किताबें नहीं है
1: जी।
2: हिंदी में इकोनॉमिक्स की किताबें नहीं है, हिंदी में तमाम जो वैज्ञानिक सोच की किताबें नहीं, आज तक कहा जाता है ना। रूस का उदाहरण दिया जाता है, जापान का उदाहरण दिया जाता है, जर्मनी का उदाहरण दिया जाता है, फ्रांस का उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही इतना विकास किया है कि उन्हें किसी और भाषा

0: की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए कि द्विवेदी जी का सोच कहाँ काम कर रहा था, जहाँ वो आर्थिक समस्याओं पे भी लिख रहे थे, वैज्ञानिक जो खोजें हैं या विज्ञान से जुड़ी चीजें हैं उन पर भी बातचीत कर रहे थे। और ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो बनारस में रहते थे और वाराणसी में कुरीतियों का विरोध करना अपने आप में बेहद हिम्मत का काम था।
1: सही बात जी। मैं जितेंद्र जी के पास जा रहा हूँ फिर से। अब जितेंद्र जी, जैसे आप शिक्षक हैं और लेखक भी हैं, तो क्या वाकई लगता है कि संपादक के रूप में उनकी ज्यादा ख्याति हुई और उनकी पूरे लेखन, जैसे मुझे बार बार लगता है कि संपत्ति शास्त्र जैसी पुस्तक विद्यार्थियों के बीच नहीं है?
2: उसका कारण था
1: जी,
2: जैसा मैं आरंभ में कह रहा था कि देखिए संपादक रूप तो उनका निश्चित ही अतुलनीय है।
1: बिल्कुल,
2: बाद के भी जो बड़े संपादक भारत में हुए उन लोगों का सबका बड़ा योगदान है। लेकिन देखिए, जो जंगल पड़ा हो या कोई चीज जहां दूर दूर तक न दिखती हो उसे उर्वर बना देना सबसे बड़ी भूमिका होती है। फिर तो खेती कोई भी कर लेता है। तो उन्होंने वो जमीन तैयार की, वो धरती तैयार की जिसपे हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता फली फूली।
1: बिल्कुल,
2: उसके पहले भारतेंदु एक पहले व्यक्ति है, भारतेंदु ने वो काम किया था और उसको बहुत वैज्ञानिक ढंग से उसको आगे बढ़ाया द्विवेदी जी ने बढ़ाया। तो यह तो एक है। उनके लेखन का मामला देखिए, जब वो लिख रहे थे तो वो ये जानते थे कि वो दौर औपनिवेशिक समय था, जो लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वो अंग्रेजी में प्राप्त कर रहे थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका बोध था कि वो जो अर्थशास्त्र को लेकर या ज्ञान के अन्य अनुशासनों को लेकर जो किताबें वो तैयार कर रहे हैं या करवा रहे हैं तत्काल उसके पाठक नहीं होंगे, और तत्काल जब पाठक नहीं होंगे तो चर्चा भी नहीं होगी। लेकिन आज हम जानते हैं, आज जब हम फिर से चर्चा करते हैं कि हिंदी में हमें विज्ञान की पुस्तकें चाहिए, तकनीक की पुस्तकें चाहिए, मेडिकल की पुस्तकें चाहिए, फाइनेंस की पुस्तकें चाहिए, तब याद आता है कि महर्षि प्रसाद द्विवेदी जैसे पूर्वजों ने इसकी जमीन तैयार की, लेकिन हम लोग उसका विकास नहीं कर सके, हम लोग उसको उस रूप में विकसित नहीं कर सके। ये हमारी असफलता है, उनकी असफलता नहीं है। और ऐतिहासिक संदर्भ तो बराबर रहेगा कि हमारे पूर्वजों का योगदान बड़ा है, हम नहीं कर सके, तमाम अन्य कारण हैं दुनिया से जुड़ने, और तमाम कारणों से हम अंग्रेजी दां होते चले गए, पूरा मिडिल क्लास का चरित्र बदल गया
1: जी,
2: सारी चीजें बदल गईं। भारती जी का आप जिक्र कर रहे थे, वो जो पत्रिकाएं 80 के दशक में, 70 के और 90 के दशक तक जो पत्रिकाएं मध्यवर्ग के घरों में बैठके में, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, वहां हुआ करती थी, अब वहां नहीं होती,
1: नहीं होती।
2: उस तरह की सब चीजें खत्म हो। लेकिन आधार तैयार किया था द्विवेदी जी ने, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लेखन की कोई उपेक्षा हुई। होता यह है कि ये सही है कि उन्हीं के समकक्ष दूसरे लेखक ज्यादा समादृत हुए, क्योंकि वो लेखक के रूप में ही आ रहे थे। और ये हर कालखंड में होता है कि आपके सभी रूपों की चर्चा,
1: एक पहचान ज्यादा बड़ी हो गई,
2: होती ही है सब हर कालखंड में, हर व्यक्ति के साथ ये होता है।
1: विनय जी, हम लोग भाषा पर बात करें एक बार फिर से। तो द्विवेदी जी का भाषा पर जो योगदान है, जो उनकी भूमिका है, हम सब जानते ही है कि खड़ी बोली को उन्होंने किस तरह कविताओं में इस्तेमाल किया, और राष्ट्रभाषा को लेकर के भी उन्होंने काफी काम किया है। तो भाषा वाला पूरा जो पक्ष है उनका किस तरह से एक वर्ड रखता है?
3: जहां तक हम अगर उस काल की बात करें
1: जी,
3: तो अभी चर्चा में जैसे बीच में आया, मैंने बोला कि ब्रज भाषा उस समय अपना एक अधिकार रखे हुए थी। गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो गया था, किंतु पद्य अब भी ब्रज और लोक भाषा से ही ढका हुआ था।
1: बिल्कुल,
3: उस समय का जो एक बोल सकते हैं एक अप्रतिम योगदान जो हमारे आचार्य जी का रहा, उन्होंने खड़ी बोली को कविता के अंदर ढालना शुरू किया। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रयास था, एक ऐसा कदम था जिसने आगे आने वाले समय में हिंदी काव्य का एक स्वरूप परिवर्तन किया। उन्होंने जो कुमार सम्भुकालिदास कृत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका उन्होंने अनुवाद किया था। उसका एक छंद मैं आपको सुनाता हूँ। गेरु से लिख भोज पत्र पर जहां अनंग देव संदेश, विद्याधर सुंदरी भेजती है पिय पास विशेष विशेष, जहां रात में विपिन निवासी औषधियां रख दीप समान, करते हैं उनके प्रकाश में कला के विविध विधान। अब भाषा की सुचिता के साथ साथ उन्होंने जो एक तरह से बोलेंगे कि आज तक कालिदास जी के ग्रंथों पर कार्य हो रहा है, लेकिन हिंदी का जो एक स्थापत्य है, उसका जो एक ललित स्वरूप है, उसको किस प्रकार से उन्होंने इसमें बांधा, वो विचारणीय है और वो सराहनीय के साथ साथ शोधपरक भी है। हमें उन चीजों को फिर से देखना चाहिए कि उन्होंने किस स्तर पर जाकर भाषा के साथ एक समन्वय बैठाया।

0: हिंदी का स्वरूप निर्धारण किया और उस तरह से एक नई धारा साहित्य की उन्होंने प्रतिपादित की। यहाँ पर ही अगर हम ये देखें, वो बैसवाड़ी तो जानते ही थे क्योंकि वो रायबरेली से थे, उनको बंगला भी आती थी, उन्हें मराठी भी आती थी, संस्कृत वो धारा प्रवाह बोलते थे। तो इतनी भाषाओं का ज्ञान और उसके बाद इन सब भाषाओं के निचोड़ के साथ जो उन्होंने हिंदी को एक उच्चतम स्तर पर स्थापित किया, उसके लिए उनका योगदान हमेशा वंदनीय ही कहा जाएगा। और उनका एक और था, वो कविता में ये जो रीतिकालीन और छायावादी जो विचारधाराएं चल रही थी उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कविता केवल रास विलास की नहीं होगी, वो समाज के साथ जुड़ेगी, वो समय और सामयिकता के साथ जुड़ेगी। भारत दुर्भिक्ष शीर्षक सी एक उनकी कविता है, उसके छंद देखिए कि गली गली कंगाल पेट पर हाथ दो धरि धाएं, अन्न अन्न पानी पानी कहीं शोर प्रचंड मचाएं, और बालक युवा जरठ नारी नर भूख भूख कहीं गावें, अविरल अश्रुधार आंखिनते वे बारम्बार बहावें। अब इसमें उन्होंने लोक भाषा का भी प्रयोग किया और एक प्रवाह को भी उन्होंने स्थापित किया कि आम जनमानस तक अगर हमें अपनी बात कहनी है तो वहां पर हमें क्लिष्टता की तरफ नहीं जाना है,
1: सरलता।
0: उन्होंने इस चीज का एकदम स्पष्ट रूप से निर्धारण किया कि कविता केवल शुद्ध शब्दों से नहीं बनती, वो शब्दों के पक्षधर नहीं थे। हालांकि उन्होंने व्याकरण बनाया, हिंदी को सुधारा, लेकिन वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा। उनका कहना हमेशा ही रहा कि कविता की भाषा हमेशा वो होगी जो आम जनमानस के अंतर तक पहुंचे, उसको छुए, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करे। तो भाषिक स्तर पर उनका जो कार्य रहा, हिंदी को उन्होंने जो अपना योगदान दिया, वो हम आज तक उससे कृतकृत्य हैं। उनकी बदौलत ही हम हिंदी को अपना सके हैं और उसके साथ अभी तक उस स्वरूप के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जीतन जी, एक आलोचक के रूप में आप देखें तो महावीर साहब द्विवेदी, जैसा कि विक्रम जी जिस मुद्दा को उठा रहे थे कि उन्होंने रीतिकाल और छायावाद का विरोध किया है, तो रीतिकाल वाला तो समझ में आता है, लेकिन ये छायावाद का विरोध जो उन्होंने लेख एक लिखा था आजकल के हिंदी कवि और कविता जो 1927 में प्रकाशित हुई है, इसको किस तरह देखते हैं?
2: नहीं, 27 से बहुत पहले उन्होंने हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविताओं में से एक जूही की कली को वापस कर दिया था, छापा नहीं था निराला की कविता को। देखिए, इस बात को हम सबको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना एक मिजाज होता है, हर व्यक्ति का एक आस्वाद होता है, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, और आस्वाद कई चीजों से तैयार होता है। आस्वाद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता है, आस्वाद आपके समय की राजनीति, आपके समय की परिस्थितियां, आपके समय का जो पूरा वातावरण होता है वह भी तैयार करता है। आप अपने को जिस भूमिका में ढालते हैं उसके लिए जो तय करते हैं आप प्रतिमान, उससे भी आस्वाद तय होता है, तय होता है कि हम क्या पसंद करेंगे, क्या छापेंगे। तो द्विवेदी जी के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी थी, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, वो बात आई भी। एक तो हिंदी की जो कविता थी उसे हिंदी गद्य की जो भाषा थी उसमें लाना था। देखिए, अब जब हिंदी हम कह रहे हैं तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ब्रज को या अवधि को अलग कर रहे हैं उससे, लेकिन जिस खड़ी बोली हिंदी में हम लोग आज कविता लिखते हैं, कविता को खड़ी बोली में लिखा जाना है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि वो तैयार कर रहे थे। प्रसाद ने भी ब्रज में कविता लिखी, फिर खड़ी बोली की ओर प्रसाद आए, हरिओत जी आए, तो आस्वाद का मामला उनके लिए उस समय सीधे सीधे राष्ट्रीय चेतना जो थी वो अनिवार्य थी।
1: लेकिन एक संपादक के रूप में इसको, ठीक है, धनात्मक बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन क्या अतिशय हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा इसको?
2: नहीं, नहीं माना जाएगा।
1: लेखकीय स्वतंत्रता भी तो जा रही थी।
2: नहीं, इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए।
1: जी जी,
2: देखिए, उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा की, उन्होंने कवि को अपनी बात कही कि हम इसको ऐसे चाहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो उस कविता में, जिसे आज हम साधारण बात मानते हैं, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि इसको इस रूप में नहीं आना चाहिए। एक तरफ देखें आप कि मैथिली शरण गुप्त जैसा कवि लगातार छप रहा, भारत भारती जैसा संग्रह प्रकाशित हो रहा है, दूसरी तरफ उनको तत्काल भाषा का प्रयोग, उन्हें ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं किया होगा, पंत का या निराला का प्रभावित नहीं किया होगा, लेकिन उनको ये लग रहा था कि अभी ये पूरा कालखंड जो है वो राष्ट्रीय चेतना का है, और सीधे राष्ट्रीय चेतना की कविताएं आनी चाहिए। प्रथम रश्मि भी राष्ट्रीय चेतना की कविता है, लेकिन ये धीरे धीरे, तो छायावाद के वो विरोधी नहीं थे, उनको ये लग रहा था कि हिंदी अभी जिस स्थिति में है,
1: शुरुआती दौर भी था,
2: शुरुआती दौर में थी, तो ये माने ना कि बनता है आस्वाद तो रहता है, उसकी एक सीमा, देखिए एक हर व्यक्ति की सीमा है, अंततः महावीर प्रसाद द्विवेदी भी मनुष्य थे, तो उनका आस्वाद था, और जितना आस्वाद था उसमें उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, जिसको नहीं पसंद कर पाए नहीं कर पाए।
0: जी,
1: जी जी विक्रम जी, और आप कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी पर कुछ जोड़ना

0: चाहते हैं
1: हाँ बिल्कुल
0: उनको
1: बिल्कुल,
0: दे
1: एक
0: दीजिए,
1: बहुत ही रोचक
0: कुछ
1: बात
0: प्रसंग छूट
1: बताता
0: गया
1: हूँ
0: हो
1: उनके
0: कहीं।
1: बारे में।
0: जी जी
1: उनका जो असल नाम था वो था महावीर सहाय द्विवेदी,
0: अच्छा
1: वो उनका नाम बदला है जब वो अपने गांव में एक मदरसे में उन्होंने जब उनका दाखिला कराया गया तो वहां पे जो मौलवी साहब थे उन्होंने वो नाम में सहाय की जगह प्रसाद कर दिया था
0: अच्छा
1: और उसके उपरांत से उनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया था।
0: महावीर प्रसाद द्विवेदी को
1: ना
0: एकदम टोटलिटी में एक दो
2: मैं
0: पंक्ति
2: उनको
0: में
2: नमन
0: बस।
2: करती हूँ और आप सभी ने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए, लेकिन एक चीज से मेरा थोड़ा सा विरोध है। जैसे आस्वाद की बात आप कर रहे थे तो श्रृंगार जहां भी जिस देश में रुका उसकी अभिव्यक्ति रुकी, वहां तानाशाहियां आई।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी
0: जीतन जी आखिरी
3: नहीं, वो श्रृंगार के विरोधी होते तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करने की कोशिश नहीं करते। श्रृंगार नहीं, वक्त की जरूरत का मामला था कि उनको लग रहा था कि
0: युगानुरूप
3: समय क्या। कालिदास से उनका कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए कालिदास को ला रहे थे कि आप हिंदी वाले भी जानो कि एक महाकवि ने अपने ही देश की एक महान भाषा में क्या लिखा है। श्रृंगार से उनका कोई विरोध नहीं था, महाकवि माघ पर लिखा उन्होंने, तमाम चीजों पर। उस समय उनका सिर्फ ये था कि अभी तत्काल ये समय। अच्छा आप देखें कि वो पूरा कालखंड जो है वो है जिस समय महात्मा गांधी प्रवेश करते हैं, जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, असहयोग आंदोलन 1931 का जो समय है, गांधी जी के आंदोलन का समय है, प्रेमचंद इस्तीफा देते हैं, पूरा वातावरण जो भारतीय राजनीति का स्वाधीनता आंदोलन का है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह लगा कि अगर हमारे आस्वाद का विस्तार श्रृंगार की ओर जा रहा है तो अभी रोक लेना चाहिए उसे। वो उसके विरोधी नहीं है,
2: हालांकि रुकता नहीं है, कोई चीज रुकती कभी नहीं।
0: चलिए इस गर्मा गर्म बहस को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर बात कर रहे थे और आप सभी वक्ताओं ने, सभी लेखकों ने बहुत अच्छी बातचीत की और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
3: आपका भी धन्यवाद भाषण।
4: हिंदी साहित्य के परिष्कार में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ लेखक और समालोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखिका और संपादक डॉक्टर क्षमा शर्मा, वरिष्ठ कवि और लेखक श्री विनय विक्रम सिंह और युवा लेखक डॉक्टर उमा शंकर चौधरी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर उमा शंकर। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री कामता प्रसाद।
5: श्यामलाल कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा 6 मई 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 21वीं सदी का साहित्य सृजन और विमर्श विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्वानों ने विषय से अलग अलग आयामों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत अध्यापकों प्राध्यापकों शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। संगोष्ठी के प्रथम सत्र में बीज वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर रामेश्वर राय ने कहा कि साहित्य की यह प्रवृत्ति होती है कि एक तरफ उसमें सनातनता होती है और दूसरी तरफ देशकाल बद्धता भी, जो इन दोनों सिरों को साथ लेता है वही बड़ा रचनाकार कहलाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्षा और आलोचक प्रोफेसर सुधा सिंह ने कहा कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं लेकिन साहित्य अपनी परंपरा से कटा हुआ नहीं हो सकता। 21वीं सदी के इन 25 वर्षों के समय और समाज को धारण करने वाली संस्कृति बदल गई है और आज का साहित्य इसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हिंदी साहित्य में विधाओं के बीच दूरियां और जकड़बंदियां टूट गई हैं और विभिन्न विधाओं का मिश्रण हो रहा है। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रसिद्ध आलोचक और मीडिया विमर्शकार प्रोफेसर सुधीश पचौरी ने डिजिटल क्रांति के संदर्भ को सामने रखते हुए साहित्य सृजन की बदलती प्रवृत्तियों और चुनौतियों को पहचानने की बात की। उन्होंने समकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हुए कहा कि सृजन वही है जो ऑर्गेनिक तरीके से विकसित हो तथा कच्चे से पक्के की ओर बढ़े। उन्होंने लेखन को इलीट कार्य बताते हुए कहा कि लेखन फुर्सत में होता है, फिर भी वर्तमान समय का साहित्य दुख पर केंद्रित है। उन्होंने वर्तमान शोध की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि शोध केवल सामान्य विवरण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि विषय के भीतर गहन विश्लेषण होना चाहिए। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र की शुरुआत कहानीकार एवं संपादक संपादक ARSD कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर श्रीधरम द्वारा की गई। इस अवसर पर कहानीकार स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रोफेसर टेकचंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि जैसे जैसे हम लोकतांत्रिक होते जाएंगे अस्मिताएं आती रहेंगी। उन्होंने वर्तमान कहानियों की विषय वस्तु तथा सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते हुए ATM बहू, चावी, सरोगेट मदर आदि कहानियों का उल्लेख किया तथा बताया कि वर्तमान समस्याएं किस प्रकार साहित्य और कहानियों में अभिव्यक्त

0: हो रही हैं। कवित्री एवं कहानीकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ज्योति चावला ने अपने वक्तव्य में कहा कि सृजन और विमर्श को सृजन बनाम विमर्श के रूप में देखती हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी क्रांति डेटा विस्थापन सत्ता राजनीति प्रतिरोध स्त्री विमर्श तथा लैंगिक चेतना पर विचार व्यक्त किए। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल राय ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज का साहित्य और आलोचना दूसरी परंपरा से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने स्त्री विमर्श विकलांग विमर्श युवा विमर्श आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि आज अनेक प्रकार के विमर्श साहित्य में उपस्थित हैं। उन्होंने वर्तमान साहित्य को फास्ट फूड की संज्ञा देते हुए कहा कि साहित्य को आंख और दिमाग खोलकर पढ़ना चाहिए। उन्होंने शोध में बढ़ती कट एंड पेस्ट प्रवृत्ति अनुवाद की समस्याओं तथा साहित्य के समक्ष उपस्थित संकटों पर चिंता व्यक्त की। इस गोष्ठी के संयोजक एवं विभाग प्रभारी प्रोफेसर समरेंद्र कुमार थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के शंकरलाल सभागार में 7 मई को डॉक्टर प्रशांत वर्थल की बहुचर्चित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री रामलाल मुख्य अतिथि डीडी न्यूज के संपादक एवं लेखक श्री अशोक श्रीवास्तव एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय श्री रामलाल जी ने कहा कि भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि यदि भारत अपने मूल सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टि को पुनः आत्मसात करता है तो वह पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है। उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण को समय की आवश्यकता बताया। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने पुस्तक के लेखक डॉ. प्रशांत की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक भारतीय चेतना के पुनर्निर्माण के इस महायज्ञ में एक महत्वपूर्ण आहुति के समान है। उन्होंने विद्यार्थियों शिक्षकों और शोधार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह पुस्तक केवल पढ़ने योग्य ही नहीं बल्कि भारतीयता को समझने का एक वैचारिक दस्तावेज है जिसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री कामता प्रसाद। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है और श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं काजल आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत की जिन्होंने अपने नवाचार परिश्रम और कृषि के प्रति समर्पण से न केवल किसानों की तकदीर बदली बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया। आज के इस हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित जाने माने कृषि वैज्ञानिक गेना भाई पटेल जी। आइए इनसे जानते हैं इनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के बारे में। गेना भाई पटेल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो मैं आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कृषि की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ।
4: नमस्कार मित्रों, मैं गुजरात से लाखनी तहसील से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमारा नया वाव थराज जिला बन गया है। वहां से मैं एक छोटा गांव सरकारी गोलिया गांव है वहां से आता हूँ और मेरे पिताजी भी किसान थे, उन्होंने भी वो किसानी करते थे। मैं 5 भाई है और एक बहन है। 5 भाई में मैं सबसे छोटा हूँ
3: जी।
4: और मुझे 12 महीनों के टाइम के बाद में मुझे पोलियो हो गया था, तो मेरे पिताजी मेरे भाई और मेरी माँ बहुत चिंता करती थी कैसे इसका गुजारा होगा
3: जी।
4: लेकिन हमारे भाइयों ने और हमारे पिताजी ने हमें हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके गए। मेरे बड़े भाई कंधे पे बैठा के वो लेके जाते थे।
3: क्या बात।
4: तो मैं 11 तक पढ़ा हूँ। 12वीं कक्षा तो मैंने ये बेटा बेटियों को जब मोटिवेट करने के लिए जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप घबराइए मत। 12वीं कक्षा मैंने 40 साल के बाद में पास की है। हाँ, तो कि बेटा बेटी क्या है वो अपघात कर लेते हैं, तो उनके लिए कि कोई वो ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य नक्की करते हैं तो वो उसके पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पढ़ाई करने के बाद में 12 तक ये पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिया। और मेरे पिताजी मेरे भाई जो ये कृषि करते थे तो उनमें क्या होता था, उसमें बहुत ज्यादा आय नहीं होती है। राई लगाते हैं, कैस्टर लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं।

0: पशुपालन करते हैं
1: जी,
0: तो उसमें पैसे इतना किसान को जितना चाहिए इतना पैसा नहीं रहता है। तो हम सोचते थे कि किसान के लिए क्या किया जाए कि हमारे पड़ोसी का भला कैसे हो।
1: बिल्कुल,
0: हमारा तो होता ही है लेकिन पड़ोसी का अच्छा होना चाहिए। हमारा पड़ोसी मजबूत होगा तो हम मजबूत रहेंगे।
1: जी,
0: तो हमने सोचा कि हमने उसी टाइम आज से करीबन 1990 में मैंने वो मस्टर्ड का यानी राई का कोऑपरेटिव मंडल बनाया और उनकी वजह से किसानों को रासायनिक खाद है उनका सीड से है कम लागत में उसको अच्छा सीड मिलता था। फिर बाद में हमने दूध का डेयरी बनवाया तो गांव के किसान दूध का व्यापार करते थे
1: जी,
0: लेकिन उनसे भी हम जो चाहते थे वो नहीं होता था
1: जी।
0: तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी वजह से किसान के घर में बहुत पैसे आए। तो हमने बहुत सर्च किया, हमने बहुत भारत भ्रमण किया यानी 3-4 राज्य में मैं घुमा, राजस्थान गया, महाराष्ट्र गया, यूपी गया। फिर मैंने देखा कि ये अनार की खेती बहुत अच्छी है
1: जी जी।
0: तो उसी टाइम हमने हमारे भाइयों को भी बोला कि ये करने जैसा है और वो मेरे को विश्वास करते थे
1: जी
0: कि नहीं ये बोलता है तो कुछ होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो हमने उसी टाइम 2004-05 में अनार के पौधे 18,000 पौधे लाके लगा दिए।
1: 18,000?
0: हाँ।
1: कहाँ से लाए आप?
0: महाराष्ट्र से।
1: और कहाँ लगाया आपने?
0: हमारे खेत में।
1: अरे वाह, 18,000 बहुत बड़ा नंबर है ये। जी,
0: एक क्योंकि इसका मैं एक सोच ऐसी रखता था कि अपने को एक ट्रक तो होना ही चाहिए मान
1: जी,
0: एक ट्रक भर के हम कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी जा सकते, लेकिन किसान के पास छोटे रूप में जो माल रहता है तो उसको बेचने में बहुत तकलीफ होती है
1: जी।
0: फिर पौधे के लगाने के बाद में बहुत सारी, जब हम कुछ नया करते हैं तो किसान लोग है कि कोई भी लोग रहते हैं वो बहुत नेगेटिव बात करते हैं कि होने वाला
1: शुरुआत में,
0: हाँ शुरुआत में कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये ऐसा है ऐसा है, लेकिन वो लगा दिया उसके बाद में 3 साल के बाद में हमारे पौधे में माल आ गया।
1: अरे वाह, फल आ गया।
0: फल आ गए क्योंकि पहला तो हमने अनार भी देखा ही नहीं था, सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई फ्रूट देखे थे पहला, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी है सरदार कृषि नगर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी हमें गाइड किया, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हमें गाइड किया, हमारे जिला के खेतीबाड़ी अधिकारी लोग रहते हैं उन्होंने भी गाइड किया, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब कृषि मेले लगाए थे उसी वक्त उन्होंने बात किया था कि सर ये किसानों का बहुत दिक्कत वाला मामला है पानी के बारे में। तो हमारे क्या है, हमारे बनासकांठा ड्राई एरिया है बिल्कुल, तो वहां पे पानी का कोई वो नहीं रहता है, इसीलिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों के लिए 50% सब्सिडी बना दिया ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के लिए, तो उसकी वजह से छोटे किसानों को बहुत फायदा हुआ। हमारे लगाने के बाद में 3 साल के बाद में जब हम पैसे मिलने लगे तो किसान भाइयों ने भी लगाना शुरू कर दिया, वो आने लगे हमारे खेत पे। तो उसी टाइम करीबन 10 साल में मेरे फार्म पे 80,000 किसानों ने मुलाकात की है,
1: 80,000
0: मेरे फार्म के किसान लोग आते थे, गाड़ियां आती थी, बसें आती थी, बाइक पे आते थे, सभी आते थे। तो हम सुबह से 6:30 बजे से बैठ जाते थे और किसान भाइयों को बताते रहते थे कि आप ऐसे खेती करो, आप ऐसे खेती करो। हमारे बड़े भाई है जो फील्ड में बताते थे हमारा फार्म। तो फिर उसके बाद में किसान लोग जुड़ने लगे तो हमने सोचा कि किसानों को हेल्प करना चाहिए, तो हमने वो नर्सरी बना दी अनार की। तो उसमें नई मुनाफा नई नुकसान ऐसी तरह से हमने किसानों को पौधे उनको लगाने के लिए पौधे देने लगे। फिर जो कोई गरीब किसान है उसके पास से हमने पैसे नहीं लिए और सभी किसानों को बोला कि आप लगाइए, और हमारा ट्रैक्टर रहता था उसकी वजह से उनको छिड़काव करना है दवाइयां वगैरह का तो हम करते थे बिल्कुल फ्री में, आप काम कीजिए। और ऐसी तरह से हमारी अनार की क्रांति काम आ गई
1: जी।
0: फिर बहुत सारे किसानों ने लगा दिया, हमारे बनासकांठा में करीबन 11,000 हेक्टेयर में लग गया, फिर हमारे कच्छ में 11-15,000 हेक्टेयर में लग गया, फिर
1: अनार,
0: फिर हमारे पास में राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, जालौर जिला है, जैसलमेर जिला है, वहां पे बहुत सारे अनार लग गए। जो रेती के टिंबे रहते थे वहीं पे अनार का पौधे लगाते रहे।
1: क्या बात, क्या बात। तो इसके लिए क्या करना पड़ा आपको, जो हमने रेतीली खेतों में रेतीली जो एरिया था वहां भी अनार की खेती?
0: हाँ, उसे वो
1: एक लगी होगी बहुत, उसमें चैलेंजेस भी आए होंगे।
0: बिल्कुल चैलेंजेस, लेकिन ये जब ड्रिप इरिगेशन आ गया उसकी वजह से किसान का सब मेहनत वो था वो कम हो गया, क्योंकि पानी हर पौधे के उसमें जाता है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत वाला मामला नहीं रहा और किसान इतने खुश हो गए कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान अनार के किसान है, एक हेक्टर की

0: बात करता हूँ, तो एक हेक्टर में 1000 पौधे लगाते थे
1: जी।
0: तो एक पौधे से 25 से 30 किलो माल आता है। मेरा तो सरेराज 50 टन माल निकला था, लेकिन 25 टन मानते हम, तो एक पौधे से 25 किलो मानते हैं और 100 रुपया 1 किलो की आय होती है, तो एक पौधा 2500 रुपया देता है,
1: 2500 रुपये देता है।
0: और 1000 पौधे 1000 × 2500 यानी 25 लाख रुपए एक हेक्टर से किसान को मिल जाता
1: है। तो इतना आपने किया, बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम। तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपकी जो सोच रही है उसमें समाज और किसानों के प्रति जो आपका आपकी संवेदनशीलता थी वो कैसे आई, कैसे आपकी सोच इस तरह से निकली?
0: मेरे पिताजी ने मुझे वारसा में दिया है ये, तो कि अपने किसी को हेल्प करना है, कोई जो गरीब किसान है कि कोई गरीब और भी है कुछ भी, तो उसी के लिए काम करना है। वो तो हमने परंपरा से चली आती है
1: जी,
0: कि हमारा दुश्मन भी हो तो भी उसको अच्छा रास्ता बताना
1: क्या
0: है।
1: बात, वाह वाह। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्किल इंडिया की जो बात करते हैं, तो ये आपका एक तरह से आपने इसी स्किल को डेवलप किया और अनारों की खेती शुरू कर दी जो आज इस मकाम पर पहुंची है। तो लोग आपको एक कर्म योगी के रूप में देखते हैं, क्या आप खुद को ऐसा मानते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
0: मैं ऐसा तो कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे गुजराती में कहावत है, जो काम करते हैं वो उनको परसेवा लगता है, लेकिन जो परसेवे से नहाते हैं उसका ही ये काम होता है। इतना पसीना ज्यादा निकलेगा इतना पैसा ज्यादा आएगा।
1: क्या बात, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप अनुशासन से रहोगे, जितना आप पैशन को लेकर काम करोगे, उतना आपको फायदा होगा, उतना आपके पास पैसा आएगा, उतनी आपको खुशी भी मिलेगी। तो आपके द्वारा किए गए जो मेन कृषि प्रयोग हैं और जो शोध कार्य हैं जिनसे किसानों को खासतौर पर लाभ हुआ है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तो उस टाइम जब सीएम थे उसी टाइम में ये किसानों के लिए उन्होंने जो ड्रिप इरिगेशन लगाया था
1: जी जी,
0: ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी दी थी, तो हर किसान के पहले हम खेत में जाते थे तो उनको ड्रिप इरिगेशन करवाते थे
1: जी।
0: तो हमारा बनासकांठा जिला है वो ड्रिप इरिगेशन में नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद में हम फर्टिगेशन के लिए जो किसान को उनको खाद देना है, उनको क्या करना है, तो उनके पौधे में उसके रूट में सीधा हमारा जो प्राकृतिक तरीके से हम जीवामृत बनाते हैं, तो वो जीवामृत सीधे सीधा ड्रिप इरिगेशन से जाता है, वो एक हमारा वो है। फिर पॉलीथिन मल्चिंग जो इसको खरपतवार निकलता है, तो उसकी वजह से वो पौधे के आसपास में पॉलीथिन मल्चिंग कर देते तो उसमें नमी रहती है और पौधा अच्छी तरह से उसमें वो खरपतवार नहीं होता है
1: जी।
0: फिर हमारे जो पौधे है उनके ऊपर जो पक्षी है वो जो बगाड़ते हैं तो
1: खा जाते हैं।
0: हाँ, तो उसके लिए हम बर्ड नेट लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो बर्ड नेट की वजह से उसके ऊपर छांव रहती है और जो फ्रूट रहता है वो बहुत एकदम हेल्दी और सही क्वालिटी वाला निकलता है, वो एक हमने किया था। एक तोता हमारे जो अनार में बहुत बिगड़ करता है, जो अच्छा फ्रूट रहता है उसके ऊपर आके वो चांच मारता है, तो हमने क्या किया कि तोते को भी पेट तो भरना है, तो उसके हमने अनार के साथ में हमने गेहूं लगवा दिए।
1: अच्छा।
0: तो तोता जब वो पहला उसको धान चाहिए तो वो गेहूं की वो फली काट के लेके जाता है और उसका पेट भरता है। और जो इसके हमने रिफ्लेक्टर पट्टी एक आता है जो ऐसे वो पवन से हिलती है, उसके सूर्य के प्रकाश से उसके तोते के आंख में वो प्रकाश पड़ता है तो भी भाग जाता है। फिर हमने एक मिनी ट्रैक्टर बसाया, तो मिनी ट्रैक्टर की वजह से हमारा जो जीवामृत है या हमारा जो कोई स्प्रेड है तो वो ट्रैक्टर की वजह से छोटे ट्रैक्टर से वो स्प्रेड हो जाता है। फिर हमने ये जीवामृत वाला आपको बताऊं तो जीवामृत में कैसा होता है कि हमारी गाय होती है उसमें 10 किलो गोबर लेना है, 10 किलो यूरिन लेना है, 2 किलो बेसन लेना है, 2 किलो गुड़ लेना है, 500 ग्राम सजीव माटी होती है, वो लेके उसको एक ड्रम में 200 लीटर में डालते हैं और उसके बाद में वो स्प्रेड बनता है
1: जी।
0: तो हर हफ्ते में वो देना है, तो उसकी वजह से हमें कोई रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं है।
1: ये सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसे पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद देने की जरूरत
0: हम डालते ही नहीं है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक चीज आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, जो ट्रेडिशनल खेती होती है, जो परंपरागत खेती होती है और जो आधुनिक तकनीक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: परंपरागत खेती रखनी चाहिए और हम तो एक ही बात बताने की, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं कि अपने को रागी है, ज्वार है, हमारा जो हमारा परंपरागत जो धान है हमें ये प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए, उसमें जहर नहीं आता है।
1: बिल्कुल। और आपको जब देश का जो इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपको प्रतिष्ठित अवार्ड जो आपको मिला पद्मश्री, तो उस पल आपका अनुभव कैसा रहा, क्या बदलाव आया?
0: क्या बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ, और उन्होंने जो

0: एक किसान के बेटे को पद्मश्री जब दिया, कोई इतनी सरकारें आती आती गई, गए सब गए, लेकिन किसी ने कोई किसान को जो रियल गांव में काम करते उनको माननीय प्रधानमंत्री जी समझ सकते। तो उन्होंने जब मैंने अप्लाई किया था 2017 में अप्लाई किया, उसी टाइम हमने वो करके भूल गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2017 के दिन सुबह में मुझे 6:30 बजे कॉल आया। तो पहले तो बिल्कुल वो हो गया कि हमारा कोई उठ गया, क्योंकि सुबह में कॉल किसी का ऐसे ही गलत कॉल आता है,
1: डर लगता है।
0: फिर बाद में हमें उन्होंने बधाई दी कि आपको बधाई हो गया ना भाई, आपको भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा जा रही है। तो फिर बाद में मुझे 26 जनवरी को ये इसका ऐलान हो गया पद्मश्री का, और 13/12/2017 के दिन माननीय प्रधानमंत्री की हाजिरी में माननीय प्रणब मुखर्जी से कर कमलों से मुझे ये पद्मश्री सम्मान दिया गया।
1: और क्या बदलाव आया उसके बाद आपके जीवन में?
0: उसके बाद में तो हमें कोई जानता नहीं था, और सभी लोग जानने लगे कि ज्ञानापी कौन है। सब मीडिया वाले आ गए, सब अखबार वाले आ गए सभी। और फिर तो बाद में किसान लोगों को बहुत हर्ष हुआ कि नहीं वाकई में इसका
1: और आप जिम्मेदारी की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती है। कृषि के लिए बहुत काम किया
0: बिल्कुल। उनके बाद में तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा काम
1: और जिम्मेदारी दुगनी बढ़ गई
0: बिल्कुल।
1: तो आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है, क्या कहते हैं
0: आने वाले इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक तो हमने एक एफपीओ का गठन किया है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसका एक हमने संघ बनाया है। अभी हमारे साथ में 20-21 एफपीओ जुड़ गए हैं, तो सभी हम मिलकर काम करते हैं। किसान भाई की क्या जरूरत रहती है, उनको ट्रैक्टर चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको जो चाहिए वो एफपीओ के माध्यम से हम पूरा करते हैं। उसको अच्छा सीड चाहिए तो भी मिलते हैं, और अभी हम हाईटेक खेती पे जाना चाहते हैं।
1: क्या बात,
0: वाह। तो वो उसमें क्या है, उसमें उर्वरक जो रहते हैं प्रबंधक, वो हम करने ऑटोमेशन ड्रिप लगाएंगे कि इनको कितना पानी चाहिए,
1: हाईटेक करेंगे बिल्कुल। तो गेना भाई पटेल जी, आपने अमूल्य विचार और अनुभव हमारे श्रोताओं के

सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आप शब्द सुन रहे थे। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

0: अजीत कौर किए गए हुए इस शब्द के साथ ही आज का सुबगाही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 10 मई 2026, तो सबसे पहले इतिहास में 1857 की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन शुरू हुआ था। और अब आइए इतिहास के बाद हम याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंकज मलिक की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिन्दी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ रहे। इनका पूरा नाम था पंकज कुमार मलिक, और ये ऐसे संगीतकार और गायक थे जिनकी आवाज के जादू ने आज भी उनके लाखों प्रशंसकों को बांध रखा है। जाति प्रथा की समस्या के खिलाफ संदेश देने वाली फिल्म डॉक्टर में पंकज मलिक ने कई गाने खुद गाए, जो काफी हिट भी हुए। पंकज मलिक की अपनी विशिष्ट गायन शैली थी, जिसकी बदौलत उन्होंने हजारों लोगों को अपना प्रशंसक बनाया। उन्हें हिन्दी फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जी हाँ, ये फिल्म है अर्थ और इसके बोल लिखे थे कैफी आजमी ने, तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये उर्दू अदब का वो सितारा रहे जिसने इश्क, इंकलाब और इंसानियत तीनों को लफ्ज दिए। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने नज्म लिखी और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत शायरी को इन्होंने जन्म दिया। और कैफी आजमी साहब को पहला ब्रेक मिला था 1959 में फिल्म कागज के फूल में। अबरार अलवी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया और गुरुदत्त से बहुत जल्दी उनकी अच्छी बन गई थी। कैफी आजमी साहब कहते थे कि उस जमाने में फिल्मों में गाने लिखना एक अजीब सी चीज थी और आमतौर पर पहली ट्यून बनती थी और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने जब कागज के फूल में जो गीत लिखा वो तो मशहूर हो गया, लेकिन फिल्म जो थी वो ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन हम आपको इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

ने गीत लिखे और इसके अलावा कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ये गाना इन्होंने जब लिखा तो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। तो फिल्म हकीकत से सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: और इसके बाद कैफी साहब का कामयाब का दौर शुरू हो गया। चेतन आनंद साहब की तमाम फिल्में वो लिखने लगे जिसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुए और उनका कहना रहा कि जो वो मेरे ना रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा। और सुरभ जी चलिए आइए अब आप फिल्म शोले से सांभा को याद कर लेते हैं।
1: अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
2: पूरे 50,000।
0: पूरे 50,000। पूरी फिल्म में एक बहुत छोटा सा इनका किरदार था लेकिन ये इतना फेमस हो गया कि आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। इनका असली नाम था मैकमोहन और मैकमोहन जैसा कि हमने बताया कि रवीना टंडन के मामा भी थे, इनके बारे में ये कहा जाता है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए कई मैच भी खेले और फिल्म शोले हमने आपको सुना ही दिया इनका ये डायलॉग, तो जिन्होंने घर घर तक पहचान दिलाई।
3: वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टूडे लिसनर्स तारा चंद बरजातिया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, अ फिल्म producer, and he founded Rajshree Productions, which continues to produce films even today. We have this beautiful number from one of the movies produced by Tarachand Bajratia.
4: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे और अब खबरें नशर की जाएंगी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप मुंबई से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के क्याम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशाअत के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कंबोस्टर के तवील दौराने के तजर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और 9 भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के क्याम के 45 साल की तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीरशुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना होंगे जहां वो दोपहर तकरीबन 3 बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु वेट्री कजागम टीवीके के बानी सी जोसेफ विजय आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हलफ बरदारी की तकरीब आज नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं क्योंकि उनकी हलफ बरदारी की तकरीब में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी के वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया है। इस तकर्री के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन ने रंगास्वामी को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। 13 मई को जनाब रंगास्वामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुज़श्ता 9 अप्रैल को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हुए इंतखाब में एआईएनआरसी की क्यादत वाले एनडीए की आसान जीत हासिल करने के बाद

0: से कल नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन MATE काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकार किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौ उम्रों की फलाह बहबूद का एक जामे प्रोग्राम है। इस इकदाम का मकसद तालीमी तरक्की के साथ साथ मिडिल स्कूल के तलबा में जज्बाती समाजी और नफसियाती बेहतरी को फरोग देना है। CBSE ने बताया कि प्रोजेक्ट अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है जिसमें दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते के 60 से ज्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल और काउंसलर शिरकत करेंगे। उसने मजीद बताया कि इस प्रोग्राम के तहत काउंसलर्स रवामा की 11 से 15 तारीख तक एम्स में नई दिल्ली में 5 रोजा सलाहियत साज से मुतालिक तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल त्रिनिदाद एंड टोबैगो में वाकई नेल्सन आइलैंड का दौरा किया जहां उनके हमराह वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसार भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे थे। डॉक्टर जयशंकर ने डॉक्टर कमला प्रसाद बिसेसार के साथ नेल्सन आइलैंड पर फौरी असर वाले एक प्रोजेक्ट में शिरकत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा ने कहा कि भारत के ताउन से चलने वाला यह प्रोजेक्ट एक तवील सफर के मुश्तरक विरसे को महफूज रखने और उजागर करने में मदद करेगा। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रूपये की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रंगासामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों के इशाद के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश खिदमत है अकवाले ज़ारीन का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: इल्जाम तराशी या बहतान तराशी समाजी बुराइयों बल्कि तमाम बुराइयों में बदतरीन बुराई है। एक और बुराई है जो इल्जाम तराशी से छोटी बुराई है लेकिन है वो भी बुराई, और वो है गीबत करना या किसी की पीठ पीछे बुराई करना। कुरान करीम में गीबत के लिए यह मिसाल दी गई है कि गीबत करना इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा इज्तिमाई जुर्म है कि गीबत करने वाला बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। ये अमल यानी इंसान का गोश्त खाना और वो भी अपने भाई का और वो भी मुर्दा भाई का बदतरीन जराइम में से है। इसलिए कुरान मजीद में इस मिसाल के बाद फौरन ये भी फरमाया गया है कि बिलाशुबा तुम इसको पसंद नहीं करोगे बल्कि नापसंद करोगे। तो ये जुर्म जिसको कुरान में भी ऐसी मिसाल से बयान किया गया है वो भी इल्जाम तराशी के मुकाबले में छोटा है। इल्जाम लगाना उतना बड़ा जुर्म है कि इसकी शिफात और बुराई बताने के लिए बदतरीन मिसाल भी नाकाफी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गीबत की मजम्मत बयान फरमाई तो बाज लोगों ने कहा कि हुजूर, अगर किसी इंसान के अंदर कोई ऐब हुआ और हम उसको उसकी पीठ पीछे बयान करें तो इसमें क्या कबाहत है, हम उस पर इल्जाम तो नहीं लगा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर इसमें यह जुर्म हो तभी तो गीबत है, अगर इसके अंदर यह चीज न होती तो यह इल्जाम होता, यानी इल्जाम तराशी इससे बड़ा जुर्म है। हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए इसकी एक झलक इस छोटे से जुमले में देखी जा सकती है, यानी मुआशरे को इतना साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट और खुला हुआ होना चाहिए और मुआशरे के अफराद के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर किसी के अंदर कोई ऐब है भी तो उसको उसके सामने बयान करें, उसकी पीठ पीछे नहीं, और अगर कोई दूसरा पीठ पीछे ऐबजोई करने लगे तो उसको रोकने का हौसला रखते हों। जब मुआशरा ऐसा होगा तो इसमें तरक्की और हमाजहत तरक्की यानी अखलाकी, रूहानी, जिस्मानी, माशी और सियासी हर तरह की तरक्की होगी। اور جس معاشرے میں غیبت اور چغل خوری کی وبا پھیل جائے گی اس کے درمیان سے گویا روح نکل جائے گی اور وہ پورا معاشرہ ہی زمین پر بوجھ بن جائے گا۔ غیبت سے بہت بڑا جرم ہے الزام تراشی، اور اس کے مختلف نو مضر اثرات اور نقصانات ہیں۔ الزام تراشی لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت کی فضا پیدا کرتی ہے۔ عام طور پر الزام لگانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے مقاصد ذاتی ہوتے ہیں، بلکہ مفسد قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور جن لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے وہ بالعموم معاشرے کے معزز اور صالح لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ مفسدوں کی الزام تراشی کی وجہ سے معزز اور صالح لوگ اس مقام سے ہٹا دیے جاتے ہیں جہاں وہ ساری قوم یا پورے ملک کے لیے مفید ثابت ہو سکتے، اور اس کا نقصان پورے معاشرے، پوری سوسائٹی اور پورے ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ الزام تراشی دراصل کردار کشی ہے۔ الزام تراشی قتل سے کم بڑا جرم نہیں ہے۔ الزام تراشی کے ہی سبب بعض اوقات پوری پوری زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ الزام تراشی تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے۔ ثقافت اور تمدن کے ارتقاء میں اصل کردار ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کا ہوتا ہے۔ الزام تراشی اور بہتان ترازی بدترین ناسور ہے جو کسی بھی معاشرے کو گندگی اور غلاظت میں دھکیل دیتا ہے۔ الزام کے ذریعے باصلاحیت افراد کے رستے میں رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، اور عہدے اور مناصب نااہلوں اور ناکارا لوگوں کو مل جاتے ہیں جو پورے ملک اور معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں۔ الزام تراشی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کے کردار کو قتل کرے، بلکہ اس کی کردار کشی میں جو شریک ہوں وہ بھی اس قتل کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔ اس لیے ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دینا بہت خطرناک رویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ الزام تراشی کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی توبہ بھی نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے بدترین گناہ جس کے ذریعے کسی انسان کی کردار کشی ہوئی اور وہ اپنے مطلوبہ مقام سے گر گیا، تو اس شخص کی توبہ سے اس کا مقام تو واپس آ نہیں سکتا، اور توبہ کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اس کے مضر اثرات بھی ختم ہو جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں تو توبہ کے کیا معنی۔ الزام تراشی بہت بھیانک اور بدترین سماجی گناہ ہے۔ یہ سماجی ناسور ہے، معاشرے کے لیے تباہ کن، ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا، اور الزام تراشی کرنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔
1: آپ سن رہے تھے اقبال زرین کا پروگرام شمع فروزہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسنِ غزل۔

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज की प्रोग्राम में आपने सुना ताज अहमद से मजरूह सुल्तानपुरी और मजाज लखनवी का कलाम और शावंती सान्याल से जुबैर रिजवी और दाग दहलवी का कलाम। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम रूबरू।
1: सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस

0: हो गया कि वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ही मुश्किल मतलब मरहला कश्मीर के लिए। लेकिन हम यहाँ आपके इस माध्यम से उनको भी ये इल्तिजा करते हैं, हम यही कर सकते हैं कि थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे दे, अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दे दो, अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। तो ये कोई चैप्टर ऐसा नहीं है तो जो हमने इसमें नहीं डाला होगा इस किताब में, इवन इंटरनेशनल चैप्टर जिसके चाइना डिस्कस किया है, अमेरिका डिस्कस किया है, तो कोई ऐसा मरहला नहीं जो हमने इसमें कवर नहीं किया होगा।
1: अच्छा, एक चीज और भी है, कश्मीर को सूफियों की सरजमीन कहा जाता है
0: जी,
1: और आपकी किताब ये शेखुल आलम के हवाले से
0: है।
1: उस किताब में क्या आपने शेखुल आलम की हयात बयान की है या जलाल शरीफ की तारीख बयान की?
0: देखिए सब, जलाल शरीफ की तारीख मैंने बयान नहीं की है, उसमें मैंने उसका एक पॉजिटिव साइड लिया है। उसमें तीन चैप्टर से, एक तो मेमोयर है शेखुल आलम के, वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, वो आपको मेमोयर अगर आप पढ़ेंगे आप, वो आप कोई भी किताब ले लेंगे वहां से मेमोयर मिलेंगे आपको, इसने क्या किया, कहां पे किया, शुरू वो किया, फिर उन्होंने ऐसा किया, उनको आप उनकी जो मदर थी उन्होंने उसको उसमें डाल दिया पढ़ने के लिए, वहां पे क्या हो गया, फिर उनको उनके फादर ने उनको किसी काम के लिए भेजा, वहां पे क्या उन्होंने, ये तो आपको आम मिलेगी। लेकिन इसमें दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जैसे पर्सपेक्टिव्स ऑफ शेख लाइफ और स्कॉलरली पोजीशन ऑफ शेख, ये आपको बहुत मुश्किल स्कॉलरली
1: मिलेंगे।
0: हाँ, लेकिन एक आदमी जिसने पढ़ा लिखा ना हो उसका इतना थॉट प्रोसेस है कि वो इतना हाई है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते हैं कि एक अनपढ़ आदमी जिसका इतना सोच बुलंद हो और जिसकी विजन इतना है कि वो विजन आज की डेट में उनका बिल्कुल यहां पे
1: सक्सेस है।
0: सक्सेस नहीं मतलब लोग मानते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक मिसाल दे दूं, अगर आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जो अमेरिका की वॉशिंगटन में जो अमेरिका का सैनेट वगैरह है वहां पर लिखा है अनपोष तेलियल अनपोष, इसका मतलब है फूड इज सबसर्वेंट टू फॉरेस्ट, जब तक फॉरेस्ट है तब तक जिंदगी और तब तक रोजगार, तब तक मतलब आपको खाना वाना मिलेगा। तो इस किस्म की चीज है वो, देखिए विजन क्या है,
1: ये उनका कोटेशन था।
0: हाँ, तो आप देखिए विजन क्या है, और उन्होंने मतलब कई ऐसी मिसालें हैं जो मैं, अगर आप मेरे पास टाइम होगा तो मैं ले लूं। लेकिन वो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे श्रुक्स उनको जो बोलते हैं ना, कि वो है कि जो आज की टेक में बराबर फिट बैठते हैं, आज की डेट में बराबर फिट बैठते हैं,
1: जो कि इतने जमाना पहले
0: कितने मतलब 500 साल 600 साल पहले हो गए तब बोला उन्होंने, और आज इतने देखो इतने विजनरीज थे। तो ये चीजें हैं कि इनको हमको अगर ये मैंने इस किताब, ये छोटी है 45 पेज की बुक है, अगर ये ज्यादा से ज्यादा इन यंगेस्ट स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनको पता चले।
1: नहीं लगता कि अगर ये किताब आप उर्दू में लिखते,
0: हाँ
1: क्योंकि उर्दू आपके यहाँ की जबान भी है, ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती
0: है? बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका कोई मुझे मिले जो इसका उर्दू करे, लेकिन मेरे को उर्दू पे इतने दस्तरस्त नहीं है जितनी मुझे अंग्रेजी इंग्लिश पे है। तो यही वजूहत है कि हालांकि मैं उर्दू का भी स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मुझे इतना उर्दू पे इतना मतलब
1: होल्ड
0: नहीं है। हाँ, इतना मतलब नहीं है कि जितना दस्तरस नहीं है जितना। हाँ, हो सकता है मैं टूटा फूटा तो लिख सकता हूं, लेकिन इतना नहीं है जितना मुझे इस पे है।
1: एक कामयाब फारूक वानी अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देगा?
0: देखिए सर, मैं तो सबसे पहले ये क्रेडिट तो परवाली की मेहरबानी है जो मतलब आज की डेट में मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ करूं और अपना अपने कौम के लिए करूं। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं जो जिनका बहुत हाथ है मेरे, हालांकि ये किताबें जो है दोनों किताबें मैंने अपने फादर के नाम पर डेडिकेट करी है। वो पुलिस में थे, पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हो गए। उसके बाद मेरी मदर है, वाइफ थी, मेरे ब्रदर्स वगैरह है वो सब जॉब में है, लेकिन एक मैं हूं जो मेरे घर में है। मेरी सिस्टर्स है वो टीचर्स हैं। तो मेरी मिसिज जो है, एक का तो उसका तो इंतकाल हो गया, वो पहले बहुत पहले ब्लड कैंसर से उनका इंतकाल हो गया। दूसरी अभी मेरी है, वो बैंकर है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का और मेरी मिसिस का, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में आपको अगर मैं आपको ये बोल दूं, मेरे पास वो सिलसिला है, मैं इस वर्क अपने को वर्शिप करता हूं। आज की डेट में चलाई कलान में 11 बजे रात को जो ऑफिस से निकलेगा, इतनी ठंड है और मैं, मेरी एज भी सही है, इतनी कम नहीं है कि मैं इतना टॉलरेट करूं, लेकिन मैं ये चीजें परवाह नहीं करता हूं और स्ट्रगल करता हूं, और जब तक पांव पैर चलेंगे हाथ पैर चलेंगे तब तक करते रहेंगे, और ऊपर वाले का कर्म है जो हमें अभी तक हालांकि

0: सक्सेस तो हमेशा इंसान को लेट ही मिलती है, पहले तो नहीं मिलती है, वो जब तक वो पापड़ न बेले, तो पापड़ बेलने के बाद ही सब कुछ होता है। और मेरे को इसमें एक चीज और को आपको मैं ये बता दूं, और कुछ दिन पहले यहीं दिल्ली में मेरे को एक कॉल आया था रात को, तो फिर जिम्बाविया गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को एक अवार्ड भी मिला, वो मेरे साथ है अभी, वो मेरे को उन्होंने बेस्ट स्किल्स अवार्ड दिया इसके जर्नलिज्म में। और उसके बाद मेरे को 2020 में स्टेट गवर्नमेंट से भी आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिला है। तो कुल मिला के स्ट्रगल करते हैं, और मैं गवर्नमेंट का भी बहुत मशकूर हूं कि जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मुझे वो स्टेट अवार्ड भी मिला। और मैं जब तक, मैंने आपको बोला ही, जब तक हाथ पर चलेंगे तब तक काम करेंगे।
1: एक सहाफी का मकसद होता है कि वो वाकयात और हालात की सही अक्कासी करे और माशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाए। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ किया है उसमें आप कामयाब हैं?
0: देखिए, कामयाब या नाकामी मैं तो ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात जरूर है, हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो माशरा है हम इसको सही मैसेज दे दें, सो दैट जो हमारी जनरेशन है, अभी हम तो ज्यादा फोकस करेंगे यंगर जनरेशन पे, वो एक ट्रैक पे आ जाए, उनको एक रास्ता मिले हमारे लिखने से या हमारे बोलने से, तो वो एक सही रास्ते पे चले और वो भटक न जाए।
1: बिल्कुल।
0: और कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के बाकी पार्टों से बहुत डिफरेंट है, वहां पे भटकना, वहां पे जब इसका जो सिलसिला मिलिटेंसी का, टेररिज्म का सिलसिला चला, उससे बहुत खराबी वहां पे हो गई, वहां पे ड्रग्स का इतना अभी चल रहा है, वो ड्रग्स पंप होते हैं पार से, तो उसमें सिर्फ वही मसला है कि ये जनरेशन जो है ये किसी हद तक भटक जाए और ये अपने इस कामयाब, उनको कामयाबी ना मिले अगर वो इसकी तरफ जाए। और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले, वहां पे कई संस्थाएं हैं या कई ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए काम करते हैं, उसमें आर्मी भी है, उसमें सीआरपी है, उसमें बीएसएफ है, ये सब मिला के काम कर रही है वहां पे, सो दैट कि ये बच्चे जो हैं बिगड़े हैं इनको इनको रिहैबिलिटेट करें हम और इनको सही रास्ता मिले, यही हमारी मैसेज भी जाती है। हम इसके लिए, मैंने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, यही जो, और मैं जान भी जाता हूं, मैं ये बोलता हूं कि ये बच्चे जो है यार, इनको ये हमारी नस्ल जो है ये बर्बाद हो रही
1: है
0: और ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी अगर इसकी तरफ अभी अगर हम तवज्जो ना दें तो बिल्कुल मुश्किल हो सकते, मुश्किल हालात हमारा बस यही है कि जो मेरा लिखने का अंदाजा भी रहता है, तो मैंने कई सोशल कम्बैटर्स लिखे और मेरे पास जो लड़के लिखते हैं यंगर जनरेशन जो कश्मीर के हैं, वो मेरे पास जो आर्टिकल भेजता है, अगर कोई इस किस्म का आर्टिकल मेरे पास आता है जो सोशल इविल पर टच करता है, लेकिन मैं उसको तुरंत उसको उठा के डाल देता हूं। बेशक हमारे पास जब आर्टिकल्स के क्यू चलते हैं, हमारे पास जब दो दिन पहले आएंगे हम उनको उठाएंगे फिर नए को छोड़ देंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब ये आर्टिकल्स को देख रहा हूं कि हमारे पास सोशल लेवल्स पे ज्यादा टच कर रहा है, उसको मैं पहले तरजीह देता हूं, सो दैट कि ये जो इनको, एक तो ये लड़के जो ये लिखने वाले हैं, इनको एक एक तो इंस्पिरेशन बन जाए दूसरों के, दूसरे भी लिखे, और दूसरी बात ये है कि ये जो सोशल लेवल है इसकी तरफ कोई एक मैसेज आए, सो दैट कि ये बच्चे भटके ना।
1: बहुत शुक्रिया फारूक वानी साहब आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त हमारे सामईन के लिए दिया, हम उर्दू सर्विस की जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं।
0: मैं भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने मुझे यहां पे अपने इस प्रोग्राम में आने के लिए दावत दी, और मेरे जो अखबार के बारे में जो ब्राइटर कश्मीर है उसको आपने हाईलाइट किया, मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो समय ये था हमारा आज का प्रोग्राम रूबरू, पेशकश मुबीन अहमद खां की थी।

रूबरू प्रोग्राम अभी आपने सुना मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

केके की आवाज में ये नगमा था तुम मिले फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समीन आज मारूफ शायर कैफी आजमी का यौम वफात है। इस मौके पर सुनिए फीचर खामोश बगावतों का शायर कैफी आजमी। तहरीर डॉक्टर इकबाल रहमान की है।

हुस्न और इश्क

0: वतन।
1: हमारे मुल्क में जिन दिनों आजादी की जुद्दोजहद अपने शबाब पर थी, उन्हीं दिनों जलियांवाला बाग सानहे के ठीक 3 महीनों बाद आजमगढ़ के मिजवा नामी गांव में सैयद फातेह हुसैन रिजवी के घर नन्हे मुन्ने अख्तर हुसैन रिजवी यानी के कैफी आजमी ने आंखें खोली। कैफी आजमी के वालिद फातेह हुसैन रिजवी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे और एक रजवाड़े में तहसीलदार के ओहदे पर फाइज थे।
2: सैयद फातेह हुसैन रिजवी अपने बेटे अख्तर हुसैन को अंग्रेजी स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन पूरे इलाके में अंग्रेजों और अंग्रेजी के खिलाफ जबरदस्त गम गुस्सा पाया जाता था। चुनांचे पूरा खानदान उनके इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। उनके खानदान के बुजुर्गों की राय थी कि कमसिन अख्तर हुसैन को मजहबी तालीम दी जानी चाहिए, इसलिए उन्हें लखनऊ में वाकई सुल्तानुल मदारिस में तालीम के लिए भेज दिया गया।
1: लेकिन तालीम के लिए लखनऊ जाने से कबल एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसे आने वाले हालात का पेश खेमा भी करार दिया जा सकता है। हुआ कुछ यूं कि अख्तर हुसैन जब सिर्फ 11 साल के थे तो उन्होंने एक मुशायरे में बुजुर्ग शायरों की इजाजत से एक गजल सुनाई। ये गजल थी, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े। बाद के दौर में अख्तर हुसैन की यही गजल बेगम अख्तर की आवाज में बहुत मकबूल हुई, लेकिन उस वक्त तक सभी लोग इस बात को भूल चुके थे कि यह गजल 11 साल के एक बच्चे ने लिखी थी, क्योंकि कलाम न सिर्फ ये के खासा पुख्ता था बल्कि अच्छी शायरी की जुमला खसूसियात भी इसमें मौजूद थी। आप खुद इस गजल को सुनकर फैसला कीजिए कि क्या यह गजल किसी 11 साल के बच्चे की लिखी हुई हो सकती है।

पहली बार मिजवा मैं 1980 या शायद 1982 में गई और मुझे इतनी हैरत हुई कि ये इतना छोटा सा गांव है, यहाँ सड़क भी नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, और ये आदमी जो मेरा बाप है, जो इतना वेल नोन शायर है, जिसको सारी दुनिया जानती है, वो इतनी छोटी सी जगह से निकला है और कहाँ ये आदमी पहुँच गया, बहुत हैरत का मुझे एहसास हुआ। मुझे हमेशा इस बात का एहसास था कि ये मुख्तलिफ किस्म के आदमी है। मुझे लगता है हीर रांझा बहुत अंडररेटेड फिल्म है, क्योंकि हीर रांझा की जो राइटिंग है वो इतनी एक्सेप्शनल है कि उसको जितना अटेंशन मिलना चाहिए था उतनी अटेंशन उस फिल्म को अफसोस की बात है कि नहीं मिली है। उसका एक एक गाना खूबसूरत है, बल्कि उसका एक एक लफ्ज खूबसूरत है।

0: कैफी साहब की शायरी में जो सबसे खास बात लगती है वो ये है कि उनके जो सबसे पर्सनल प्रॉब्लम है वो सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रहती है, इट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्स, इट ट्रांसेंड्स द ट्रेजेडी ऑफ द पर्सन, इट ट्रांसेंड्स द फेलियर ऑफ द पर्सन इन टू अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता, है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है।
1: जिंदगी मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि जिंदगी एक ऐसी नज्म है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा था जब इनका पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था कि शायद ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, और उस नज्म के साथ साथ हमें हमारे अब्बा वापस मिले। कैफी साहब दुनिया के एक सबसे ग्रीडी आदमी हैं और उनकी ग्रीड इतनी महदूद है कि वो सिर्फ फाउंटेन पेन तक ही है, फाउंटेन पेन के अलावा उनको इस दुनिया में किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। ही इज वेरी वेन और इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत खूबसूरत आदमी है और बिल्कुल कैमरा कॉन्शियसनेस इनमें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब जो है सईद अख्तर मिर्जा इनको फिल्म में लेना चाह रहे हैं एज द मेन कैरेक्टर इन हिज फिल्म एंड ही इज परफेक्टली हैप्पी टू डू इट एंड आई एम श्योर ही विल डू अ ग्रेट पार्ट।
2: दादा जान आज आप ये पहनेंगे?
3: अरे ये अभी तक जिंदा है
2: जी,
3: तो में क्या जाने?
2: नहीं दादा जान आपको पहननी पड़ेगी।
3: देखो ना सज्जाद क्या जिद कर रही है लड़की, इस उम्र में मुझे दूल्हा की तरह सजा रही है।
4: अरे अब्बा अब आप इस उम्र में क्या दूल्हा लगेंगे, या तो शायर
3: भगवान।
2: नहीं नहीं दादा जान आप बिल्कुल शायर लगेंगे।
3: तो फिर एक गुलाब का फूल भी दे दो, मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा।
0: एक इनकी जो और बहुत बड़ी खासियत है वो ये है कि ये आदमी वर्कर है, ये मजदूर है, ये किसान है, ये जमींदार नहीं है, और ये इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद इसमें कोई लीडरी की कोई बात नहीं।

ये वो दौर था जब पार्टी के कहने पर कैफी मुंबई पहुंच चुके थे और एक कमरे के मस्कन में फाका मस्ती के दिन गुजार रहे थे। शौकत खाते पीते आला खानदान से थी। उनकी सहेलियों ने, खानदान के बड़ों ने खूब समझाया कि जिसको तुम पसंद करती हो उसको 40 रुपए पार्टी से मिलते हैं, इन 40 रुपयों में क्या होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन वो इश्क ही क्या जो अक्ल की बात सुने। शौकत अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर चुकी थी।

कैफी का अनोखा इजहार मोहब्बत शौकत तक भी पहुंचा। इस अनोखे इजहार मोहब्बत की बर्जुस्तगी और बेकरारी ने शौकत के दिल को एक अजब धड़कन से रोशनास कराया। उन्होंने दिल ही दिल में कुछ तय कर लिया था।

0: कैफी आजमी उन दिनों मजदूरों और कामगारों के दरमियान रहकर उनकी तरबियत का काम कर रहे थे ताकि गरीबी और इस्तेहसाल के शिकार ये लोग अपने हकूक की लड़ाई खुद लड़ सकें। कैफी दिन भर सियासी काम करते, शाम को मुशायरों में शिरकत करके।
1: इसी दौरान उन्हें फिल्मों के लिए नगमे लिखने की भी ऑफर्स मिलती रहीं, लेकिन जो कि एक जमाने तक अदबी अहमियत रखने वाले कलमकार फिल्मों के लिए लिखने के काम को कमतर समझते आए थे, इसलिए कैफी ने इन ऑफर्स में शुरू में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। कैफी से पहले कई अच्छे शायर फटी चप्पलों और फटे कपड़ों से मजबूर होकर इस काम को अपना चुके थे, लेकिन कैफी हर बार टाल जाते थे। ये वो दिन थे जब शौकत उम्मीद से थी। उनकी पहली औलाद यानी शबाना आजमी की कुछ ही महीनों बाद दुनिया में

0: अभी आप सुन रहे थे मारूफ शायर कैफी आजमी के यौम वफात पर यह फीचर। उनवान था खामोश बगावतों का शायर कैफी, तहरीर डॉक्टर इकबाल उर रहमान की थी। इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आज दिन में 3:30 पर नशर होगा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नम्बर से खबरें सुनिए। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानी के तजर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जनूबी तिरिनदाद में एक जरई प्रोसेसिंग सहूलती मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत की सीड्स पहल के तहत कायम करदा ये मरकज छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों और जरई शोबे को तकवीत फराहम करेगा। WHO ने मशवरा दिया है कि हंटा वायरस के फैलाव से मुतासिरा क्रूज शिप में मौजूद तमाम अफराद से राबते को आला खतरे का हामिल समझा जाए और 42 दिन तक उनकी सरगर्म तौर पर निगरानी की जाए। अमरीका ने H-1B वीजा पर काम करने वाले वर्करों के लिए कम से कम उजरत में 30% इजाफे की तजवीज पेश की है। और तीरंदाजी में शंघाई आलमी कप में भारत ने रिकर्व टीम मुकाबले में चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। दिफाई तहकीको तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कोल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानी का एग्जाम टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजर्बे के दौरान 1200 सेकेंड से ज्यादा का रन टाइम हासिल किया गया, जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एयरोस्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज में सफ अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDN ने सनअती शराकतदारों के ताउन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा रकीक हाइड्रोकार्बन ईंधन, जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है, जिसका मकसद कार्बन के सिफर अखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावाकी जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद न सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बेलक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस पवित्र मंदिर में हर साल 97 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करते हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के ताउन से कल नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मीट की तौसी की अलामत है, जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौ उम्र अफराद की फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। इस इकदाम का मकसद तालीमी तरक्की के साथ साथ मिडिल स्कूल के तलबा में जज्बाती, समाजी और नफसियाती बेहतरी को फरोग देना।

CBSE ने बताया कि प्रोजेक्ट अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते के 60 से ज्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल्स और काउंसलर्स शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस प्रोग्राम के तहत काउंसलर्स रवा माह की 11 से 15 तारीख तक एम्स नई दिल्ली में 5 रोजा असलाह साजी से मुतालिक तरबियत प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रोजेक्ट मीट के मॉड्यूल्स रवा माह साल जुलाई से 6 से 8 जमात के तलबा के लिए नाफिज किए जाएंगे। इस इकदाम में फलाह बहबूद के मॉड्यूल, साथियों के ताउन की सरगर्मियां और वालिदैन के लिए वर्कशॉप शामिल हैं, जिनका मकसद नौ उम्रों में जज्बाती और नफसियाती सेहत को मुस्तहकम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद के साथ मिलकर जुनूबी त्रिनिदाद में एक जरी प्रोसेसिंग सहूलती मरकज का इफ्तिताह किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के सीड से पहल के तहत कायम करदा यह सहूलती मरकज त्रिनिदाद एंड टोबैगो के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के इको निजाम को मजबूत बनाएगा और मुल्क के जरी शोबे को नई तवानाई फराहम करेगा। उन्होंने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पेनाल में एक मुस्तकिल प्रोस्थेटिक्स मरकज का भी इफ्तिताह किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मरकज मुल्क और वसी कैरिकॉम खित्ते के लिए मोबिलिटी का तोहफा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने वजीर आजम कमला प्रसाद के हमरा त्रिनिदाद एंड टोबैगो के नेल्सन जजीरे का दौरा किया। नेल्सन जजीरा वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली मरतबा त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे थे। डॉक्टर जयशंकर ने डॉक्टर कमला प्रसाद के साथ नेल्सन जजीरे में फौरी असर वाले एक प्रोजेक्ट में भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर खारजा ने कहा कि भारत के ताउन से चलने वाला यह प्रोजेक्ट शानदार सफर के मुश्तरक विरसे को महफूज रखने और उजागर करने में मदद देगा। आलमी सेहत इदारे WHO ने मशवरा दिया है कि हेंटा वायरस के फैलाव से मुतासरा क्रूज शिप में मौजूद तमाम अफराद से राबते को आला खतरे का हामिल समझा जाए और 42 दिन तक उनकी सरगर्म तौर पर निगरानी की जाए। WHO के वबाई अमराज और आलमी वबा से निपटने की तैयारी और रोकथाम के डायरेक्टर ने कहा कि इस वक्त न तो किसी मुसाफिर और न ही अमले के किसी रुख में अलामात जाहिर हुई हैं, ताहम जहाज से उतरने वाले तमाम अफराद की 42 रोज तक करीबी निगरानी और फॉलो अप की सिफारिश की गई है। इससे कबल होंडियस एमवी नामी क्रूज शिप पर हेंटा वायरस के फैलने की इत्तला मिली थी। ये जहाज अर्जेंटीना से केप वार्दा जा रहा था, जो अफ्रीका के मगरबी साहिल के करीब वाक़ है। ईरान की सिपाही पासदारान इखलाब की बहरिया ने खबरदार किया है कि ईरानी तेल टैंकरों या तजारती जहाजों पर किसी भी हमले की सूरत में खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और बहरी जहाजों के खिलाफ सख्त जवाबी हमला किया जाएगा। ये बयान एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आबनाए हुरमुज और उसके इर्द गिर्द ईरानी और अमरीकी फौज के दरमियान हालिया वक्फे वक्फे से झड़पों के बाद जारी किया गया। इस दौरान अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की जानिब से पैगाम मौसूल होने की तवक्को है, क्योंकि जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। रूस के सर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि यूक्रेन में जारी तनाजा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि मगरबी एशिया में कशीदगी भी जल्द हल हो जाएगी, ताहम खबरदार किया कि अगर तनाजा मजीद बढ़ा तो तमाम फरीकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो यूरोपीय रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो पुतिन ने कहा कि वो बातचीत के लिए साबिक जर्मन चांसलर गेरार्ड सोरेडर को तरजीह देते हैं। रूस के सदर ने मजीद कहा कि वो यूक्रेन के सर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से सिर्फ उस वक्त मुलाकात करेंगे जब मुस्तकिल अमन मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान में कल एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश बम हमले में कम से कम 3 पुलिस अहलकार हलाक और कई दिगर जख्मी हो गए। इसके बाद शोरिश ज़दा सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी अहलकारों और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इब्तदाई इत्तला'आत के मुताबिक धमाके के सबब करीबी इलाके में कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि मुतअद्दिद मकानात की छतें गिर गईं। धमाके के बाद बड़ी तादाद में हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया, जिससे शदीद फायरिंग शुरू हो गई। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमत हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज पेश की है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज शंघाई में मुनक़िदा तीरंदाजी आलमी कप मरहला 2 में एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का

0: मुकाबला जीता। बेहद दिलचस्प फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले सेट में बरतरी हासिल की, ताहम चीन ने खेल में वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर दिया और चार सेट के मुकर्रर वक्त के बाद मुकाबला टाई होने पर शूट ऑफ की नौबत आ गई। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौराने के तजर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने जनूबी त्रिनिदाद में एक जरी प्रोसेसिंग सहूलती मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत के सीड्स पहल के तहत कायम करदा यह मरकज छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों और जरी शोबे को तकवियत फराहम करेगा। WHO ने मशवरा दिया है कि हेंटा वायरस के फैलाव से मुतासर क्रूज शिप में मौजूद तमाम अफराद से राबते को आला खतरे का हामिल समझा जाए और 42 दिन तक उनकी सरगर्म तौर पर निगरानी की जाए। अमरीका ने H1B वीजा पर काम करने वाले वर्करों के लिए कम से कम उजरत में 30% इजाफे की तजवीज पेश की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था आप आए बहार आई फिल्म से। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म है राम बलराम।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा दूसरा आदमी फिल्म से आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।

0: फिल्मी दो गाने आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, तहरीर महमूद हाशमी की है।
1: दिल्ली के दरियागंज के इलाके में एक तवील सड़क है जिसे डॉक्टर अंसारी रोड के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंसारी के नाम से मंसूब ये सड़क हमें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की याद दिलाती है, जिनका मजार जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में है और जिनकी शख्सियत और कारनामों की गूंज हमें अपनी तारीख के उस बाब में सुनाई देती है जो तहरीक आजादी से मुतालिक है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का अहद सन 1880 से सन 1935 तक का है। वो उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर से मुतालिक एक देहात में पैदा हुए। उन्होंने लंदन में आला तालीम हासिल की और मालिज बनने के बाद हिंदुस्तान वापस आए और हिंदुस्तान वापस आने के बाद गांधी जी की तहरीक से मुतासिर होकर सत्याग्रह में शामिल हो गए। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने तहरीक खिलाफत और तहरीक के अदम तावुन में भरपूर हिस्सा लिया। सन 1916 से ही उन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में एक मुजाहिद की हैसियत से शमूलियत हासिल कर ली थी। 1918 में वो मुस्लिम लीग की रिसेप्शन कमेटी के मेंबर भी रहे और 1919 में उन्होंने दिल्ली में सत्याग्रह सभा कायम की। डॉक्टर अंसारी हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के उस इब्तदाई जमाने में न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि कौमी नजरियात रखने वाले तमाम हिंदुस्तानी अवाम के मुमताज रहनुमा थे। 1918 में जब गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ तहरीक सत्याग्रह शुरू की तो उसमें डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1919 से 1922 तक डॉक्टर अंसारी ने तहरीक खिलाफत की इस तरह रहनुमाई की कि हिंदुस्तान भर के अवाम इस तहरीक के हमनवा बन गए। तहरीक खिलाफत के बाद भी डॉक्टर अंसारी हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के मर्द मुजाहिद की हैसियत से हिंदुस्तानी अवाम की रहनुमाई करते रहे। 1927 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर भी मुंतखब हुए। नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की तंजीम और तश्कील में भी डॉक्टर अंसारी ने गरां कदर खिदमत अंजाम दी। दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की रहायशगाह उस रोड पर वाकई थी जो अब उनके नाम से मंसूब है। चांदनी चौक में बल्ली मारान के मुकाबले उनकी डिस्पेंसरी थी और ये दोनों मकामात दिल्ली में मुजाहिदीन आजादी की सरगर्मियों का महवर थे। डॉक्टर अंसारी के जेर असर दिल्ली और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में नौजवानों की एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ी जिसने गांधी जी के फलसफे अदम तशद्दुद को अपना मसलक बनाया और हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए मुस्तैद हो गए। डॉक्टर अंसारी की एक खसूसियत ये थी कि वो तमाम कौमी मसाइल को मजहब व मिल्लत से बुलंद होकर उनके सही तनाजुर में देखते थे। तहरीक खिलाफत में एक तबका ऐसा भी था जो तशद्दुद को जरूरी समझता था, लेकिन डॉक्टर अंसारी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एहसास दिलाया कि खिलाफत की तहरीक एक ऐसा नाजुक मसला है जिसमें दीगर मजाहिब के अफराद की शमूलियत हमें मजबूर करती है कि

0: या जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे एक और नियमित श्रोता हैं देवशंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी और पूजा, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। इन्होंने किकरी मेटा बिलहारी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखा है और इनके साथ संतो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
2: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: तो दोस्तों, आज की फिल्म है पेइंग गेस्ट और हमने जो आपको कहानी बताई, अगर उसके कहानी के आगे की अगर बात करें तो जो चंचल होता है वो प्रकाश के साथ मिलकर दयाल को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है और उसे झील में डुबो देती है। उधर प्रकाश वसीयत और दयाल की हत्या को लेकर चंचल को लगातार ब्लैकमेल करता रहता है और एक बार शांति को किसी की परछाई चंचल का गला घोंटते हुए दिखाई देती है और जब वो चंचल के घर पहुंचती है तो देखती है कि प्रकाश चंचल के साथ मारपीट कर रहा है और उसी दौरान शांति को देखकर प्रकाश उस पर गोली चला देता है। उधर वो दूसरे कमरे में भागती है और प्रकाश से हथियार छीनकर उसे गोली मारने की धमकी देती है और एक गोली चलती भी है जिसमें प्रकाश मारा जाता है और आखिर में शांति अपना जुर्म कबूल कर लेती है और प्रकाश की हत्या के आरोप में अदालत में उसको पेश किया जाता है। उसका केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, लेकिन जो रमेश नाम के वकील साहब हैं यानी अपने देवानंद जी, वे उसके वकील बनते हैं और अब क्या वे उसको फांसी की सजा से बचा पाते हैं या नहीं, ये तो हम आप पर छोड़ते हैं क्योंकि अगर सारी कहानी हम ही बता देंगे तो फिर आपको अगर कभी मन किया इस फिल्म को देखने का तो आपको सस्पेंस पहले ही मालूम रहेगा, इसलिए पूरी कहानी नहीं बताते हैं। आखिर में क्या होता है आप इस फिल्म को देखिए और फिर बताइएगा। चलते चलते अब इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक छोटा सा प्यारा सा नगमा गाना आपको सुनवा देते हैं।

0: लेकिन दोस्तों हमें जाना होगा क्योंकि कार्यक्रम का समय जो समाप्त हो रहा है और सबको समय के साथ ही तो चलना चाहिए। तो अब अपने रेडियो दोस्त यानी आरडी को अनुमति दीजिए और फिर आपसे होगी मुलाकात इसी चैनल में किसी न किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण विच तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने सवेरे बेंगलुरु विच आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वरेगंढ समारोह विच हिस्सा लिया। तमिलनाडु विच तमिल का वेत्री गड़गम के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने सवेरे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। आसाम तो सीनियर बीजेपी नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा नूं पार्टी विधायक दल के एनडीए विधायक दल का नेता चुनिया गया। सिख्या मंत्रालय गर्मियों दी छुट्टियां दौरान देश

0: सुश्री हजारिका समेत कुल 8 भाजपा विधायका ने विधायक दल के नेता वजो डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के ना की तजवीज रखी। इस तजवीज न बाद हाजिर होर विधायका ने हमायत दी। इस तो बाद 10 AGP विधायका ते BPF विधायका की मौजूदगी विच AGP नेता अतुल बोरा ते BPF नेता रिहोन डेमरी ने NDA के नेता के तौर पर डॉ हिमंत बिस्व शर्मा का ना की तजवीज की। इन तजवीजा के बाद भाजपा के केंद्रीय निगरान जगत प्रकाश नड्डा ने रस्मी तौर पर डॉ हिमंत बिस्व शर्मा नूं भाजपा के NDA का नेता ऐलानिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने N रंगासामी नूं पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। नियुक्ति तो बाद उपराष्ट्रपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी नूं केंद्र शासित प्रदेश विच नवी सरकार बनाउण लई सद्दा दित्ता। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। केंद्र सरकार ने किरत कोड लागू करने लिए नवे दिशा निर्देश जारी किए ने। यह केंद्रीय मंत्रालय विभागों खुदमुख्तार संस्थावां ते केंद्रीय जनतक खेत्र के अधियानों विच काम करदे आउटसोर्स च कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों की सुरक्षा नूं मजबूत करेगा। किरत ते रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश तनखाहों की समय सिर अदायगी, लाजमी समाजिक सुरक्षा योगदान, ठेकेदारों ते मुख मालकां दी वधेरे जवाबदेही ते किरत कानूनों की उलंघना विरुद्ध एक मजबूत विधि नूं यकीनी बनाउणा। इन्हां उपावां नाल ठेके ते काम करन वाले मुलाजमां लई तनखाहां दी अदायगी च देरी अते कानूनी तौर ते अदायगी वाली रकम दे भुगतान च गलती घट हो सकेगी। दिशा निर्देशां विच तनखाहां ते समाजिक सुरक्षा योगदानां दी समय सिर अदायगी दी उलंघना करन वालियां कंपनियां लई पाबंदियां अते सख्त जुर्माने शामिल ने। दिहाड़ी दी तनखाहां दा भुगतान शिफ्ट दे अंत तक, हफ्तावारी छुट्टी तो पहला हफ्तावारी तनखाह, पंद्रहवाड़े दे अंत तो 2 दिन दे अंदर अंदर पंद्रहवाड़े दी तनखाह अते अगले महीने दे 7 दिनां दे अंदर मासिक तनखाह दा भुगतान कीता जाना चाहिदा है। सिख्या मंत्रालय गर्मी दियां छुट्टियां दौरान देश भर के सारे स्कूलों विच भारतीय भाषा समर कैंप 2026 कराएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच मंत्रालय ने कहा कि हफ्ता भर चलने वाला एक कैंप विद्यार्थियों नूं अपनी जान पछाण कराउण, शब्दावली निर्माण, असल जीवन गलबात अते सभ्याचारक समझ ते केंद्रित राबते वाली गतिविधियां राहीं वख-वख भारतीय भाषावां विच बुनियादी संचार हुनर सिखण दा एक दिलचस्प मौका प्रदान करेगा। मंत्रालय ने भी कहा कि इस साल पहलकदमी भारतीय संकेत भाषा ISL नूं विशेष तौर ते पेश करती है जो राष्ट्रीय सिख्या नीति 2020 मुताबिक समावेशी ते बराबर वाली सिख्या के दृष्टिकोण नूं मजबूत करती है। खेडां विच IPL क्रिकेट विच अज प्लेऑफ क्वालीफाई मैच होणगे। दिन दे पहले मैच विच चेन्नई सुपर किंग्स दा मुकाबला चेन्नई दे MH चिदम्बरम स्टेडियम विच दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स नाल होएगा। दिन दे एक होर मुकाबले विच रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू दा मुकाबला अज शाम रायपुर दे शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम विच मुंबई इंडियंस नाल शाम 7:30 बजे होएगा। तीरंदाजी विच दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त ते कुमकुम मोहोर दी भारत दी औरतां दी रिकर्व टीम ने अज शांघाई विच तीरंदाज विश्व कप पड़ा 2 विच मेजबान चीन नूं शूट ऑफ विच हरा के सोने दा तमगा जित्तिया है। आखिर च खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण च तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने अज सवेरे बंगलुरू विच आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वरेगंढ समारोह विच हिस्सा लिया। तमिलनाडु विच सलिमा वेत्री कड़गम के संस्थापक सी जोसफ विजय ने अज सवेरे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। असाम च सीनियर BJP नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा नूं पार्टी विधायक दल के नेता नाल नाल NDA विधायक दल का नेता चुनिया गया। सिख्या मंत्रालय गर्मियों दी छुट्टियां दौरान देश भर के सारे स्कूलों विच भारतीय भाषा समर कैंप 2026 कराएगा। तीरंदाजी विच भारत की औरतों की रिकर्व टीम ने शंघाई विच तीरंदाजी विश्व कप पड़ा 2 विच सोने का तमगा हासिल किया। इस नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप आदाब। ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हिमंत बिस्वा शर्मा को इत्तेफाक राय से BJP कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से

0: ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय ख्वातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें योम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग बैन अल-अक़वामी सेंटर में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खिदमत, रूहानियत और समाजी कायापलट के फरोग में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के रोल को सराहा।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
0: जनाब मोदी ने माहौलियात से मुतालिक जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सियासी निजाम के मुकाबले समाजी शमूलियत ज्यादा बाअसर है और मुल्क की तामीर के लिए लाजमी है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में बीजेपी की कामयाबी उनकी सरकार की जानिब से नाफिज की गई कौमी पॉलिसी के लिए अवाम की हिमायत का मजहर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजों से लोगों के मूड की अक्कासी होती है और इससे ये इशारा मिलता है कि अवाम उनकी सरकार के कौमी प्रोग्रामों और पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। जनाब मोदी आज बेंगलुरु में बीजेपी कैडर से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने ऐसी सरकार की जरूरत उजागर की जो ठीक ढंग से काम करे, तेज रफ्तार के साथ अच्छी हुक्मरानी फराहम करे, मसाइल का हल निकाले और मुल्क को आगे ले जाए।
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
0: कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्लियामेंट में नारी वंदन संशोधन बिल के खिलाफ वोट देकर ख्वातीन को धोखा दिया है, जबकि इसमें पार्लियामेंट में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की बात कही गई थी। वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अमरीका ईरान जंग जैसे जोग्राफियाई और सियासी हालात व वाकयात से पैदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने के लिए मुत्तहिद रहें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब हैदराबाद जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी वारंगल में पीएम मित्र पार्क का इफ्तिताह करेंगे, जिसे काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और जिसे पीएम मित्र स्कीम के तहत तैयार किया गया है। जनाब मोदी सिंधु अस्पताल को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये इदारा हैदराबाद में बनाया गया कैंसर के लिए मखसूस जदीद तर्ज का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हिफ्जान सेहत मरकज है, जो किसी मुनाफे के बगैर काम करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी के बानी जोसेफ विजय

0: को आज सुबह वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमराह 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। हलफबरदारी की तकरीब में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्म सनत से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। जनाब जोसेफ विजय ने तारीख रकम की है। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली उनकी पार्टी टीवी के वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1967 के बाद से वो रियासत के ऐसे पहले वजीर आला बने हैं जिनका ताल्लुक न तो डीएमके से और न ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से है। जनाब जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसीके सीपीआईएम सीपीआई और आईयूएमएल की हिमायत के साथ 234 रुकनी ऐवान में 120 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। लोकभवन के एक अखबारी बयान के मुताबिक गवर्नर मौसूफ ने वजीर आला जोसेफ विजय को हिदायत दी है कि वो बुध के रोज या उससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर जोसेफ विजय को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार आवाम के रहन सहन को बेहतर बनाने की खातिर तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमूई तौर पर पार्टी के 8 अरकान असेंबली ने डॉ हेमंत बिस्वा सरमा का नाम तजवीज किया। वहां मौजूद दिगर अरकान असेंबली ने इसकी तायीद की। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीरे सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात और राजस्थान में कल तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मगरबी भारत में भी अगले 7 दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में रफ्ता रफ्ता 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इजतमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST.

0: 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमाना एन्द पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी. जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर

0: गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार।

दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं। जी नहीं, जगजीत सिंह साहब बिल्कुल नहीं है, जिनकी मखमली आवाज में आप ये खूबसूरत गजल सुन रहे हैं। दरअसल आज के हमारे कलाकार हैं इस गजल को लिखने वाले, जिनकी जादुई कलम से इस गजल के बोल लिखे गए हैं, कैफी आजमी साहब। उनके बारे में बहुत सारी करेंगे बातें, कुछ सुनी कुछ अनसुनी, कुछ कही कुछ अनकही। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम

कैफी आजमी साहब का असली नाम था अख्तर हुसैन रिजवी और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 को हुआ था।

दोस्तों, अभी आपने अर्थ फिल्म से जगजीत सिंह साहब की जादुई आवाज में जो ये गजल सुनी, झुकी झुकी सी नजर, इस गजल को लिखने वाले थे कैफी आजमी साहब। और आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज 10 मई है और 10 मई 2002 को ही कैफी आजमी साहब ने

झुकाव था वो युवावस्था से ही, बल्कि यूं कह लें 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली गजल लिखी थी। और इसके साथ जैसे जैसे वे बड़े होते गए, किशोर होते गए, युवा होते गए, और 1936 में साम्यवादी विचारधारा से वे प्रभावित हुए, और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी लेखनी को आवाज दी, और जो साहित्य के प्रति उनका प्रेम था वो आकर उनकी गजलों में दिखाई देता है। और 1943 में साम्यवादी दल ने अपना जब मुंबई ऑफिस, यानी उस जमाने में बॉम्बे कहा जाता था, अपना बॉम्बे कार्यालय शुरू किया, तो कैफी आजमी साहब को आजमगढ़ से बॉम्बे भेजा, और वहां आकर उन्होंने उर्दू जर्नल मजदूर मोहल्ला का संपादन भी किया। और इसके बाद किस तरह से उनकी जीवन में, उनके करियर में उतार चढ़ाव आए, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आगे बढ़ने से पहले एक और बेहद ही प्यारा सा नगमा लता जी की आवाज में आपको सुनाते हैं, और इसको भी लिखा है कैफी आजमी साहब ने।

और इसी के साथ आपके संदेश, आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और ये एक मैसेज आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, शहनाज और नवेद हसन का। और इन्होंने लिखा है कि कैफी आजमी साहब के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है और उनके द्वारा जो आप लिखे गए गजलें सुना रहे हैं, गाने सुना रहे हैं, वो भी बेहद पसंद आ रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

दोस्तों बात हो रही है आज कैफी आजमी साहब की। और अगर इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो 1947 में इनका निकाह शौकत से हुआ और इनकी शरीके हयात यानी शौकत आर्थिक रूप से बेहद संपन्न थी और साहित्यिक संस्कारों वाली थी और उनकी भी साहित्य में रुचि थी और कैफी साहब के लेखन से वे बेहद प्रभावित हुई थी और इसी के बाद उन लोगों ने आपस में विवाह कर लिया और जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी कैफी आजमी और शौकत की बेटी हैं और इनका एक बेटे भी हैं जिनका नाम बाबा है। और वहीं पर अगर हम बात करें उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में तो आवारा सजदे, इंकार, आखिरी शब ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दिल को छू जाने वाली गजलें भी लिखी हैं तो गाने भी लिखे हैं हिंदी फिल्मों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मोहम्मद रफी साहब की आवाज में और कैफी आजमी साहब के द्वारा लिखे गए इस गाने को आपको सुनाते हैं। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा।

और इसी बीच आपके संदेश भी लगातार हमारे पास तक आ रहे हैं। और ये एक मैसेज आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, और कैथल हरियाणा से भी एक मैसेज आया है मधु नायक का। और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, और साथ ही में जो आप कैफी आजमी साहब के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, और उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही मार्मिक गजलें लिखी हैं जिन्हें आप सुनवा रहे हैं। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको कैफी आजमी के साहब के बारे में अगर कुछ और बातें बताएं तो आपको मालूम है कि कैफी आजमी साहब को नेशनल अवार्ड तो मिला ही है, साथ ही में कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। वहीं 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। वहीं अगर यूपी सरकार की बात करें, क्योंकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था, तो यूपी सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग घोषित किया है। और उनकी भावुक और रोमांटिक शायरी बेहद ही प्रभावी लेखनी से आगे बढ़ी है। वे सिर्फ एक गीतकार ही नहीं थे बल्कि पट कथाकार के रूप में भी स्थापित हुए। हीर रांझा कैफी साहब की सिनेमाई कविता कही जा सकती है। सादगी पूर्ण व्यक्तित्व वाले कैफी आजमी साहब बेहद ही हंसमुख थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि वक्त वक्त की बात है कि वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।

तो दोस्तों आपने देखा, इस गाने को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कितने ही भावुक और संवेदनशील लेखक थे, गजल लिखते थे या गाने लिखते थे। कैफी आजमी साहब का दिल बेहद ही बड़ा था और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी शानदार एक से बढ़कर एक गजलें लिखी हैं और गीत भी लिखे हैं। ऐसा ही एक गाना है जो कि 1968 में आई फिल्म अनोखी रात से है, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और गाने के बोल हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। आइए आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा दिल को छू जाने वाला गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ, और आज बात हम कर रहे हैं कैफी आजमी साहब की। यूं तो बहुत ही एक से बढ़कर एक, जैसे चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, और या फिर उन्होंने गीत हो या गज़ल हो या शायरी हो, मतलब आप ये मान के चलिए कि कैफी आजमी साहब साहित्य जगत के सूर्य हैं।

और उनकी रचनाओं का प्रकाश हम सब के ऊपर है और हम सब उन्हें बेहद पसंद करते हैं। जैसे कि उन्होंने एक गजल लिखी, मैं ढूंढता हूं जिसे वो जहां नहीं मिलता, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, आज सोचा तो आंसू भर आए। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, पत्थर के खुदा वहां भी पाए, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। ऐसे कितने ही बहुत ही जिसको कहते हैं ना प्यारे से, दिल को भा जाने वाले, छू जाने वाले उन्होंने गजलें लिखी हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ गजल ही लिखी हो, उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत गाने भी लिखे हैं। तो अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। और आपको छोड़े जा रहे हैं कैफी आजमी साहब के द्वारा लिखे गए इस देशभक्ति गाने के साथ। जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अरुणेश कुमार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहर 3:30 मारूफ शायर नगमा निगार कैफी आजमी के फन और शख्सियत के हवाले से उनकी बरसी के मौके पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे, खामोश बगावतों का शायर, तहरीर डॉक्टर इकबाल रहमान की।

शाम 4 बजे आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हिस्से मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन, आप हमारे नशा सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के अलावा डीडी फ्री डिश पर। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब से चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी, नौजवानों को बाख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है, 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और शंघाई में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग बैन अल-अक़वामी सेंटर में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मौजूद

0: के ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जाय शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजीव अरोड़ा को कल चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया गया। इससे कबल चार ठिकानों पर दिनभर की तलाशी की कार्रवाई की गई थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि वह मुस्तकिल अमन समझौते को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद ही यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। नागालैंड हुकूमत ने रियासत भर में मोटर गाड़ियों पर मजहब पर मबनी किसी भी गैर सरकारी तंजीम एनजीओ से मुतालिक और दीगर गैर मजाज नारे स्टिकर्स और निशानदेही करने वाले निशानात लगाने पर पाबंदी नाफिज कर दी है। ये पाबंदी सभी निजी और सरकारी मोटर गाड़ियों पर लागू होगी। अलबत्ता मोटर गाड़ियों से मुतालिक कानून और जवाबित की शिकों के तहत खसूसी इजाजत हासिल करने वाली मोटर गाड़ियों को इससे छूट हासिल होगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत की जानिब से एक एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह हुक्म जारी किया गया है। मोटर गाड़ियों के मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो इस नोटिफिकेशन के इजरा के 45 दिन के अंदर इस किस्म की सभी चीजें अपनी मोटर गाड़ियों से हटा दें, दीगर सूरत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कल मियामी में कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अस्सानी के साथ मीटिंग की और मगरबी एशिया महाजराई के तनाजुर में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने ईरान के साथ समझौते के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की। इससे कबल कतर के वजीर आजम ने वाशिंगटन में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस के साथ तबादला ख्याल किया था। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट आउट के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। चार सेट के बाद मुकाबला टाई होने पर शूट ऑफ की नौबत आ गई। फैसला कुन मरहले में अपने हिसाब पर काबू रखते हुए भारतीय टीम ने चीन पर 5-4 से कामयाबी हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमएस चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच अब से थोड़ी देर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। इधर रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी, नौजवानों को बाख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और शंघाई में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में नगमा निगार कैफी आजमी के लिखे नगमे आपकी नजर करते हैं। आज कैफी आजमी साहब की बरसी है।

कागज के फूल फिल्म का ही नफा सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में एस डी बर्मन की थी मौसीकी। और जी अब सुनिए शमा फिल्म की गजल सुमन कल्याणपुर की गई हुई कलाम कैफे आजमी का मौसीकी गुलाम मोहम्मद की।

और यह है मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हंसते जख्म फिल्म से कैफी आजमी का लिखा हुआ नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकी मदन मोहन की।

इस तरह कैफी आजमी को दीगर फिल्मों में भी कभी कभी गाने मिलने लगे। इस दौरान उनकी जिंदगी में शबाना के साथ साथ अहमर नाम के एक बेटे का भी इजाफा हो गया। यही अहमर बाद के दौर में बाबा आजमी के नाम से फिल्मी फोटोग्राफी के मैदान में बहुत कामयाब हुए। खैर, हम बता रहे थे कि 50 के दहे के इब्तदाई दौर में कैफी की आमदनी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया समेटे यह खानदान एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था।

कैफी आजमी एक आजाद ख्याल और जिद्दत पसंद शायर थे। उन्हें शुरू में ये बात बहुत अजीब लगती थी कि फिल्मों में शायरों को पहले से तयशुदा धुन पर लिखना पड़ता था। अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने एक बार कहा था, फिल्मी गाने लिखना बिल्कुल ऐसा काम है जैसे कि किसी मुर्दे की कब्र यानी के धुन पहले बना ली जाए, उसके बाद किसी जिंदा शख्स को मारकर कब्र में फिट बिठाने की कोशिश की जाए। नतीजा यही होगा कि कभी मुर्दे के पैर बाहर रह जाएंगे तो कभी सर बाहर रह जाएगा। लेकिन फिल्मों के कई हिदायतकार मेरे काम से मुतमईन हैं, क्योंकि कब्रों में मुर्दे दफन करने का फन मुझे अच्छी तरह आ गया है। और ये दावा सच था, क्योंकि फिल्म कागज के फूल हिट नहीं हुई थी, लेकिन कैफी के गानों ने धूम मचा दी थी। आज भी उस नगमे की दर्द भरी मिठास हमको गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

की वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन का शिकार हो गए और कैफी को काम की तलाश में नए लोगों के पास जाना पड़ा। रमेश सहगल एक ऐसे फिल्मसाज थे जिनके साथ कैफी ने पहले काम नहीं किया था। फिल्म थी शोला और शबनम। इस फिल्म का वो गाना जो रमेश सहगल को बहुत पसंद था, वो आज भी कई लोगों का पसंदीदा है।

इसके बाद एक के बाद एक और अपना हाथ जगन्नाथ जैसी फिल्में आईं, जिनमें कैफी के कई अच्छे गाने थे, लेकिन ये फिल्में भी तजारती कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इसी दौरान कैफी के गानों से आरास्ता फिल्म क्षमा आई, जिसने अच्छा बिजनेस किया।

0: इस फिल्म में पहली बार कैफी ने अपनी एक मशहूर नज्म अंदेशे को भी फिल्म नगमे के कालिब में ढाल कर पेश किया। आपको हम पहले वो नज्म खुद कैफी की आवाज में सुनाते हैं और फिर वो नगमा सुनाते हैं, ताकि आप तय करें कि नज्म ज्यादा अच्छी है या इस नज्म पर मबनी नगमा ज्यादा अच्छा है।
1: रूह बेचैन है, एक दिल की अजियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज

0: मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। वो कहां और कहां काहिशे गम सोजिशे जां, उसकी रंगीन नजर और नकोशे हिरमा, उसका एहसास लतीफ और शिकस्ते अरमा, तानाजन एक जमाना नजर आया होगा। झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जबी, दब गई होगी ललक, डूब गया होगा यकीन, छा गया होगा धुआं, घूम गई होगी जमीन, अपने पहले ही घरौंदे को जो ढाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्ब जबी पर उभर आया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, मिट के एक नक्श ने सौ शक्ल दिखाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। बेमहल छेड़ पर जज्बात उबल आए होंगे, गम पशेमान तबस्सुम में ढल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली की उठाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पर खिजा और भी छाई होगी, बर्क नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पर कई रोज न आया होगा। वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा।
1: और अब समाअत फरमाइए मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपेंद्र की आवाज में इसी नज्म पर मबनी वो यादगार नगमा।

चेतन आनंद मदन मोहन और कैफी आजमी की टीम ने उस दौर के कामयाब तरीन गाने दिए जिनकी बाजगश्त आज भी हमारे जहनों में मौजूद है। फिल्म हंसते जख्म का ये नगमा रफी ने जिस शिद्दत एहसास के साथ गाया है वो अपनी मिसाल आप है।

चेतन आनंद के दिल में बरसों से एक ख्वाब था कि वो वारिस शाह के पंजाबी शाहकार को फिल्म के कालिब में ढाले। उन्होंने इस ख्वाहिश का तस्करा कैफी से किया। कैफी ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी ना किया गया हो। कैफी ने तजवीज पेश की कि ये पूरी फिल्म नज्म में लिखी जाए। चुनांचे हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख में ये वाहिद ऐसी फिल्म है जिसमें शायरी के अलावा किसी और सिंफ का एक जुमला भी नहीं है।

रूम में लिखे। हालांकि राजकुमार और प्रिय राजवंश दोनों ही अदाकार अपने किरदार में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिल्मी गानों और मकालमों की खूबसूरती के दम पर फिल्म चल गई।

0: इस दौरान बस उनकी शायरी ही उनकी दवा थी, उनकी मुनिसो गमखार थी, उनकी रफीको अनीस थी।
1: कभी जुमूद कभी सिर्फ इंतशार सा है, कभी जुमूद कभी सिर्फ इंतशार सा है, जहां को अपनी तबाही का इंतजार सा है। मनु की मछली न कश्ती ये नूह, और ये फजा कि कतरे कतरे में तूफान बेकरार सा है। मैं किसको अपने गरीबा के चाक दिखलाऊं कि आज दामने यज़दा भी तार तार सा है। सजा सवार के जिसको हजार नाज किए, उसी पर खालिक़े कौनैन शर्मसार सा है। तमाम जिस्म है बेदार फिक्र खाबिदा, दिमाग पिछले जमाने के यादगार सा है। सब अपने पांव पर रख रख के पांव चलते हैं, सब अपने पांव पर रख रख के पांव चलते हैं, खुद अपने कांधे पर हर आदमी सवार सा है। जिसे पुकारिए मिलता है खंडर से जवाब, जिसे भी देखिए माजी का इश्तेहार सा है। हुई तो कैसे भी आबा में आके शाम हुई, हुई तो कैसे भी आबा में आके शाम हुई, कि जो मजार यहाँ है मेरा मजार सा है। कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है।
2: शायरी के साथ साथ उनके वतन ने भी उन्हें आवाज दी। कैफी अपने गुमनाम गांव चले गए और अपनी जिंदगी के बकिया वक्त को गांव की फलाह और बहबूद के लिए वक्फ कर दिया।

बाद के दौर में फिल्म पाकीज़ा का उनका गाना चलते चलते एक निहायत मकबूल गाना साबित हुआ और लता मंगेशकर के बेहतरीन गानों में इसका शुमार किया जाता है।

कमाल अमरोही कैफी आजमी के फन की बहुत कद्र करते थे, उन्हें चलते चलते की गैर मामूली कामयाबी याद रही और जब उन्होंने रजिया सुल्तान बनाई तो इसमें भी लिखने के लिए कैफी से दरखास्त की। कैफी को जो सिचुएशन दी गई थी वो कुछ अलग तरह की थी। रिझाने वाले नाजो अंदाज और अदाए दिल फरेबी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस नगमे का अपना एक अलग हुस्न है।

सच तो ये है कि गुलकार जगजीत सिंह ने इस फिल्म से जो मकबूलियत हासिल की उसने रातों रात उन्हें मुल्क के अहम तरीन सिंगर्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया। आज भी ये गजल हमें जगजीत और कैफी के मुनफरिद इश्तराक की कहानी सुनाती महसूस होती है।

अभी आप सुन रहे थे गर्म हवा फिल्म की कवाली, अजीज अहमद खान वारसी कवाल और साथियों की आवाजों में कलाम था कैफी आजमी का। और लीजिए अब सुनिए मदन मोहन की मौसीकी में कैफी आजमी का लिखा नगमा, फिल्म है हीर रांझा, आवाज मोहम्मद रफी की।

नौ निहाल फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी का लिखा हुआ, मौसीकी मदन मोहन की थी। ओली जी अब सुनिए बावर्ची फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

दो बूंद पानी फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। परवीन सुल्ताना, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाजों में कैफी आजमी का लिखा हुआ मौसीकी जयदेव की थी। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में इस प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है हकीकत।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में बीजेपी की कामयाबी उनकी सरकार की जानिब से नाफिज की गई कौमी पॉलिसी के लिए अवाम की हिमायत का मजहर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजों से लोगों के मूड की अक्कासी होती है और इससे ये इशारा मिलता है कि अवाम उनकी सरकार के कौमी प्रोग्रामों और पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। जनाब मोदी आज बेंगलुरु में बीजेपी कैडर से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने ऐसी सरकार की जरूरत उजागर की जो ठीक ढंग से काम करे, तेज रफ्तार के साथ अच्छी हुक्मरानी फराहम करे, मसाइल का हल निकाले और मुल्क को आगे ले जाए। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्लियामेंट में नारी वंदन संशोधन बिल के खिलाफ वोट देकर खवातीन को धोखा दिया है, जबकि इसमें पार्लियामेंट में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की बात कही गई थी। वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अमरीका ईरान जंग जैसे जुग्राफियाई और सियासी हालात व वाकयात से पैदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने के लिए मुत्तहिद रहें। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी के बानी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमराह 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्म सनत से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। जनाब जोसेफ विजय ने तारीख रकम की है। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली उनकी पार्टी टीवी के वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1967 के बाद से वो रियासत के ऐसे पहले वजीर आला बने हैं जिनका ताल्लुक न तो डीएमके से और न ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से है। जनाब जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, CPIM, CPI और IUML की हिमायत के साथ 234 रुकनी ऐवान में 120 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। लोकभवन के एक अखबारी बयान के मुताबिक गवर्नर मौसूफ ने वजीर आला जोसेफ विजय को हिदायत दी है कि वो बुध के रोज या इससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर जोसेफ विजय को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार आवाम के रहन सहन को बेहतर बनाने की खातिर तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। वजीर आजम ने जनाब जोसेफ विजय के तई नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिशा नायके ने टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब दिशा नायके ने कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु गुज़िश्ता कई नस्लों के जमाने से तारीख, सकाफत, इंटरप्राइज और अवाम से अवाम के मजबूत राबतों के जरिए मुंसलिक रहे हैं। उन्होंने भारत और श्रीलंका के दरमियान मजबूत साझेदारी को ये कहते हुए उजागर भी किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं और वसी इक्तसादी इम्कानात और मौके भी सामने आ रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमुई तौर पर पार्टी के 8 अरकान असेंबली ने डॉ हेमंत बिस्वा सरमा का नाम तजवीज किया। वहां मौजूद दीगर अरकान असेंबली ने इसकी ताईद की। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के 10 अरकान असेंबली की मौजूदगी में आसाम गण परिषद के लीडर अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के रहनुमा रेहोन डेमरी ने एनडीए लीडर के तौर पर जनाब सरमा का नाम तजवीज किया। तालीम की वजारत मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान मुल्क के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप 2026 का एहतमाम करेगी। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक

0: खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की है। नागालैंड हुकूमत ने रियासत भर में मोटर गाड़ियों पर मजहब पर मबनी किसी भी गैर सरकारी तंजीम एनजीओ से मुतालिक और दीगर गैर मजाज नारे स्टिकर्स और निशानदेही करने वाले निशानात लगाने पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी सभी निजी और सरकारी मोटर गाड़ियों पर लागू होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि वो मुस्तकिल अमन समझौते को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद ही यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। चार सेट के बाद मुकाबला टाई होने पर शूट ऑफ की नौबत आ गई। फैसला कुन मरहले में अपने आसाब पर काबू रखते हुए भारतीय टीम ने चीन पर 5-4 से कामयाबी हासिल की। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को इत्तफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तीन दी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत विच पेश कर रहे हैं सराय की जुबान दा प्रोग्राम जोक माहिती।

0: इंडिया रेडियो दा सिराइकी प्रोग्राम हे। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते आज दा प्रोग्राम घिन के हाजर हां। के हाल चाल हिन तुहाडे? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक होसो। ते चलो शुरू करें दे हां प्रोग्राम।
1: मैं प्रमोद चोपड़ा पानीपत तो तुहाडा सभा दा आज स्वागत करदा। आज काव्य पाठ सराइकी दे विच साडे कोल जेड़े मेहमान आए हैं वो सब कोल पहले श्री सुंदर लाल छाबड़ा जी बल्लभगढ़ तो पधारन ते सराइकी कविता बड़े ही अच्छे ढंग नाल करेंदन। ते मैं उन्ना को निवेदन करेंदा कि वो अपनी कविता सुनावन पेश करन।
2: ते मैं हुण तुहानू अपनी कविता सुनावन वेंदा पया। उन्दा शीर्षक है सुपने दा शहर।
1: जी।
2: शहरा तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। शहरा तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। चारों पासे भीड़ ही भीड़, जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं, चलदे फिरदे दुरकदे।
1: वाह क्या बात।
2: चारा पासे भीड़ ही भीड़,

0: क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत
0: बहुत वधिया, बहुत ही सुंदर तरनों में बहन जी ने सुनाए, बहुत चंगा लगे। ते आओ हुण मैं भी, मेरा भी मन करदा पै कि मैं भी कुछ सुनावा।
1: बिल्कुल जी, तुसीं भी सुनाओ।
0: तरनों में कोशिश करदा पिया। अज कल जिवें हालात थाए पैन साडे मुल्क विच, कुछ लोग मुल्क विच रह के साडे देश दा खांदन, लेकिन गुण किसी होर दे गांदन, विदेश दे
1: जी।
0: ते इन्हां दे बारे च मैं थोड़ा कोशिश कीती है। जिथां दा खांदे हो, जिथां दा खांदे हो, खादा पिता हराम ना कर।

ए देश तेरा वी मेरा ही को बराबर है।

के दूजे मुल्का दिशे ते पिया तू टपदा है के दूजे मुल्का दिशे ते पिया तू टपदा है के बन के दुश्मन दा कुत्ता तू साकू पटदा है के बन के दुश्मन दा कुत्ता तू साकू पटदा है पर

कर बदल तो सकदा है, बदल तो अमला को जेकर बदल तो सकदा है, जिथा द खांदे हो कदी तू सोची मेरा देश ए महान क्यों है।

0: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: जरा विचार करें, दुनिया तो उच्च शान क्यों है, जिथा दखांदे हो तू प्रेम कर सी, तमिल सी एदा गुणा करके, तू प्रेम कर से तमिल सी एडा गुणा करके।

0: ना लिख सा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिख सा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिख सा। वत सोचिया है ना लिख सा ते क्या करे सा। वत सोचिया है ना लिख सा ते क्या करे सा। गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। मैं ते तू तू ते मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। कड़ी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताई कीती है। कड़ी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताई कीती है। ता माए पानी दी बुक्का भर तेड़े ते पाती है। तमाए पानी दी बुक्का भर तेड़े ते पाती है। खेत मुडेरा ते बैके खेत मुडेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। खेत मुडेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है ते हेक सिलाई मेडी है।
1: बहु सोना वाह।
0: खेत मुडेरा ते बैके सपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है ते हेक सिलाई मेरी है।
2: क्या बात।
0: ओ सोना सोना बाल है अपना ओ सोना सोना बाल है अपना। निक्के निक्के पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। ओ सोना सोना बाल है अपना। निक्के निक्के पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। तू ते मैं ते तू तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिलदे हासे। तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिलदे हासे। ते हुण किथा गई ओ तेरी खिल ते हुण किथा गई ओ खिल ओ झप्पी ओ सपने ते ओ तेरी सिलाई। ते किथा गई हुण ओ तेरी खिल ओ झप्पी ओ सपने ओ तेरी सिलाई। मैं बैके हुआ मुंडेरा ते मैं बैके हुआ मुंडेरा ते ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फड़ के अपनी सोचदा हां। मैं बैके हूं मुंडेरा ते ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फड़ के अपनी ते सोचदा हां। हुण मैं ना लिख सा हुण मैं ना लिख सा हुण सुंदर ना लिखसी हुण सुंदर ना लिखसी।
1: पर लिख दे रहा
0: जी
2: आपका लिख दे रहो
0: तो आशीर्वाद राशि दे लिख दे रहा सुन जी चाहिए आशीर्वाद बड़े लोगों का।
2: वाह जी वाह बहुत वधिया
0: जी।
2: ते मैं फिर दोबारा दरखास्त करदा पिया बहन जी सोमिया दुआ जी को कि एक मोहब्बत की कविता उन्होंने आखे अस पेश करे सू
1: जी।
2: ते निवेदन है
1: दो नज़मा पेश करें दी भैया
0: जी। स्वागत
1: एक तरन्नम विच
0: जी।
1: तिलस्मी खावा विच तेरे होवण दा एहसास रिया।
2: बहुत बढ़िया।
1: तिलस्मी खावा विच तेरे होवण दा एहसास रिया। मैं हर वारी अपना होकर भी अपना ना रिया। मैं हर वारी अपना होकर भी अपना ना रिया। मेडी बेपाकी दा असर कुछ इस कदर हाई मेडी बेबाकी दा असर कुछ इस कदर हाई। मैं सब दे विच भी तनहा ही रिया।
0: क्या बात।
1: मैं सब दे विच तनहा ही रिया। हिक कुर्सी ता कुछ किताबा हिक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे हिक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे कुछ नाल चाह दी चुस्कियां दा वी रिया। गुमा हाई।

0: शजर को मेरे होवण दा।
1: क्या
0: घुमा हाई शजर को मेरे होवण दा, मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया, मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया, हवावां दी तस्वीर कहनी होंदी।
1: सही।
0: हवावां दी तस्वीर कहनी होंदी, उसका वजूद हर सांसा विच दिखिया, मेरी बेबाकी दा असर कुछ इस कदर हाई, मैं सब दे विच भी तनहा ही रहा, मैं सब दे विच तनहा ही रहा।
1: बहु खूब जी, बहु खूब। हवावां दा कोई
0: तस्वीर
1: नहीं होंदी। क्या बात,
2: बहुत
0: लेकिन हर सांसा विच
1: एहसास रहना ही पैंदा।
2: बहुत वधिया जी,
1: बहुत वधिया।
2: अगले तुहाडी
0: एक तरन्नुम विच मोहब्बत
1: जी।
0: तुसा गिए हो

सामिन तस्वीर सुन रहे सिसराय की जुबान का प्रोग्राम झोक माहिती आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी ए पंजाबी सेवाई हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम देश पंजाब।

और उनु नबी कह रहे ने नबी सांझे सभ्याचार दा सांझे पंजाबा दा प्रतीक है जिस करके ये जड़ा शायर है डॉक्टर जगतार इहदी शायरी दा जो मुहावरा है इहदा जो अंदाज है ये दोवें पासे दे पंजाबा नू बहुत प्यारा लगता है बहुत मुहब्बत लोकी इस शायर नू करते ने क्योंकि इस शायरी च ना एक युग सांभिया होया सांझ दा विरासत दा सभ्याचार दा डॉक्टर जगतार जिदा अज दी पीढ़ी दे इदां दे शायर ने जिन्हां च दोवां पंजाबां दी झलक मिलदी है इसे तरह पंजाबी साहित पंजाबी अदीब च होर बहुत शायर ने जिन्हां ने सांझे पंजाब दी तस्वीर नू सामने रख्या मिसाल दे तौर ते शेख फरीद होरां दे जिहड़े कलाम ने उन्होंने मुल्तानी बोली च अपने कलाम लुकाई नू नवाजे और मुल्तानी बोली सांझे पंजाब दा एक बहुत वड्डा प्रतीक बन गई अमृता प्रीतम प्रोफेसर मोहन सिंह जिन्होंने पोठोहारी पंजाबी नू मकबूल किया ते उन्हां दी शायरी विच वी दोवां पंजाबां दी झलक वेखी जा सकती है करतार सिंह दुग्गल भी इदां दे साहित्यकार ने जिन्हां च दोवें पासे दे पंजाब दी जुबान दा असीं नज़ारा वेखदे हां महसूस करदे हां हंडाउंदे हां सो सलाम है जी इदां दे अदीबां नू जिहड़े सांझ दा सांझे सभ्याचार दा प्रतीक ने

सामिन तुसी लोक रंग से उसे तहता जो प्रकार से दोहन दिखाए नगमे सुने ते हुण आखिर दे विच वारी है तमन्ना दी ते सामिन अज तमन्ना सुसे तहत जिहड़ा खत असीं प्रोग्राम च शामिल करन जा रहे हां ये सानू भेजिया है नवा शहर तो गुरजीत सिंह ते इन्हां दे साथी रमनप्रीत ते दर्शन ते नाल ने इन्हां दे साथी रणजीत कौर इन्हां दे खत दे विच जिस गीत दी तमन्ना है ओह नगमा है जी गुरदास मान होना दी आवाज विच आओ फिर सुन दें इन्हां दी तमन्ना ते गुरदास मान होना दा गाया ए नगमा।

4.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुन रहे सी प्रादेशिक खबरां, पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: सारे लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: हुण तक 8.85 करोड़ तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 to 40 साल के विचकार है तो महीनावार अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: हां जी रुलिया राम जी, लंघ आइए।
3: आजू आजू आजू शिंगारा सिंह जी, आजू बच्चे वाले आजू।
2: जय हिंद जी रुलिया राम जी, जय हिंद।
3: जय हिंद जी, जय जी। शिंगारा सिंह जी, बच्चे वाले की हाल चाल है?
2: हाल चाल तगड़े ने जी, तुहां सुनाओ ठीक ठाक हो?
3: तगड़ा हाल चाल है।

0: हां जी सिंगारा सिंह जी बच्चियालो जिदा आपां जिक्र करदे हां
1: जी
0: कि बहुत सारिया चीजा है जेडिया खेती बाड़ी दे विच सानूं ध्यान च रखनिया चाहीदियां
1: जी
0: क्योंकि खेती खर्चे किते ना किते सानूं अज दबी बैठे है
1: सही गल है
0: और बेलोड़े जिन्हां तो बिना कीतिया भी असीं खर्चा बचा सकते हैं अपना फायदा मुनाफा बढ़ा सकते हैं
1: जी
0: हुण खादा है खाद जे असीं बेहिसाबी ते बेलोड़ी खाद पावांगे उहदा ना फसल नूं फायदा है ते सानूं कर्जाई जरूर कर दू
1: बिलकुल जी गल तुहाडी सही है जी
0: है कि नहीं
1: हां
0: इस करके जे लोड़ दे मुताबिक ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਓ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਯਾਰ
1: ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਆ
0: ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਇੱਕ ਡੰਗ
1: ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਰਸ਼

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलग वेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की

0: शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम कृषि जगत का, जिसे लेकर आपके साथ हैं निरंकार दत्त वशिष्ठ और हेमंत कुमार।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को राम राम, राम।
1: हेमंत भाई
0: जी,
1: भाई किसान भाइयों के समय के पास इस समय बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पर भंडारण की बात आती है तो भंडारण का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत करके फसल को उगाते हैं तो अगर उसका सुरक्षित भंडारण नहीं होता है तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। कई बार उसके अंदर कीट और फफूंदी वगैरह लग जाती हैं, उससे आपकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी पर असर आता है, जिससे अगर आपको विपणन करना है तो आपको अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं।
0: जी,
1: जरूरी बात है कि जब आप अपने उत्पाद को घर में लाते हैं, जो अपने उसका सुरक्षित भंडारण कर लेते हैं उत्पाद का, तो जो समय पर उसको अच्छे दाम मिल जाते हैं, क्योंकि मूल्य और आपूर्ति इसका सीधा सीधा संबंध है। अगर मार्केट में कोई चीज ज्यादा होती है तो उसके दाम फिर कम मिलते हैं। जब वो मौसम, बहुत सारी चीजें हमारे किसान भाई हैं जैसे कि मूल्य संवर्धन करते हैं, वो इसीलिए कि बिना मौसम भी अपनी सब्जी है, फल है, उनको मार्केट में ज्यादा रेट में वो बेच सकते हैं। इसीलिए जो खाद्यान्न की फसल, खासतौर पर अभी गेहूं की कई भाइयों ने गहाई की है, तो थ्रेसिंग के बाद जब घर पे लाते हैं उसमें भंडारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें ये देखना है कि जब आप खेत से थ्रेसिंग करके अपनी फसल को लाते हैं, सबसे पहले जरूरी चीज है कि उसके अंदर उसको सुखाने के बाद ही भंडारण करना है, क्योंकि उसको खराब करने में नमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो कीट और व्याधि उसके अंदर आने का खतरा रहता है, जिससे घुन वगैरह लग के वो खराब हो जाता है। पहले तो उसको सुखाना है, और उसके साथ साथ जहां जिन बोरों में उसको रखना है या जिस कंटेनर में रखना है उसकी भी साफ सफाई जरूरी है। बोरियों में अगर रखते हैं तो बोरियों को अच्छी तरह से उबलते पानी में डाल के फिर उसको सुखाना है, और जब धूप अच्छी तरह से 2-3 दिन धूप में डाल दें, उसके बाद उन्हीं बोरों में आपको भंडारण करना है। और जो शीत, जो आपका भंडारण गृह है, उसके अंदर भी अगर कहीं दरारें हैं, उसमें किसी भी कीट आदि के अंडे जाने की अगर संभावना लगती है तो उनको नष्ट कर दें, उन्हें साफ कर दें। इस तरह से आप अपनी फसल को अगर बचाकर रखेंगे तो उसकी आपको गुणवत्ता बनी रहेगी, नष्ट नहीं होगा। आप देखिए, खाद्यान्न की जब हम बात करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जब हम उसका उत्पादन करते हैं उसे बचाना और भी जरूरी है। मान लीजिए आपने उत्पादन किया और उसको चूहे खा गए या कीटों ने खराब कर दिया, घुन लग गई, तो जब आप मार्केट में ले जाएंगे उसके दाम नहीं मिलेंगे, वो दाम भी नहीं मिलेंगे और वो हमारे लिए समझिए कि अलग हो जाएगा। हमारी जो खाद्यान्न की हम बात करते हैं कि भंडार उसके हमारे भरे होने चाहिए, उसमें भी फिर कमी आती है।
0: बहुत बढ़िया बात आपने ये बताई कि जैसे पुराने बोरे हैं, जो जूट के बोरे होते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, पहले से ही कीट वगैरह होते हैं, अंडे वगैरह दे रखे होते हैं, और उसी में हम जो है फसल का जो जो है निकासी उसमें भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो घुन वगैरह लगना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीजों का ध्यान रख के अपनी फसल को आप आसानी से बचा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बनाकर रख सकते हैं। और अब जो है भाइयों को सुनवा देते हैं एक
0: कौशिंदर खजाना और साथियों की है, और फरमाइश भी हमारे पास आई है।
1: ये तो रागनी है भैया, महाभारत के किस्से की है,
0: और इसके लिए हमारे पास फरमाइश भी निरंकार भाई,
1: बिल्कुल पढ़ दो, हमारी रह गई ना ग्राम संसार में, भाई नाराज ना हो जाए।
0: बिल्कुल, तो हमारे पास जो फरमाइश आई है, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये फरमाइश आई है, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश इसी क्रम में हमारे पास आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की। वहीं बिलासपुर से एक और फरमाइश आई है सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव ग्रोवर और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और उनका परिवार।
0: अगली फरमाइश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या दिवंगन, रोशनलाल दिवंगन और उनके परिवार के सदस्यों की हम तक फरमाइश पहुंची है।
1: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और इनका परिवार।
0: गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरलाल सिंह और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी हमें फरमाइश भेजी है।
1: अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा और इनका परिवार।
0: चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से हमारे पास आई है फरमाइश तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, क्षमा और शिवी की फरमाइश हम तक पहुंची है। ये
1: नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा और उनका परिवार।
0: शीशपाल अकेला जी ने भी फरमाइश भेजी हमारे पास, जटवाड़ा गाजियाबाद से ये फरमाइश हम तक पहुंची है।
1: और उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और उनका परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई बाग बहारा भदरसी छत्तीसगढ़ से पन्नालाल सेन, तारा सेन, खुशबू सेन, कौशल सेन और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: तो सुन लेते हैं कोशिंदर खदाना को।

0: निरंकार भाई, अभी अपने साथियों की फरमाइश पर सुना हमने कौशिंदर खदाना और साथियों को, और अगले हमारे कलाकार हैं भुलन त्यागी, और उनके लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और उनके परिवार के सदस्य,
1: लाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वैद मिड्डा अलका मिड्डा,
0: गांव गोविंदगढ़ माजीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू और उनके परिवार के सदस्य,
1: गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार,
0: गांव पनिहार चक हरियाणा से मोलू कस्बा और उनके परिवार के सदस्यों की हमारे पास फरमाइश आई है। वहीं हाडीखेड़ा जिला सिरसार से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की ये फरमाइश पहुंची है।
1: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और परिवार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार,
0: गांव खोकरावाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और उनके परिवार के सदस्य,
1: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और उनका परिवार,
0: बाबा कटुई रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उनके परिवार के सदस्यों की फरमाइश आई है हम तक,
1: दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबलू डब्बू,
0: एमएलवी रोड ग्वालियर से फरमाइश आई है सुरेश खुराना, पप्पी कुरन खुराना, लाभ्या आरब और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की,
1: मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहनकर, राही श्रीमती सरिता गोहनकर, प्रणीता,
0: संबलपुर कांकेर से फरमाइश आई है निरंकर भाई, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और उनके परिवार के सदस्यों की,
1: कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और उनका परिवार,
0: वहीं गांव बुर्दू चैना से जिला भिवानी हरियाणा से फरमाइश आई है महिपाल चौरान, नीरू उत्कर्ष और उनके परिवार के सदस्यों की,
1: ये है ब्रिज विहार कॉलोनी मुराद नगर गाजियाबाद से करमवीर ढिलोड, सूरजमल ढिलोड और इनका परिवार,
0: गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडवासरा, सचिन सतीश और उनके परिवार के बाकी सदस्य,
1: जनकपुरी सहारनपुर से जोन डेस्केट्रो, रोजी डेकेस्ट्रो, पर्ल डेकेस्ट्रो और विलिस डेकेस्ट्रो,
0: गांव सरेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश आई है मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की,
1: छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी और परिवार,
0: रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, अफजल ताज ठाकुर साहब की फरमाइश हम तक आई है। वहीं अगली फरमाइश हम तक पहुंची है और ये है राजस्थान से हनुमानगढ़ से आई है और रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और उनके परिवार के सदस्य,
1: गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और उनका परिवार,
0: गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश आई है रमेश कुमार कम्बोज, पिंकी वंश और भूवेश कुमार कम्बोज की,
1: सुधरीवास हिसार से राजू बिंदल, केशव दक्ष, प्रियांशी और परिवार,
0: ढांडा नरसाना भिवानी से फरमाइश जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों ने फरमाइश भेजी है। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और उनके परिवार के सदस्य। वहीं अगली फरमाइश इसी क्रम में हमारे पास आई है, ये फरमाइश आई है राम साबाना जिला सहारनपुर से श्यामवीर, पूजा देवी, ब्रजपाल और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो सुन लेते हैं उपदेश भुलन त्यागी की आवाज में।

0: तो निरंकार भाई, अभी साथियों की फरमाइश पे हमने सुना बुलेन त्यागी को, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन और भाइयों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर
0: और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, जिसे प्रस्तुत किया निरंकार दत्त वशिष्ठ और हेमंत कुमार ने। उम्मीद करते हैं आपके लिए कार्यक्रम बेहद ही लाभदायक होगा। और अब समय है कार्यक्रम गीत गजल का। जी हाँ, जिसमें आप सुनेंगे कव्वाली और गजल, और इसके साथ ही आप जानेंगे बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें। तो कार्यक्रम की जो पहली गजल है वो है चंदन दास के स्वर में, लीजिए सुनते हैं।

हाँ, इस गजल और कवाली के कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुम लता। जी हाँ, मैं सोच रही थी कि शायद आपका एक पैगाम आ जाएगा कि ये आवाज़ तो हमारी दोस्त की है, और आए भी कई पैगाम, लेकिन उतने नहीं जितने मैं सोचती थी। खैर कोई बात नहीं, दोस्त हैं, धीरे धीरे सुन रहे हैं और धीरे धीरे बताएंगे भी। तो आज आप अपनी इस शाम को कैसे मना रहे हैं? किसी की याद में, चाय की चुस्की के साथ, या फिर कहीं चहलकदमी करते हुए? यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है। जी हाँ, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात तो है जो इस शाम पे रोना आया। शकील बदायूनी।

वो ना आएगा हमें मालूम था, वो ना आएगा हमें मालूम था, इस शाम भी इंतज़ार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे।

ये गजल आपने सुनी चंदन दास के स्वर में, और लीजिए अब सुनते हैं चंदन दास की ही एक और गजल, लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें। उदासी शाम तन्हाई, जी हाँ उदासी शाम तन्हाई, कसक यादों की बेचैनी, मुझे सब सौंप कर सूरज उतर जाता है पानी में,

0: अभी आप सुन रहे थे गीत और कवाली का ये कार्यक्रम कुसुम के साथ, और लीजिए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
7: ओह लवली, वेल डन,
6: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
7: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
8: RBI कहता है
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया। और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
11: इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर, स्वच्छ और सुचारू जलापूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि नई पाइपलाइन परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति में सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, ताकि हर बस्ती तक विकास का लाभ पहुंच सके। स्थानीय निवासियों ने परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
10: दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें सैनिक फार्म, वसंत कुंज एनक्लेव और छतरपुर एनक्लेव जैसी प्रमुख कॉलोनियां शामिल हैं। वसंत कुंज एनक्लेव में RWA द्वारा आयोजित एक जनसभा में श्री बिधूड़ी ने कहा कि इन कॉलोनियों में सभी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमित करण आवश्यक है और इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक निर्णय आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सांसदों ने हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के

0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। 9 और 10 मई को नवीन शहादरा, उत्तर पूर्व नई दिल्ली और करोल बाग जिलों में आयोजित इन शिविरों में संगठनात्मक विषयों, कार्यकर्ता विकास और जनसंपर्क कौशल पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें विकास के अवसर प्रदान करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए संकल्प और प्रशिक्षण दोनों समान रूप से आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और जन कल्याण की नीतियों के कारण आज देश भर में भाजपा की विचारधारा का विस्तार हुआ है और जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि सभी दिल्लीवासी और यहां आने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, जिससे राजधानी को बेहतर यातायात वाला शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक की मौलिक जिम्मेदारी बताया। उपराज्यपाल ने वाहनों की सुनियोजित पार्किंग तथा हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर भी जोर दिया, ताकि यातायात सुचारू रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे ने उत्तर पश्चिम दिल्ली की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि मुखरबा चौक पर जाम की समस्या कम करने के लिए हैदरपुर बादली स्थित आउटर रिंग रोड पर मौजूदा रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी के चौड़ीकरण को रेलवे की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही शालीमार बाग से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित एलिवेटेड लूप परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर पश्चिम दिल्ली में यातायात दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित तथा निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल एएनटीएफ ने पुरानी दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में राजधानी को नशामुक्त करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का आयोजन उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा पैम्फलेट तथा ग्राफिक्स के माध्यम से नशे की गंभीरता को सरल तरीके से समझाया गया और प्रतिभागियों को 24 घंटे उपलब्ध 1933 मानस हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार ने संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को संरक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य उपलब्ध कराना है। राजधानी में लाजपत नगर स्थित विलेज कॉटेज होम में बच्चों से मुलाकात के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बच्चा या युवा खुद को अकेला, असहाय या उपेक्षित महसूस ना करे, इसके लिए सरकार 18 वर्ष की आयु के बाद भी उनका साथ देगी। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर समस्त माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज देशभर में मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माताओं के त्याग, स्नेह और समर्पण को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां केवल एक संबंध नहीं, बल्कि वात्सल्य, त्याग, संस्कार और अटूट स्नेह की वह शक्ति है जो

0: जीवन को दिशा और संवेदना प्रदान करती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज मदर्स डे के अवसर पर राजनिवास में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान श्री संधु ने कहा कि थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बच्चों के साहस और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चे दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत का प्रतीक हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मदर्स डे के अवसर पर कालीबाड़ी मार्ग स्थित आशीर्वाद वृद्धाश्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। पहलवान दीक्षा मलिक ने कहा कि संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और हर व्यक्ति को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए।
1: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं साइकिलिंग करते हुए।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 1857 में आज ही के दिन हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण था जब देशवासियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद किया और राष्ट्रभक्ति की अमर ज्योति प्रज्वलित की। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने घोषणा की है कि राजधानी के सभी 13 जिलों में कल से एक विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा। राजधानी के पूट खुर्द स्थित अपना घर आश्रम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आश्रम लाया जाएगा, जहां उनके चिकित्सा उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग, अपना घर आश्रम और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 19 विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य 300 से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाना है। श्री सिंह ने बताया कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वन विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस 5 दिवसीय अभियान के दौरान 2400 घंटे समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये देख कैसे?
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: देखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने

0: भी यही उम्र है राइट,
1: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
2: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
0: आई नो ना।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन,
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए। विगत 30 अप्रैल को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया।
1: नमस्कार, ये युवा लेखनी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी दिल्ली की एक विशेष प्रस्तुति है। इस कार्यक्रम की शुरुआत इसीलिए की गई कि हमारे युवा साथी अपने समाज को जैसा देखते हैं, जैसा समझते हैं और कभी कभी जैसा लिखते हैं वो उसी रूप में हमारे साथ बिना झिझके बिना डरे साझा कर पाएं। वैसे भी इन दिनों हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। प्रसारण और संवाद की आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा को हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में भी यही प्रयास है और इसीलिए युवा साथियों को ये प्रतिष्ठित मंच हम उपलब्ध करवा रहे हैं अपनी रचनाएं साझा करने के लिए, ताकि पठन पाठन की परंपरा जारी रहे। एक मधुर धुन हमने इस कार्यक्रम के लिए तैयार की है, आइए धुन सुनते हैं।

0: हम जानते हैं दिल कुछ कहता है और कई बार बहुत कुछ कहता है। तो जो भी आपका मन करता है जब आप उसे कागज पर उतारते हैं तब वो आपकी रचना होती है, लेकिन इस मंच पर सुनाने के बाद वो हम सबकी रचना हो जाएगी। तो मैं यहाँ इसी प्रयोजन के लिए अब आमंत्रित कर रही हूँ सबसे पहले अपने साथी हिमांशु पांडेय को। हिमांशु अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हिमांशु।
1: मित्रों नमस्कार। कविता लिखी नहीं जाती, कविता लिखवाई जाती है। टूटे हुए दिल से, कंपन करती हुई धमनियों से, जलते हुए रक्त से, कुछ एक ऐसा ही गीत सुनना दोस्तों। वो

कहें, जब से उतरा हृदय में असर प्यार का, जब से उतरा हृदय में असर प्यार का, सोचता हूँ कहाँ और कब क्या करें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा। पंक्तियां सुनना, एक चकोरी चपल सूरते खाब जो चांदनी रात में चांद सी हो गई, ओ कामनी सी परी अवतरित जो हुई, धरती ऐसे लगे स्वर्ग सी हो गई, धरती ऐसे लगे स्वर्ग सी हो गई, ऐसा महका समा की महकता गया, ऐसा महका समा की महकता गया, उसमें महकी जो मूरत उसे क्या कहें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा, उन निगाहों की माया को अब क्या कहें, जब से उतरा हृदय में

0: प्यार का सोचता हूँ कहाँ और कब क्या करें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा। और प्रेम में डूबकर जब पंक्तियां लिखी जाएं कि धड़कनों से जो धड़कन मिली इस तरह दिलबरों के दिलों का तर्पण हुआ, और बारिशों में जो भीगा ये तन मन तेरा भीगे भीगे अधर का समर्पण हुआ। और ऐसा बरसा वो सावन बरसता गया, ऐसा बरसा वो सावन बरसता गया, उसमें डूबी जवानी को अब क्या कहें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा। और अब सुनाने जा रहा हूं दोस्तों गीत की आखिरी पंक्तियां और गीत का निचोड़, कि जो हो पावन से पावन तेरे प्यार में एक शरारत भी ऐसी कर दूंगा मैं, जो लिखी जाएगी हर शिला लेख पर एक इबारत ऐसी भी गढ़ दूंगा मैं, जो लिखी जाएगी हर शिला लेख पर एक इबारत ऐसी भी गढ़ दूंगा मैं, वो जो लेखन करूंगा तुम्हारी कसम, वो जो लेखन करूंगा तुम्हारी कसम, पूछ लेगी ये दुनिया कि अब क्या लिखें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा, उन निगाहों की माया को अब क्या कहें, जब से उतरा हृदय में असर प्यार का सोचता हूँ कहाँ और कब क्या करें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो हिमांशु पांडे ने श्रृंगार के साथ शुरुआत की और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सपना राज पांडे को। आइए जानते हैं सपना हमारे साथ अपना कौन सा भाव साझा करना चाहती हैं।
2: नमस्कार, मैं सपना अपने सो विचारों से सबकी समस्याएं सुलझाती हूँ, मैं कविताएं सुनाती हूँ और मैं MBBS फाइनल ईयर की छात्रा हूँ लेकिन कविताओं का शौक रखती हूँ। तो आज यहाँ प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी कलयुग रामायण लेकर। मैं अपने आप को इस कलयुग की सीता समझती हूँ और अपने राम के खोज में व्याकुल, इसी से प्रारंभ करेंगे। कविता है, सुनिए। समस्त लोक संसार में बैकुंठ में हर काल में हर ओर दिलाशा दिखती है, ना मेरी अभिलाषा मिटती है, कान्हा बने सब कुष्ट हैं, विशिष्ट की तलाश में सीता समन ये रुष्ट है कि सुपर्णखा भरी पड़ी हरने को व्याकुल खड़ी, क्या उम्र यूं ढल जाएगी उन्हें पाने की आस में, सीता खड़ी है सूक्ष्म यूं भूलोकन बनवास में, क्या राम मेरे मिल पाएंगे इस कलयुग में कैलाश में, गर राम मेरे मिल जाएं तो मंजर वो पावन कैसा होगा, चमकेंगी आंखें थिरकेंगी अधरें, हृदय अबोध सा मानो चंचल सा कोई बच्चा होगा, तो मैं उन्हें क्या कैसे मनाऊंगी। इस पर अगली पंक्तियां हैं, तो सुरमा है सूरत में तेरी साफ पढ़ती हूँ।

0: नजर खुद को न लग जाए ये कहने से डरती हूँ।
1: मतलब जग में जैसा होता है हरदम वैसी ना कोई रीत हो, काल कपाल विकराल बने, हालत बेहद विपरीत हो, व्यवसायी सारे व्यस्त बने, लाखों में न कोई मीत हो, उपभोग के भोग को चखने में ये दुनिया जब अधिकृत हो, सब मोह माया त्याग मनुष्य भूला अपना हर प्रीत हो, उस घड़ी घटा बन घेरोगे क्या, मिलने क्या मुझसे आओगे, छोड़ छाड़ सब दुनियादारी, समझ क्या मुझको पाओगे, साथ मेरे हर कमियों के, क्या मुझको तुम अपनाओगे, साथ तुम्हारा देना है बस, क्या मेरे बन पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मीठी सी आवाज, रोचक अंदाज और छंदों की बरसात के साथ ये थी MBBS की छात्रा सपना राज। बहुत ही रोचक अंदाज में उन्होंने अपने भाव हम तक पहुंचाए। मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूं आशुतोष अश्क को। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए मंच पर आशुतोष अश्क का।
3: इस तारुफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि मैम ने बताया, मेरा नाम आशुतोष शर्मा अश्क है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय

0: एक मास्टर्स का छात्र हूँ, मैं एक गजल से शुरुआत करता हूँ। मतला है, सुनिएगा। कि किसी का यूं भी रिश्ता चल रहा है, किसी का यूं भी रिश्ता चल रहा है, कोई एक शख्स तन्हा चल रहा है। किसी के हिस्से में गुमनामियां हैं, किसी के हिस्से में गुमनामियां हैं, किसी का यार सिक्का चल रहा है। किसी के हिस्से में गुमनामियां हैं, किसी का यार सिक्का चल रहा है। शेर सुनिएगा। कि हमारे हाथ में तेरी घड़ी है, हमारे हाथ में तेरी घड़ी है, हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। हमारे हाथ में तेरी घड़ी है, हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। वफा का पाठ जो माने पढ़ाया, वफा का पाठ जो माने पढ़ाया, फकत उससे गुजारा चल रहा है, फकत उससे गुजारा चल रहा है। एक गजल के कुछ शेर मतलब शुरुआत करूंगा मैं। कि दो मिसरों में दुनिया प्यारी लगती है, दो मिसरों में दुनिया प्यारी लगती है, लेकिन इसमें उम्र हमारी लगती है, लेकिन इसमें उम्र हमारी लगती है। इश्क को साहब आग का दरिया बनने में, इश्क को साहब आग का दरिया बनने में, सच बतलाऊं एक चिंगारी लगती है, सच बतलाऊं एक चिंगारी लगती है। शेर सुनिए। कि यूं ही नहीं हम सीना तान के चलते हैं, यूं जीने में बड़ी खुददारी लगती है, यूं जीने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं जीने में एक नज्म। कि तुमने देखा भी है कभी उसको, तुमने देखा भी है कभी उसको, उसकी आंखों को, उसके चेहरे को, उसके जुल्फों की हर एक लटकन को, उसके हाथों के हर एक कंगन को, उसके होठों को जरा गौर से देखो, देखना है तो मेरे तौर से देखो। ये लव महज पंखुड़ी भर नहीं है, इनमें एक आसमां है, दूसरा जमीन है, जिसको बनाने में आंखों में गड्ढे पड़े हैं। तुम्हें तो वो तस्वीर यूं ही मिली है, वो नहा करके जुल्फें झटकती है तो ये हवाएं और नमदार हो जाती हैं, उसको छूने को हर शय मचल जाती है। वो नहा करके जुल्फें झटकती है तो ये हवाएं और नमदार हो जाती हैं, उसको छूने को हर शय मचल जाती है। रंगीन तौलियों में तकरार हो जाती है, वह जो उसके कानों के झुमके हैं, वह जो उसके कानों के झुमके हैं, वह कोई देवता पिछले जन्म के हैं, जो उसके गालों को रोज चूमेंगे, नशे में आठों पहर झूमेंगे। मैं दावा कर रहा हूं ये फिर से, हर एक पत्थर से, हर एक संगदिल से, उसकी बातों में ही खो जाओगे, तुम भी उसके दीवाने हो जाओगे। तुमने बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने देखा ही नहीं है उसको, उसकी आंखों को, उसके चेहरे को। एक छोटी सी कविता आखिर में जो है, अगर मैं आप सबका, जितने भी लोग प्रेम में हैं उनका दुख अगर मैं बयां कर पाऊं, तो मैं आपकी दाद चाहूंगा। कि एक बात बताओ पंडित जी, हमको समझाओ पंडित जी, जरा हाथ देख कर बतलाओ, अगर दिखा सको तो दिखलाओ। ये रेखाएं क्या कहती हैं, चंदा सूरज का क्या मन है, क्यों मंगल मुझसे रूठा है, और लग्न में कैसा अवगुण है, जब प्रेम किया था तब भी तो, या आसमान था तारे थे, पंडित था यह दुनिया थी, और ग्रह नक्षत्र भी सारे थे। अब जब मैं प्रीत लगा बैठी, अब जब मैं प्रीत लगा बैठी, सब राह में आड़े आते हैं, क्यों भाग्य रुकावट बनता है, क्यों गुण नहीं मिल पाते हैं। कुछ राह दिखाओ पंडित जी, हमको मिलवाओ पंडित जी, एक बात बताओ पंडित जी, हमको समझाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो आशुतोष अश्क ने बहुत ही प्यारी सी एक फरियाद की, हमको मिलवाओ पंडित जी। कई बार ये काम कविता भी कर देती है, और बहुत अजनबी जो लोग होते हैं उन्हें बेहद अपना बना देती है हमारी रचनाएं। अब मंच पर आप सभी के समक्ष हैं आदित्य मौर्य अपनी रचना के साथ। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से हम करतल ध्वनि से आदित्य का स्वागत करें।
2: नमस्कार, मेरा नाम आदित्य मौर्य है, मैं यहाँ दिल्ली में SSC एस्पिरेंट हूँ, और मेरा जो झुकाव है कविता और गजलों की तरफ बहुत ज्यादा है, तो इसमें कुछ काम है मेरे, सुनाता हूँ। एक मतला और एक शेर से शुरू करता हूँ। कि आइए जरा सा और पास बैठिए, आइए जरा सा और पास बैठिए, साथ दीजिए मेरा उदास बैठिए, साथ दीजिए मेरा उदास बैठिए, और मुझसे अगर खफा हैं तो खफा रहें मगर, मुझसे अगर खफा हैं तो खफा रहें मगर, पास और पास और पास बैठिए, पास और पास और पास बैठिए। बहुत शुक्रिया। बतौर खास शेर देखें, मेरा पसंदीदा शेर, उसको खुश देखकर मैं खुश हूँ मगर, उसको खुश देखकर मैं खुश हूँ मगर, उस खुशी का असर उदासी है। बहुत शुक्रिया। एक गजल और देखें कि जहनी बीमार हो।

0: गया हूं मैं, जहनी बीमार हो गया हूं मैं, अब तो बेकार हो गया हूं मैं, और जिस पे न ध्यान दे कभी कोई, ऐसा किरदार हो गया हूं मैं, जिस पे न ध्यान दे कभी कोई, ऐसा किरदार हो गया हूं मैं। और अच्छा होता कि बचपना रहता, क्यों समझदार हो गया हूं मैं। और शेर देखें कि सबसे पहले मुझे हो तेरी खबर, इतना हकदार हो गया हूं मैं। और सुबह होते ही तेरे दर पे हूं, जैसे अखबार हो गया हूं मैं। बहुत शुक्रिया।
1: तो ये थे हमारे साथी आदित्य मौर्य, अपने भाव इन्होंने हमारे साथ साझा किए। मैं अंतर्मुखी होकर कविता में अपने को एक वाक्य देता हूँ कि चलो निकलो। इस वाक्य में बाहर लिखना भूल जाता हूँ, इसलिए अपने अंदर और निकल जाता हूँ। तो अंतर मन के जो भाव हैं वो हमारे साथी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मंच पर इस समय हमारे साथ हैं रश्मि सिंह। आइए रश्मि सिंह को सुनते हैं, क्या भाव हमारे साथ साझा करना चाहती हैं।
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर रही हूँ और द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। कविता की शुरुआत करूंगी जिसका शीर्षक होगा आज मौसम गुमशुदा है। मैं सुर्खियाँ बटोरती हूँ शाम की बहार से, तलाशती हूँ मैं सुकून अब लाले माँ की धार से। बेरंग काल अंत में जो रंग सिसकियाँ लिए, बेईमान ओस है ढके अब धुंध के सवार से। कुछ शरारते छिपी हुई है इस कदर कि जान कर भी भूल जाती हूँ मैं सार से। और अगर जान भी गई तो क्या हुआ कोई गिला, कहीं बैठ कर कभी तो कहो इस्तिरार से। ये ख्वाब सांझ है सिलसिलों से है रिहा, ये ख्वाब सांझ है सिलसिलों से है रिहा, जो धूप तेज में खिले उसके दीदार से। मैं लफ्ज कहकर कर रही हूँ कुफ्ल ए खामोश, मैं लफ्ज कहकर कर रही हूँ कुफ्ल ए खामोश, खुद ही खुदी को बुन रही अपने उदार से। मुस्तकिल रहे लिखे हुए अनेक नज्म, अफसाने कहे हर कवि शौके विस्तार से। है लाजमी शामों के ढलते रंग में लिखना, जब हो मुकम्मल चाय भी लिखने के भार से। सैलाब आता है अनेक शब्दों को लेकर, थरकता नाचता फिर है बहारों के प्रहार से। क्या समझा क्या जाना है मैंने सुरमे की रंगत को, हुआ जो आज मौसम गुमशुदा गालिब खुमार से। जमाने भर की मीठी कागजी हैं स्वांग हसरतें, जो उमड़ी हैं आज खूब जोर मौसम गुहार से। मैं खुद को थाम थाम देख कर महसूस करती हूँ, ये सांझ मुझको सांवरा कहती निखार से। और अंतिम पंक्तियां हैं कि तलाश काफी ये की कभी की ना हमने थी, पर हार गए आज हम मौसम की मार से। ख्याल में जिसे कभी आवारा जाना था, मेरी कलम से उतरा है वो बेबहार से। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: युवा लेखन श्रृंखला का यह आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चल रहा है कुछ कहता है दिल। अब मंच पर आप सभी के समक्ष गौरव त्रिवेदी।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्रिवेदी दिल्ली से आप तक अपने चंद अशार पहुंचाने आया हूं। मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूं। हमारे दरमियां शिकवा गिला होने से पहले थे, बहुत ही खुश थे हम लेकिन जुदा होने से पहले थे। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है इसको मत मना करना, वही बन जाओ तुम जो बेवफा होने से पहले थे। बहुत शुक्रिया। मुक्तक है कि कोई बतलाए काश ये तुमको, उम्र गुजरी है सोचते तुमको, एक लड़का तमाम दुनिया में खो गया ढूंढते हुए तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक शेर और देखें। एक लत लगी हुई थी मुझे लत नहीं रही, ये क्यों कहूं कि मुझको मोहब्बत नहीं रही। मुझको किसी के साथ ने ऐसा सबक दिया, मुझको किसी के साथ की आदत नहीं रही। बहुत शुक्रिया। बहुत
1: बहुत ही संतुलित शब्दों में बहुत सारी

0: शिकायतें जो हैं गौरव त्रिवेदी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पहुंचाई हैं कहीं किसी खास तक और हम सब उसके साक्षी बने हैं। मैं मंच पर अब आमंत्रित कर रही हूं निखिल कौशिक को। निखिल
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम निखिल कौशिक है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। कविता जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ उसका शीर्षक है खोज, और ये हम सभी के बारे में है क्योंकि हम सभी दोहरी जिंदगी जीते हैं। हम सभी के अंदर दो शख्स हैं, एक वो शख्स है जो हम अपने जीवन में कभी ना कभी बनना चाहते थे और एक वो शख्स है जो हमारी वास्तविकता है। असल में कामयाब वही शख्स है जिसके ये दोनों शख्स एक ही हैं। अगर ये आपके दोनों शख्स जुदा हैं तो आप अपना सारा जीवन अपनी ही खोज में बिताते हैं। तो उसी के बारे में ये शांत रही महफिल में एक आवाज है जो गूंज रही है, ये दिल में छुपी हुई मेरे कोई बात ढूंढ रही है। वो आईने में दिखाई दे रहा शख्स कुछ जाना पहचाना सा तो है पर वो मैं नहीं हूं। सांस लेता शरीर तो साथ है यहां मगर जिसे जीना था वो मैं और कहीं हूं। मैं हूं या तुम हो चाहे हो ये सारा जमाना हम सब कहीं ना कहीं खाली है। खालिस सा बाकी कुछ है नहीं हम में, अब जो दिखता है वो थोड़ा जाली है। जीना वैसे जैसे हमको जीना था फिर भूलना और वैसे जीना जिसमें जीने जैसा है नहीं। बैठेंगे और सोचेंगे किसी दिन ये सवाल करेंगे खुद से ये सब कुछ कुछ वैसा है नहीं। वो छोटा सा बच्चा जो मैं कभी था उससे मैंने कुछ वादे दिए थे, बड़े होके ऐसा बनना है कुछ बड़ा करना है, मैंने उससे ऐसे इरादे किए थे। मिलना तू मुझे बड़े होके देखना ये बचपन मिसाल बन जाएगा, ये जो ताने लोगों के संभाल के रखना ये दिन एक दिन बवाल बन जाएगा। अब खोज रहा है वो छोटा बच्चा उस नए अपने रूप को, हूं सामने मैं खड़ा पर नहीं जानता वो अपने स्वरूप को। कैसे जानेगा वो मुझे इस उलझे से हाल में, इतना बदल चुका हूं मैं न जाने इतने साल में। खोज तो मैं भी रहा हूं बहुत कुछ जो पीछे छूट चुका है, कच्चे धागों से बंधा विश्वास मेरा जो अब टूट चुका है। खोज रहा हूं वो अपनी मासूमियत जब मैं हंसना जानता था, है खोज उस सपने की भी जो मुझ में बसना जानता था। आज जब मैं खुद के उस छोटे से रूप को देखता हूं ना तो मुझे उस पे तरस आता है। क्या सोच के बोला होगा वो सारी बातें, वो गुस्सा खुद पे बरस जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं कि कहां खोया हूं मैं, बस ये रास आता है ऐसे रुसवाई के लिए। पर ना जाने जंजीरें डर की कितनी तोड़नी होगी खुद ही की रिहाई के लिए। खोज रहा हूं खुद को ही, कहीं तो मिल जाऊं, वक्त चुराती दुनिया में कहीं खुद को भी तो पाऊं। पर सोचता हूं जब मिलेगा वो तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा, जो वादा किया था बरसों पहले उसे वो कैसे दिलाऊंगा। वो सोच वो जज्बा वो गायब हो रहा है, वो आग वो जुनून क्यों थम सा गया है। वो चाहत कुछ बनने की दुनिया बदलने की, वो हंसी वो सुकून अब क्यों गम बन गया है। पूछना है खुद से भी क्या वो जो मैं हूं और जो होना चाहता हूं कभी एक हो पाएंगे। कांटों सी राहों से गुजरे हम, लिए वो इरादे कुछ करने के कभी रंग लाएंगे। एक हकीकत है यही कि खोज जारी है मेरी भी और तुम्हारी भी। मिले तो भूलना मत कि ये जरूरी सफर था, एक दौर ये भी था। एक हकीकत ये भी है कि ढूंढा जिसे जमाने में वो आखिर खुद में ही मिलेगा, पर सवाल है कि राहें सीधी थी या जिंदगी का एक मोड़ ये भी था। धन्यवाद।
0: ये थे निखिल कौशिक अपनी रचना के साथ। मनोभावों की निर्मल धारा इस समय हमारे स्टूडियो में है। कार्यक्रम चल रहा है कुछ कहता है दिल, युवा लेखन श्रृंखला है और अब मंच पर आप सभी के समक्ष है अनुष्का पांडे। तो आइए सुनते हैं अनुष्का क्या हमसे साझा करना चाहती हैं।
2: नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे हिंदी पत्रकारिता मास्टर्स दिल्ली विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। गंगा से प्रेरित होकर मैंने एक श्रृंखला बस शैली में कविता लिखी है जिसको मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। गंगा माँ है, गंगा माँ है, बहुत गहरा नाता है इसका मेरी माँ की माँ से। ना जाने कितनी माँओं से कितने कितने दुख हरे हैं इसने, गहरी होती गई दुखों से। दुखी है गंगा इन दिनों, अब कोई उसके तिरे दुख नहीं धोता। फेंकता है अपने विकास का कचरा, एक नदी यह कभी नहीं सह सकती। इसलिए तोड़ रही है गंगा इन दिनों तुम्हारे सारे तटबंध, इसलिए तोड़ रही है गंगा इन दिनों तुम्हारे सारे तटबंध। धन्यवाद।

0: नदी एक लेकिन स्वरूप अनेक और उनके भाव जो हैं वो अनुष्का ने हम तक पहुंचाए अपनी रचना के माध्यम से। अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूं नव नित्य विनायक को, करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे।
1: नवरण्य निज नव दर्प साध यह उद्घोष करने आया हूँ, नवनित्य हूँ मैं, प्राणों की चेतना जगाने आया हूँ। विद्वंश वृद्ध विजय ध्वज लिए आरण्य त्याग में आया हूँ, विजय हो स्वाभिमान युक्त विनायक तब कहलाया हूँ। नमस्कार, मैं नवनित्य विनायक। तो आज मैं आप सभी का परिचय किसी से कराने आया हूँ। अगर आप मेरी पंक्तियों से उनसे परिचित हो पाए तो अपनी करतल ध्वनि से मुझे बताइएगा। कहना है, तेज अतुल्य है उनमें जो मानो सूर्यों का योग हो, कौन टिके क्षण भर को भी, मिलते ढाल कहां रवि को, बाणों की हवर्षा देख, देखूं क्या मैं उसकी छवि को, मृग नैनी के नैनों को देख, देखूं क्या मैं किसी रवि को, सूर्य का ताप स्वाभिमान की प्रेरणा, निश्चय का निश्चित स्रोत हो, कौन करे बखान उन नैनों की घायल जिनसे स्वयं रवि हो। तो मैं बात कर रहा हूँ भारतीय नारियों की। अब उनके नेत्रों से चलते हैं उनके भ्रिकुटी और भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान उनके बिंदी की ओर। कहना है कि भ्रिकुटी भीषण नाद निज श्रृंगार सज्जित साज देख, मध्य मस्तक मध्य नयन निज नीर ऊर्जा प्रवाह देख, रक्त रंजित रक्त आंशिक रक्त रंग प्रभाव देख, बिंदुकित बिंदुक बिंदी से सुशोभित ये ललाट देख, कनक कुंडल कर्ण निज निज कंठ कंठिका माल देख, त्रिलोचन त्रिनेत्र त्रैगुण साधती ये कमान देख, त्रिलोचन त्रिनेत्र त्रैगुण साधती ये कमान देख। परंतु विडंबना यही आती है, ऐसा क्या हो जाता है कि जब इतनी तेज नेत्र वाली हमारी भारतीय नारियों के समक्ष कोई विधर्मी आए तो वो निरस्त्र खड़ी हो जाती हैं। तो उनके अंदर विराजमान माँ दुर्गा को जागृत करते हुए मैंने लिखा कि धारिये तलवार की नैनों में तुम जो थामे हो, बातों में कटार जैसे कमान के वो बाण हो, कलाई में कंगन हो तो क्या, मुष्ठी में तो तलवार हो, जैसे आभूषण संग शक्ति के गले में मुंडमाल हो, उठा खड़ग शूल अब नारी तो सिंह सवार हो, प्रतीक्षा में कलकी के क्यों प्रतिशोध शर्म शार हो, उठती नजर तुझ पे है जो उनसे अब रक्त प्रवाह हो, जो हाथ पल्लू पर पड़े अब धर से वो किनार हो, ज्ञात हो उस नारी को जिसने उन्हें है जन्म दिया, संहार है कर्तव्य अगर संतान ही शैतान हो, कृष्ण हुए प्रकट तो क्या कंश भी तो जन्म है, निश्चित नहीं विश्व में कि हर कोख में भगवान हो, निर्भया तो भयभीत हुई नहीं तुम मोम क्यों गवा रहे, माँ भारती की संतान तुम ये वक्त क्यों लुटा रहे, वो जंघा पीट हंस रहे कितनी द्रौपदी कुर्बान हो, सारथी तुम्हारे श्री कृष्ण है, अब युद्ध की ललकार हो। अपनी पंक्तियों को विराम देते हुए मैं चार पंक्तियों से आपसे विदा लूंगा कि पृथक माटी की ये खुशबू मैं पग में बांध फिरता हूं, हिंदी हिंद की गाथा कलम से शान लिखता हूं, जो भूले हैं जो बिसरे हैं तिमर को लांग नहीं सकते, मैं उनकी जख्म निशानी को यूं सरयाम लिखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सुंदर भावों के साथ शब्द चित्र हमें सौंपे नवनित्य विनायक ने। ये हमारे सभी साथी थे अपनी अपनी रचनाओं के साथ, और अपने मनोभाव आपने हमारे साथ साझा किए, अपने देश को, परिस्थिति को, अपने परिवेश को किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या रचते हैं, वो सब जानकर आज हमें बहुत अच्छा लगा। और यही उद्देश्य है आकाशवाणी का, ये प्रतिष्ठित मंच आप सभी को उपलब्ध करवाने के पीछे, कि आपकी लेखनी जो है वो प्रोत्साहन पाती रहे, आप इसी तरह से सजग रहें, सचेत रहें, आसपास जो देखते हैं उसे रचते रहें, अपने लक्ष्य को इसी तरह से साधते रहिए, लिखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। यही सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूं कि अपनी झिझक जो है थोड़ी देर के लिए उसे कहीं साइड में रख दीजिए, और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आपका स्वागत है, आप इसी तरह से

कुछ कहता है दिल में आ सकते हैं अपनी प्रस्तुति के लिए, जैसे आज हमारे ये युवा साथी आए। सभी का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मुझे यानी नीलम मलकानिया को भी दीजिए अनुमति।

0: कहता है दिल।
1: धन्यवाद।
0: कुछ कहता है दिल।
2: अभी आप विगत 30 अप्रैल को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश सुन रहे थे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तलत। आज सोचा क्यों ना आपको एक बहुत पुरानी फिल्म का, ज्यादा पुरानी भी नहीं लेकिन हाँ कुछ पुरानी फिल्म का एक सुपरहिट गाना सुनाऊं। तो सुनते ही अच्छा सा गीत जिसे गाया है SP बाला सुब्रमण्यम ने।

कुछ गाने पुराने होकर भी बिल्कुल लगता है कि अरे वाह, ये वाला गाना तो बहुत जमाने बाद सुना है, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। ऐसी याद मेरी भी ताज़ा हो गई ये वाला गीत सुनकर। उम्मीद है कि अब जो आप अगला गीत सुनेंगे ए आर रहमान की आवाज़ में, उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा।

खलबली अब ये भी है कि वक्त हो चला है आपसे विदाई का, और खलबली अब ये भी है कि गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बच्चे परेशान हैं, कहाँ जाएं, यहाँ जाएं या वहां जाएं, और घूमना तो बहुत जरूरी है। तो सोचा क्यों ना आपको ये गीत सुनवा दूं और आपकी कुछ परेशानी हल हो जाए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर और अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हेमंत

0: बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

पेश भी आप सुनेंगे। सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब 12:30 पर नशर किया जाएगा। 12:50 पर एक बार फिर आप खबरें सुन सकेंगे और रात 1 बजे उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर होगी। सामिन, ये था हमारे यहाँ से आज रात 1 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लीजामिन पेश है गैर फिल्मी गजलों पर मुबनी प्रोग्राम एक फनकार ताज अहमद की गाई गजलें आप समाप्त करने वाले हैं।

0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामिन नमस्कार, 45 मिनट हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। उन्होंने मगरबी एशिया तनाज़े के मनफी असरात को कम करने के लिए दरामदशुदा पेट्रोलियम मसनूआत के किफायती इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निपटने की मुल्क की तैयारी से मुतालिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीनी वज़ीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ़्ज़ान सेहत और आयुर्वेद के शोबों में 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे और सनअत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों का मजमूई मकसद रियासत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना, रोजगार के मौके पैदा करना, लॉजिस्टिक्स की इस्तेदाद में इजाफा करना, हिफाजत में इजाफा करना और लोगों को सफर में बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस्तेमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत मरकज की तरफ से किए गए इकदाम की वजह से मगरबी एशिया की महाजराई से उभरने वाले तवानाई के बहरान से मौसर तौर पर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन के इस्तेमाल में जिस तहमुल से काम लिया गया है वह वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरामद की गई पेट्रोलियम मसनूआत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे गैर मुल्की जर मुबादला की बचत और जारी महाजराई के मनफी असरात को कम करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वह तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा। आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इक्तिसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए जब कपड़े की सनअतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिन सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मौसर तौर पर निपटा जा सके। वज़ीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में 2 किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निजाम से होता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का यह यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इन आवाजों को यकीनन सुनेंगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वज़रा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने जनभवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज़ एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ

0: जो है बाहर जाए, स्मोकलेस चूल्हा जो कहते हैं, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो खाने बनाने का जो किचन है वो खुला रहे, क्रॉस वेंटिलेशन हो या उसमें एग्जॉस्ट फैन हो जिससे धूल धुआं ना रहे, वो महिलाओं को भी फायदा होगा और जो बच्चे वहां पे अंदर खेल रहे हैं उसको भी, उनको भी फायदा होगा। तो एक्सपोजर अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें और धूम्रपान बिल्कुल ना करें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामीन को बहुत अहम मालूमात दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मेरी तरफ से भी शुक्रिया।
2: सामीन आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शुरुआत। सामीन पेश है प्रोग्राम खवातीन का मुशायरा।
3: आज महफिल मुशायरे में जो शायरात मौजूद हैं उनके नाम हैं मोहतरमा नूरजहां सरवत साहिबा, डॉक्टर इफ्फत जर्री, मैडम सुनीता रैना और मैं शबाना नज़ीर। तो आगाज करते हैं आज के मुशायरे का और मैं सबसे पहले ज़हमत सुखन दे रही हूं मोहतरमा सुनीता रैना साहिबा को। जी,
4: गज़ल का मतलब पेश खदमत है
3: इरशाद अली
4: और मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी शेर अगर आपको पसंद आए, कहीं आपके दिलों को छू जाए तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा
3: इंशाल्लाह।

0: अपना बनाना चाहता है।
1: मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छा मतलब।
0: मुझे अपना
2: न जाने क्या जमाना चाहता है,
1: मुझे अपना बनाना चाहता है।
0: न जाने क्या जमाना चाहता है,
1: मुझे अपना बनाना चाहता है,
0: बनाना चाहता है।
3: और ये शेर
0: मैं उसके दिल में बसना चाहती हूँ,
1: मैं उसके दिल में बसना चाहती हूँ,
0: मैं उसके दिल में बसना चाहती हूँ, वो नजरों से
1: गिराना
2: चाहता,
0: वो नजरों से
1: गिराना चाहता
0: है।
3: और खास तौर से ये शेर पेश खदमत है।
0: वो जाने क्यों उजालों की हकीकत,
1: वो जाने क्यों उजालों की हकीकत

0: में
1: चुराना
0: अच्छा
1: क्या बात है,
0: है।
1: अच्छा भाई अच्छा है।
0: अंधेरे में बताना चाहता है। और ये मकतब जिसे मैं चाहती हूँ भूल जाऊं,
2: जिसे मैं चाहती हूँ भूल जाऊं,
0: जिसे मैं चाहती हूँ भूल जाऊं, वही किस्सा सुनाना
1: चाहता है। ये बहुत शेर है भाई,
2: बहुत बता। किस्सा सुनाना चाहता है,
0: वही किस्सा
1: सुनाना। पूरा शेर
2: बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश।
0: जिसे मैं चाहती हूँ

0: बहुत उम्दा सुनीता रहना साहिबा,
1: बनाना चाहता है।
0: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सुनीता रहना साहिबा, इतना खूबसूरत तरन्नुम और इतना उम्दा कलाम, तो एक गजल से तो काम नहीं चलेगा। गुजारिश है कि एक गजल और इनायत फरमाए।
1: जी, गजल का मतलब
0: इरशाद।
1: कोई दो कदम साथ चलता नहीं है,
0: कोई दो कदम साथ चलता नहीं,
1: कोई

और ये शेर खास तौर से मेरा पसंदीदा शेर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस शेर को पसंद करेंगे और शायद सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं ये शेर जरूर ताल्लुक रखता है।

0: और ये एक और शेर इस गजल का, हासले गजल शेर मैं कह सकती हूँ। तमाशा तमाशा हुए हम तमाशा,
1: तमाशा तमाशा हुए।

0: फिर भी
1: महलता नहीं,
0: महलता नहीं है ये दिल है कि फिर भी महलता नहीं
2: है,
0: महलता नहीं है, महलता नहीं।
1: और शेर देखिए,
0: बला की तपिश है समाने में, लेकिन
1: बला की तपिश है।

0: बड़ा इलाकाई शेर का है आपने ये।
1: बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल का मुक्ता पेश खदमत है। वफा का ये दीपक वो दीपक है रहना।
2: दीपक वफा का वो दीपक।

0: होता नहीं।
1: बहुत उम्दा बहुत उम्दा, सुनीता रैना साहिबा
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आपने सुनीता रैना साहिबा से उनका कलाम बहुत खूबसूरत तरन्नुम के साथ सुना, और आज की हमारी नाज़िम मुशायरा मोहतरमा डॉक्टर शबाना नज़ीर अब अपना कलाम पेश करेंगी। डॉक्टर शबाना नज़ीर कोई नया नाम नहीं है अदब में, नसर में नज्म में दोनों में उनका एक खास मकाम है, और जिसे कहते हैं कि ई खाना तमाम आफ्ताबस्त। तो रिफा सरोज साहब की ये बड़ी साहबजादी हैं, और उनकी सारी सिफात इनकी शायरी इनकी नसर इनके वजूद इनकी शख्सियत में मौजूद मिलती हैं, हमें पाई जाती हैं। हालांकि आज रिफा साहब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन जब हम शबाना नज़ीर को देखते हैं इनसे मिलते हैं जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम रिफत साहब से मुखातिब हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपना कलाम आपके सामने पेश करें।
1: शुक्रिया बहुत बहुत मुझे यहाँ पर गजल पेशे खिदमत है। जब तक सांस का आना जाना जारी है,
3: जब तक सांस का आना जाना जारी है
1: सब रिश्ते नाते हैं दुनियादारी है। जब तक सांस का आना जाना जारी है सब रिश्ते नाते हैं दुनियादारी है। दिल में कैसी रौनक है इन जख्मों से, दिल में कैसी रौनक है इन जख्मों से, फूल खिले हैं ताजा बादे बहारी है। दिल में कैसी रौनक है इन जख्मों से,
3: फूल खिले हैं ताजा
1: बादे बहारी है।
2: वाह,
1: कुदरत के तेवर हैं कुछ बदले बदले।
2: क्या बात है भाई,
1: कुदरत के तेवर हैं कुछ बदले बदले, दुनिया पर ये रात बहुत ही भारी है। कुदरत के तेवर हैं कुछ बदले बदले, दुनिया पे ये रात बहुत ही भारी है। मौत की यूरिश हर लम्हा हर गोशे से, मौत की यूरिश हर लम्हा हर गोशे से, इस आलम में जीना भी फनकारी है।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: मौत की यूरिश हर लम्हा हर गोशे से,
2: क्या बात है,
1: इस आलम में जीना भी फनकारी है। शेर मुलाज़ा फरमाए, अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया, अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया, ऐसी भी क्या दुनिया से बेजारी है।
3: अच्छा, ऐसी भी क्या दुनिया,
1: अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया, ऐसी भी क्या दुनिया से बेजारी है।
2: क्या बात है,
1: जब तक सांस का आना जाना जारी है सब रिश्ते नाते हैं दुनियादारी है।
2: वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया शुक्रिया बेहद।
2: भाई अभी तसल्ली नहीं हुई हमारी,
1: इजाजत हो तो एक
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल इजाजत नहीं, आपको सुनानी पड़ेगी गजल और
1: इंशाल्लाह पेश खिदमत है
2: जी।
1: ये उदास उदास थका थका ये बुझा बुझा कोई और है।
2: वाह,
1: ये उदास उदास थका थका ये बुझा बुझा कोई और है, वो नकीब सुबह बहार है मेरा रहनुमा कोई और है।
2: क्या बात है,
1: ये उदास उदास थका थका ये बुझा बुझा कोई और है, वो नकीब सुबह बहार है मेरा रहनुमा कोई और है।
2: क्या बात है,
1: वहाँ तफरके हैं कदम कदम नहीं आदमी का कोई भरम।
2: क्या बात है,
1: ये मकाम अहले खिरत का है मेरा रास्ता कोई और है।
2: भाई अच्छा कहा है भाई, बहुत अच्छा कहा, लगे इस जमीन में बहुत लोगों ने तवाज़माई की है, लेकिन इस शेर को मुकर्रर इरशाद फरमाया आप।
1: वहाँ तफरके हैं कदम कदम नहीं आदमी का कोई भरम, ये मकाम अहले खिरत का है मेरा रास्ता कोई और है। न वो शेख है न वो बरहमन, न वो रिंद है न वो मोहतसिब।
2: वाह,
1: न वो शेख है न वो बरहमन, न वो रिंद है न वो मोहतसिब, मेरा हम कदम कोई और है मेरा हम नवा कोई और है। न वो शेख है न वो बरहमन, न वो रिंद है न वो मोहतसिब, मेरा हम कदम कोई और है मेरा हम नवा कोई और है।
2: क्या बात है, बहुत उम्दा।
1: मेरे हम कलम मेरे हम सुखन मेरे हम जबा मेरे साथ हैं।
2: वाह,
1: मेरे हम कलम मेरे हम सुखन मेरे हम जबा मेरे साथ हैं, नहीं अहले जर से मुझे गरज میرا قافلہ کوئی میرے ہم قلم میرے ہم سخن میرے ہم زبان میرے ساتھ ہیں, نہیں اہل زر سے مجھے غرض میرا قافلہ کوئی اور ہے,
2: نہیں اہل زر سے مجھے غرض آئے
1: میرا قافلہ کوئی اور ہے, وہ خدا ہے مالک دو جہاں جو طلب کروں تو اسی سے میں.
2: کیا بات ہے,
1: وہ خدا ہے مالک دو جہاں جو طلب کروں تو اسی سے میں, نہ جھکاؤں سر کو یہاں وہاں میرا سلسلہ کوئی اور ہے. وہ خدا ہے مالک دو جہاں, وہ خدا ہے مالک دو جہاں جو طلب کروں تو اسی سے میں, نہ جھکاؤں سر کو یہاں وہاں میرا سلسلہ کوئی اور ہے.
2: کیا بات,
1: یہ اداس اداس تھکا تھکا یہ بجھا بجھا کوئی اور ہے, وہ نقیب صبح بہار ہے میرا رہنما کوئی اور ہے. شکریہ شکریہ,
3: بہت خوبصورت غزل سنائی شبانہ,
1: شکریہ بہت بہت. اور اب میں زحمت سخن دے رہی ہوں ڈاکٹر عفت زرعی صاحبہ کو, جو کہ ایک جانا مانا نام ہے اردو شاعری میں, اور بہت ہی عمدہ کلام کہتی ہیں اور بہت عمدہ ان کا طرز بیان ہے. ترنم سے پیش کریں گے اپنا کلام.
3: سماعت فرمائیں
1: عفت زرعی صاحبہ.
3: چند شیر پہلے سماعت فرما لیجیے, بالکل تازہ. محبت میں جنوں کی آزمائش کون کرتا ہے, محبت میں جنوں کی آزمائش کون کرتا ہے, کھنڈر ہو دل تو پھر اس میں رہائش کون کرتا ہے.
2: کیا بات ہے,
3: کھنڈر ہو دل تو پھر اس میں رہائش کون کرتا ہے. یہ کوئی بات کے آنسو نکل پڑتے ہیں پل پل میں, یہ کوئی بات کے آنسو نکل پڑتے ہیں پل پل میں, بھلا یوں دل کے زخموں کی نمائش کون کرتا ہے, بھلا یوں دل کے زخموں کی نمائش کون کرتا ہے. اور شیر سماعت فرمائیں, میرا ہر لفظ کہتا ہے کہانی بیتے موسم کی, میرا ہر لفظ کہتا ہے کہانی بیتے موسم کی,
2: کیا بات ہے,
3: مگر پانی کے لفظوں کی ستائش کون کرتا ہے.
2: کیا بات,
3: مگر پانی کے لفظوں کی ستائش کون کرتا ہے. حکم آئے کہ ترنم سے تو سماعت فرمائیں.
1: ارشاد,
3: لفظ لفظ بکھری ہے زندگی کتابوں میں,

0: क्या
1: मॉरिशियस
0: वल्ला मतलब ही बहुत शानदार
1: ये मामूले देखे किसको रास आते हैं
2: ये मामले दिल के किसको रास आते
1: हैं ये मा

0: खुद को इन हिसाबों में
1: क्या बात
0: आज कौन डाले है, खुद को इन हिसाबों में। और ये शेर खास तौर से समझ पाए।
1: अच्छा,
0: मेरे दिल की हालत को आईने से मत पूछो।
1: वाह,
0: मेरे दिल की हालत को
1: आईने से मत पूछो। वाह।

0: क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत।
1: मेरे घर के कमरों में
0: खुशबू।

0: कुछ किताबों
1: मेरी कुछ किताबों में
0: और मक्ता समाज फरमाए
1: इशारा मुद्दते हुई जरूरी
0: जी।

0: मेरे घर के कमरों में, मेरे घर के कमरों में खुशबुओं का डेरा है,
1: खुशबू का डेरा बहुत अच्छा इस्तेमाल है।
0: मेरी कुछ किताबों में
2: फूल रखना जो है ना वो है,
0: लफ्ज लफ्ज बिखरी है जिंदगी।

0: किधर देखे,
1: किधर देखे, किधर देखे।
0: वाह वाह
1: क्या बोलता,
0: बिल्कुल गजल ही ऐसी है सैले मुमता ना।
2: अपनी अपनी पढ़िए यहाँ सबको, किस पे डाले नजर किधर देखें, और शबे गम तो गुजार दी हमने।
0: वाह वाह, शबे गम तो गुजार दी हमने,
2: शबे गम तो गुजार दी हमने, अब खुशी की नई सहर देखे।
0: वाह वाह वाह,
2: शबे गम तो गुजार दी हमने, अब खुशी की नई सहर देखें।
0: देखेगा जवाब,
1: बिल्कुल।
2: चांद भी तीरगी में डूब गया।
0: वाह वाह, चांद भी
1: तीरगी में डूब गया,
2: चांद भी तीरगी में डूब गया, कौन हो अपना हम सफर देखें।
0: वाह वाह,
2: और अर्ज किया है कि लम्स ममनू है निगाहों का,
0: लम्स ममनू है निगाहों का,
2: लम्स ममनू है निगाहों का, कैसे आईने का शजर देखें।
1: कितना खूबसूरत, कितना नाजुक शेर, मुकर्रर
0: आईने का, बिल्कुल नई मिसाल।
2: लम्स ममनू है निगाहों का,
1: लम्स ममनू है निगाहों का,
2: कैसे आईने का शजर देखें। और जो मुझे पसंद है शेर, मैं वो पेश करती हूँ कि जिसमें अपना भी इंतजार ना हो,
0: जिसमें अपना भी इंतजार ना हो,
2: जिसमें अपना भी इंतजार ना हो, ये हस्ब हाल भी है, जिसमें अपना भी इंतजार ना हो, क्यों ना ऐसा ही कोई घर देखे।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, जिसमें अपना भी इंतजार,
2: जिसमें अपना भी,
1: जिसमें अपना भी इंतजार ना हो,
0: वाह वाह वाह,
2: क्यों ना ऐसा ही कोई घर देखे। मकता है
1: इरशाद
2: कि अपने ही अक्स के सिवा सरबत,
0: अपने ही अक्स के सिवा सरबत,
2: क्या नजर आएगा।
0: बहुत अच्छे दोनों शेर, लाजवाब।
2: अपने ही अक्स के सिवा सरबत, क्या नजर आएगा अगर देखें, और जिसमें अपना भी इंतजार ना हो,
1: बहुत
0: बहुत बहुत शेर,
2: क्यों ना ऐसा ही कोई घर देखे।
0: बहुत अच्छा,
1: बहुत बहुत बहुत सरबत। आप गुजारिश है कि एक गजल और अता फरमाए,
2: पेश करती हूँ। हालांकि वो जो मकते से पहले वाला शेर था उसने मुझे छील दिया था,
1: हाँ, वो
2: मगर
1: तो
2: फिर भी कि जीने की खातिर हमने भी क्या क्या सॉन्ग रचे हैं,
1: जीने के खातिर हमने भी क्या क्या सॉन्ग रचे हैं,
2: धूप की चादर ओढ़ी है और नंगे पांव चले हैं।
0: वाह वाह, धूप की चादर ओढ़ी है और नंगे पांव चले हैं,
2: आज अगर खुशहाल हैं तो क्या तुमने कभी ये सोचा है,
0: आज अगर खुशहाल है,
2: आज अगर खुशहाल है तो
0: क्या
2: तुमने कभी ये सोचा है, कब कब भूखे सोए हैं और कितनी बार मरे हैं।
1: वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नूरजहां सरबत साहिबा, कितना खूबसूरत हम कलाम सुन रहे थे, लेकिन बेहद मजबूरी हमारे यहाँ पर हो जाती है, वक्त की घड़ी की सुई लगातार चलती जा रही है, और हम इसी के साथ आज की हमारी महफिल मुशायरे इख्तिताम पसीर होती है। शुक्रिया,
0: बहुत अच्छा शेर, ताज़ा हो गया,
1: सुना तो दीजिए पूरी
0: रूह ताज़ी हो गई।
3: सामिन, आप सुन रहे थे ख्वातीन का मुशायरा, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: Vậy vậy vậy vậy vậy.
1: सामीन, जबक फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगाह प्रेम धवन और मौसीकी तरतीब भी थी चित्र गुप्त ने। फरमाइश हमें मौसूल हुई थी आप सबकी। फरमाइश इसराल करने वालों के नाम इस तरह है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंद शहर से ये फरमाइश हमें इस साल करते हैं। ये फरमाइश किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी वर्षा सुमन की मौसूल हुई है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा।

स्वामी आइए, आपको सुनवाते हैं प्रोफेसर, फिल्म का ये दुकान है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार शैलेंद्र और मौसीकी तरतीब दी है शंकर जयकिशन ने। फरमाइश हमें इस तरह से मौसूल हुई, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। और समीन और भी फरमाइशें हमें मौसूल हुई हैं, उनके नाम आपको बताते चलते हैं। जी, सब्जी मंडी बुल्ढाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, लक्ष्मण झंझुरके, रोहिणी झंझुरके और ज्ञानेश्वरी अनिकेत झंझुरके, नवरंग मार्केट शेगांव महाराष्ट्र से ये फरमाइश मौसूल हुई। सबिया खानम, फरीदा बानो, रई

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वुजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वुजराए ममलकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबिनी वजीर आजादाना चार्ज के का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने जनभवन लखनऊ में आज नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वुजरा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वुजरा की तादाद 60 हो गई है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत, बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के 2 रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजीर खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजारत खारजा और कैरिकाम उमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लैस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नीलसन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तजदीद करने के मकसद से किए गए। डॉ जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेद माजदे से लैस ट्रक पर फायरिंग की जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इन शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाईकोर्ट ने एक सीनियर वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण जोत के तर्जुमान चिन्मॉय कृष्णादास ब्रह्मचारी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दीगर 4 दरख्वास्तों पर अपने अहकाम महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टोग्राम अदालत के इहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की हलाकत से है जब चिन्मॉय पुलिस हिरासत में थे। चिन्मॉय कृष्णदास ब्रह्मचारी इस्कॉन के एक साबिक सरबराह हैं। वो मुल्क के खिलाफ बगावत के एक केस में नवंबर 2024 में ढाका हवाई अड्डे पर अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद वाली अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की। सिंगापुर में इस हफ्ते के आखिर में एक सकाफती मेले के दौरान प्रोग्राम पेश करने वालों को आम की खसूसी पेटियां इनाम के तौर पर दी गईं। भारत ने समाजी तकरीबात के जरिए आम की दरामदाद को फरोग देने की कोशिशें शुरू की हैं। इसके तहत शुमाल मशरकी सिंगापुर के निसोन पब्लिक हाउसिंग स्टेट में मुनक्किदा थ्रेड्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के आम को गानों, रक्स और मसूकी के प्रोग्रामों के लिए इनाम के तौर पर पेश किया गया। सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आम की तशहीर के लिए इस महीने मुनक्किद की गई ये दूसरी तकरीब थी। शूटिंग में भारतीय जोड़ी नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता है। इसके साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अलमाटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़। दाखिला अमित शाह ने इमकानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतालिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलकत को शामिल किया है। इसी के साथ खबरें का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात निजामी पेश फरमाइश फिल्मी लगभग पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद के बाकी नगमे हैं।

समय में अनुपमा फिल्म का नगमा आशा भोसले का गाया हुआ, नगमानिगार कैफी आजमी, मौसिकार हेमंत कुमार, फरमाइश छत्तीसगढ़ पल्लारी से मौसूल हुई प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा की। इसके अलावा और भी फरमाइशें हमारे पास मौसूल हैं, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से, उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोबाल, कमलरानी, भानु प्रकाश। और ये फरमाइश स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक इनके साथ हैं। ये फरमाइश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहौकर, निर्मया नाहौकर, विशाल नाहौकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष इनके साथ हैं। कल्पना मदन झा, मानव और मयंक, निर्मला अपार्टमेंट, भिलाड़, वापी, गुजरात से फरमाइश इनकी मौसूल हुई है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जावड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, गांव नथाना पंजाब से अर्जुन चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता, अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलवारी और वैदिका फूलमाली, गंजड़वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज, बेगम रानाज, नवाज़ शेख और इनके साथ इनके कुछ दोस्त और अहबाब भी हैं। एक ही जहाजी दुर्गा प्रसाद सैनी जी, राजेश सांबले पाटिल जी, रेडियो की आवाज ग्रुप मधुबनी बिहार से ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं। साहिल कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, अंकित कांगड़ा हरियाणा से, और सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, प्रभुदास कोटेजा, हंसबेन कोटेजा और आशीष कोटेजा, जिंस प्लॉट राजकोट से, प्रणतालाब डुमराव से, वरील अंसारी, अस्मान अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, वाड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी अरोड़ा। और फरमाइश इरसाल करते हैं ये इनके नाम, चीकरी मध्य प्रदेश से शबनम साहिबा हैं, इनके शौहर अकरम और इनके दोनों बच्चे भी शामिल हैं। गुलनाज बेगम आशमी, सैयद आलम आशमी, मोहम्मद आलम आशमी, अजमेर शरीफ राजस्थान से फरमाइश भेजते हैं। ये फरमाइश कैथल हरियाणा से हमें मौसूल हुई है, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा जी। और फरमाइश एक और शामिल करते हैं, कांडला बंदर कच्छ बुज से जगदीश जोरी, पूजा पायल। आई जमीन अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आजाद फिल्म का ये दुकाना, फर हमें बोलो कलमबंद किया राजेंद्र कृष्ण ने और मौसी की तरतीब भी है सी राम चंद्र ने। फरमाइश गंजड़वारा से शमसुल कमर राही, शाहिना फातिमा, अदनान खान। और ये फरमाइश इरसाल की है नदीम खान, सत्यनारायण वाड़ी, शांति वाड़ी, लेक सिटी, उदयपुर से महाराणा प्रताप कॉलोनी, उदयपुर से रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी। और किदवई नगर से पूरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, अंजुमन खान, कमल पाठक, सुनील पाठक, गव्य मल्होत्रा, अरकली बाजार, जग राव से फरमाइश की है, जुम्मा नगर खंडवा के बच्चे शामिल हुए, अल्तम समीना फिरदौस। और ये फरमाइश है कुशीर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, दादा ठाकुर, कांति निकेतन, राज नगर, कांति निकेतन से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। दादाजी धुनी वाले मुर्ग मार्ग खंडवा मध्य प्रदेश से हस्सू बाबा, सफिया अरहान खोखर। तो लिए जमीन आप सबकी पसंद पर, आप सबकी खिदमत में।

जसपाल अरमन जसपाल, पंधाना जिला खंडवा से, और क्लॉक टावर उदयपुर से बाबू भाई चांदीवाला, लाला सोनी, अशोक तोलानी, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, रघुवीनगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फरतबसम शेख, बेबी अलिशबा शेख, जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। ये फरमाइश इस साल की है। कोलकाता से सुब्रत चौधरी ने, इनके साथ और भी फरमाइश है कुछ। साबरा, शबाना, आसिया खंडवा की तीनों बहुएं, मोहम्मद मुजीब शेख, जैना नाबिया शेख, बेबी अमीरा शेख, आशियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से ये फरमाइश इस साल की है इन्होंने। उत्तम नगर दिल्ली से जॉन सीना, बी आर टेलर, सुमन सरिता, आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुयश आशीष गौड़, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और इनके साथ इनके एक और साथी हैं। ये फरमाइश हमें इस साल की है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। तो लीजिए आप सबकी पसंद पर ये नगमा आप सबकी खिदमत में है।

0: के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
1: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहां ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
1: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपने उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
0: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत काजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का

0: ये के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
1: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल है। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
0: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
0: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
1: कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: सामिन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शुरुआत। लीजिए सामिन पेश है कव्वालियां। आज के फनकार हैं शंकर शंभू कव्वाल और हम नवा।

ہو کے شاہنشاہ کونین حضور اپنا تخت ایک کھجوروں کی چٹائی کا بنا

0: आम की खसूसी पेटियां इनाम के तौर पर दी गईं। भारत ने समाजी तकरीबात के जरिए आम के दरामदात को फरोग देने की कोशिशें शुरू की हैं। इसके तहत शुमाल मशरिकी सिंगापुर के सी नीसून पब्लिक हाउसिंग इस्टेट में मुनाकिदा थ्रेड्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के आम को गानों, रक्स और मौसीकी के प्रोग्रामों के लिए इनाम के तौर पर पेश किया गया। सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आम की तशहीर के लिए इस महीने मुनाकिद की गई ये दूसरी तकरीब थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण जोत के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दीगर चार दरख्वास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चिटोग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है, जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी इस्कॉन के एक साबिक सरबराह हैं। वो मुल्क के खिलाफ बगावत के एक केस में नवंबर 2024 में ढाका हवाई अड्डे पर अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं। इस केस का ताल्लुक चिटोग्राम में एक रैली के दौरान कौमी परचम की मुबैना तौहीन से है। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद वाली अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीका की सालसी वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के जनूबी मशरिकी ज़ेपोरिज़िया के सरबराह इवान फेदोरूफ ने कहा है कि खित्ते में एक शख्स हलाक और तीन जख्मी हुए हैं, जबकि यूक्रेन के शहर खेरसोन के सरबराह ओलेक्सांद्र प्रोकुदिन ने इत्तला दी है कि खेरसोन खित्ते में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की फिजाइया ने बताया कि उसने रूस के सभी 27 हमलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया जो रात भर में दागे गए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। उन्होंने मगरबी एशिया तनाजे के मनफी असरात को कम करने के लिए दरामद शुदा पेट्रोलियम मसनूआत की किफायती इस्तेमाल पर जोर दिया। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश के एक हाईकोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण जोत के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीका की सालसी वाली जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की है। यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हुए हैं। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है क्लासिकी मौसीकी। आई इस प्रोग्राम के तहत उस्ताद शुजात हुसैन खान का सितार पर बजाया राग मालकोंस और रागेश्वरी सुनते हैं।

कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: He was briefed by officials from various departments on the current situation. Mr. Vijay also resigned as the elected member from the Trichy East constituency, submitting his resignation to the Assembly Secretary Subramanian. Meanwhile, with the State Assembly set to begin today, DMK Legislative Party members held a meeting under the leadership of Party Chief M.K. Stalin. Union Home Minister Amit Shah reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav will release two cheetahs into the wild at Kuno National Park today. PM Modi launched Project Cheetah in September 2022 by introducing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. It was the world's first intercontinental big cat relocation project. This was followed by the arrival of 12 cheetahs from South Africa in 2023 and 9 more from Botswana in February this year. India is set to host the prestigious 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, Gujarat from today, marking the country's first time hosting the event in 44 years. The sporting event will conclude on the 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year, which also plays an important role in qualification for the upcoming Commonwealth Games and Asian Games. India, China and Sri Lanka will field the largest squads with 16 lifters each, while Chinese Taipei has 15 participants. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in Raipur. Put into bat first, Mumbai Indians posted 166 for 7 in their allotted 20 overs, riding on Tilak Verma's 57. For Bengaluru, Bhuvnesh Kumar claimed 4-wicket haul. In reply, Royal Challengers Bengaluru overhauled the target on the last ball of the match, losing 8 wickets. Krunal Pandya top scored with 73 runs. For Mumbai Indians, Corbin Bosch scalped 4 wickets. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है। साथियों, स्टूडियो की घड़ी अनुसार समय हुआ है 1:10:05। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम, जी हां, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। या दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कार्यक्रम होता है, बिना रुके बिना थके एक शानदार बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों की सुरमाला के साथ। जी हां दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत प्ले होते हैं। लगभग 1931 से लेकर 1965 का जो एक समय होता है, एरा होता है, वाकई एक से एक सुंदर बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों का समावेश बनता है। एक से एक चुनिंदा और बेहतरीन लाजवाब गीत होते हैं, जिसमें संगीतकार भी, गीतकार भी और जिन साथियों ने जो गीत रचनाएं रची हैं, वाकई बहुत ही अनमोल और बेहद खूबसूरत रचनाएं होती हैं। तो आज शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ। जी हां, आज मैं हूं आपके साथ, कार्यक्रम गीत सुनहरे, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत के साथ, तेरी नजर में मैं रहूं। हालांकि ये एल्बम है 1857 की, लेकिन ये फिल्म प्रोडक्शन जो ईयर है 1946 की प्रदर्शन फिल्म है, और इस गीत को संगीत से सजाया है श्याम सुंदर ने, और गीत जो गायक हैं सुरैया और सुरेंद्र की आवाज में शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और सुंदर खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही अलग, डिफरेंट, उत्कृष्ट, बेमिसाल खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। तेरी नजर में मैं रहूं और मेरी नजर में तू तू। जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर अंदाज में लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा, जी हाँ, शमा फिल्म से शानदार खूबसूरत रचना आ रही है मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। शानदार रचना शमा फिल्म 1946 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीतकार रहे हैं कैफी आजमी और संगीत से सजाए हैं गुलाम मोहम्मद साहब ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन अनमोल रचना यासी के डर पे झुका जाता है। जी हाँ, फिल्म शमा से मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना शमा फिल्म 1946 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार रहे कैफी आजमी और संगीत से सजाया था इस शानदार गीत को गुलाम मोहम्मद जी ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, एक बहुत ही प्यारा मस्ती भरा लाजवाब गीत आ रहा है लारा लप्पा लाई लप्पा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन रचना है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। जी हाँ, अनमोल बेहद खूबसूरत रचनाएं जिसे बेमिसाल उत्कृष्ट रचनाओं में शुमार किया गया है। सन 1931 से लेकर 65 तक का जो एरा होता है वाकई बहुत ही शानदार होता है ना। तो इसी कड़ी में एक और खूबसूरत गीत आ रहा है, टाइटल लारा लप्पा। फिल्म का नाम है एक थी लड़की, लता मंगेशकर और जीएम दुर्रानी और कोरस और साथ में रफी साहब की आवाज में सुंदर खूबसूरत रचना आ रही है। और ये फिल्म रही 1949 प्रदर्शित फिल्म एक थी लड़की। गीतकार हैं अजीज कश्मीरी और संगीत से सजाया है विनोद ने। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।

आप सुन रहे हैं दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7। जी हाँ, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। जी हाँ, एक से एक सुंदर, बेहतरीन, उत्कृष्ट, बेमिसाल रचनाओं का संगम होता है गीत सुनहरे कार्यक्रम में। जी हाँ, एक से एक सुंदर संगीत, बेहतरीन गीत रचना और गायकी वाकई लाजवाब बेहतरीन होती है गीत सुनहरे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास। तो ये फिल्म है नई उम्र की नई फसल, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना है श्री सुख सुहाग। इस शायद बहुत ही कम सुनने में आता है ये फिल्म का नाम श्री सुख सुहाग। जी हाँ, 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है और रोशन साहब का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर खूबसूरत रचना।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और सुंदर गीत की ओर। कितने प्यारे दिन फिल्म नूर जहां से सुमन कल्याणपुर की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना, जो नूर जहां फिल्म 1967 प्रदर्शित फिल्म रही और गीत शकील बदायूनी के हैं और संगीत से सजाया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

जी हाँ, वाकई बहुत ही प्यारा गीत। कितने सुहाने दिन आ गए। जी हाँ, सुहाने दिन तो आ ही गए हैं। और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर गीत है। और सुनो गजर क्या गाए, बहुत ही प्यारा सुंदर गीत है। गीता दत्त और साथियों की आवाज में शानदार रचना।

फनी और इश्क भी फनी है, हंस के भी चल दो घर की जवानी है। हुस्न भी फनी और इश्क भी फनी है, हंस के भी चल दो

जी हाँ, बहुत ही शानदार, मस्ती भरा, शानदार, खूबसूरत गीत, वाकई लाजवाब। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे। इसी कड़ी में एक और शानदार गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा, तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना

में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

0: ਬਦਕਮਾ ਬਦਕਮਾ
1: ਬਦਕਮਾ ਬਦਕਮਾ
2: ਯੰਕਨ ਯੰਕਨ ਯੰਕ

Junkie!

कुछ भी काम ना आए। अरे तन में मन की बीन बजे तो काम सा

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉन स्टॉप म्यूजिक। 3 बजने के हैं। अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ।

की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात और राजस्थान में आज लू चलने के अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गजल। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में गजल, उनसे जब जब भी।

जगजीत सिंह की आवाज में गजल आपने सुनी, और लीजिए अब अगली गजल पेश है घनश्याम वैश्वानी की आवाज में, जहन पर छाई।

और लीजिए अब पेश है गजल, हर गजल में कुछ नई, अहमद और मोहम्मद हुसैन पेश कर रहे हैं।

0: और इसी के साथ ही आज का गजलों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वायलिन वादन, कलाकार हैं जी उमा। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने।

कर्नाटक संगीत कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन कलाकार थे जी उमा। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और लीजिए, अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही क्षणों में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग, ऊंचाई, प्राणायाम और वृक्षासन से संबंधित जानकारी। देशभक्ति गीतों का समय रहेगा 5:20 पर और 5:30 आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, राग, बैरागी। कलाकार होंगी नीपा चौधरी। सुबह 6:10 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर चिंतन। आज के चिंतन में आप सुनेंगे भीष्म साहनी के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनिएगा। आज बालकांड का भाग 52 प्रसारित किया जाएगा। 6:55 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा।

सुबह 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीतिका। आज आप सुनेंगे निशा की गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग का कार्यक्रम का समय रहेगा। 8:45 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा का। आज के कलाकार होंगे विपुल कुमार राय, आप प्रस्तुत करेंगे राग अहिरी तोड़ी। 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम अवर कैस्ट। आज आप सुनेंगे मीट द पॉइंट। साढ़े 9 का समय रहेगा पंजाबी कार्यक्रम में टीदी महक का। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी जसपाल कौर। 10:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर सबरस कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, उससे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

11:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुरमंजरी का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सरिता पाठक यजुर्वेदी का गायन, आप प्रस्तुत करेंगे राग अलहिया बिलावल। 12:10 का समय रहेगा महिला कार्यक्रम घर आंगन का। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी प्रतिभा नागपाल। और 1:10 पर सुनिएगा एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी 1942 अ लव स्टोरी। 2:30 पर एक ही कलाकार में आज की कलाकार होंगी पूजा बेदी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र है, 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।